103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की पांचवी तिथि तदनुसार 26 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी प्रसारण सभा आरंभ होती है। सुप्रभात।

0: 103.7 MHz पर यह है आकाशवाणी FM शिमला। 6 बजने को हैं, आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताज़ा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के क्वाड के दृष्टिकोण के अंतर्गत विदेश मंत्री पिछले वर्ष वाशिंगटन में हुई चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का कार्यक्रम है। 29 मई को श्री शाह गुजरात जाने का कार्यक्रम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के व्यवस्था को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल और पहलों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। श्री जाधव ने बताया कि देश भर में प्राकृतिक चिकित्सा और योग विज्ञान के 70 से अधिक कॉलेज तथा 5000 से ज्यादा योग प्रशिक्षण संस्थान हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइन को मास्क, PPE किट, दस्ताने और सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री का पर्याप्त भंडार रखने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। IPL क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। मोहाली में कल एलिमिनेटर

ये है आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हमें सुन रहे हैं। सुबह के 6:10 हुए हैं। हिमांजलि भक्ति रस कार्यक्रम अब आप सुनेंगे।

ये नूतन सवेरा ईश्वर की असीम अनुकंपा का प्रतीक है, जो हमें याद दिलाता है कि संसार नश्वर है और केवल प्रभु का नाम ही शाश्वत सत्य है। तो सत्य को प्रभु चरणों में अर्पित करें और उनका सिमरन करें। हिमांजलि कार्यक्रम में आपका स्वागत है।

जब तक हृदय के मंदिर में श्रद्धा का दीपक न जले, तब तक बाहर का उजाला भी व्यर्थ प्रतीत होता है। तो अपने मन को विकारों से दूर कर ईश्वर की इस पावन ध्वनि में लीन हो जाएं। हिमांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 MHz FM शिमला पर।

ब्रह्म मुहूर्त की ये दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। ईश्वर का नाम ही संसार सागर में पार उतरने का एकमात्र आधार है। आइए अपने अंतःकरण को शुद्ध करें और इस मंगलकारी भजन के माध्यम से प्रभु के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं।

भारती के संग मिलकर किया आज हिमांजलि में ये पावन वंदन। दिन हमारा मंगलमय हो और खुशियों से महके जीवन का आंगन, इसी कामना के साथ कार्यक्रम हिमांजलि यहीं संपन्न करते हैं।

एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे भक्ति रस कार्यक्रम हिमांजलि। 6:40 हुए हैं, अब आप सुनेंगे राम के चरित्र का पवित्र मानसरोवर मानस गान।

कृष्ण जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम के चरणों में उनका अनन्य प्रेम देखकर पक्षीराज करो कृतकृत्य थे। बोली, हे नाथ, आपने श्री राम की कथा और ज्ञान तथा भक्ति की महिमा सुनाकर

करना। वरुण ने बार बार अपने कृतज्ञ का ज्ञापन कर काक प्रचंड के चरणों में सिर नवाकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया। संत समागम जैसा कोई पुण्य कार्य नहीं होता, किंतु ऐसा अवसर प्रभु कृपा से ही प्राप्त होता है। मैंने वो इतिहास सुनाया

तुलसीकृत मानसगान, अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति और साथी संगीतकार सतीश भाटिया। आप हमें सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला पर। देशभक्ति गीत अब आप सुनेंगे।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर अभी आप सुन रहे थे देशकान। लीजिए अब पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं विनोद कुमार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों को देश भर में सर्वश्रेष्ठ बनाया जाएगा और इसके लिए राज्य सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में व्यापक स्तर पर बदलाव किए हैं। उन्होंने हाल ही में स्तरोन्नत किए गए CBSE राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय छोटा शिमला में विद्यार्थियों के साथ कल संवाद किया। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव के तहत आज 1293 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान अब से कुछ देर बाद सुबह 7 बजे से शुरू होगा, जो दोपहर 3 बजे तक चलेगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू होगी और आज शाम तक इनके नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेने का आग्रह किया है। जनगणना निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्हें जनगणना 2027 के विभिन्न पहलुओं से अवगत भी करवाया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई के बीच करवाया जाएगा। प्रदेश भाजपा ने राज्य सरकार पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिमला स्थित लोक भवन में राज्यपाल कविंदर गुप्ता से भेंट की और उन्हें इस बारे में एक ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने चुनाव आचार संहिता के बीच मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई और कई ऐसे फैसले लिए जिनका असर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर पड़ सकता है। दूरदर्शन समाचार नई दिल्ली की महानिदेशक ममता वर्मा ने कल दूरदर्शन केंद्र शिमला में महारा हिमाचल नाम से नए पॉडकास्ट स्टूडियो का शुभारंभ किया। डीडी न्यूज हिमाचल से संचार व संवाद की दिशा में एक नवाचार है। ममता वर्मा ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि इससे दर्शक समाज के कई जाने अनजाने लोगों की उपलब्धियों के बारे में जान सकेंगे। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 7 बजने को है आकाशवाणी दिल्ली से। अब सुनते हैं हिंदी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज़।

0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज शाम गंगटोक में नामग्याल तिब्बत विज्ञान संस्थान जाएंगी। श्रीमती मुर्मू का कल नाथुला दर्रे का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम पुलिस को राष्ट्रपति पुलिस ध्वज प्रदान करेंगी। श्रीमती मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह का 29 मई को गुजरात जाने का भी कार्यक्रम है। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। नागर विमानन महानिदेशालय ने कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण फैलने के बाद एयरलाइन के लिए नई SOP जारी की है। महानिदेशालय ने कहा है कि इन देशों से आने वाले यात्रियों के लिए विमान से उतरने से पहले यात्री जानकारी फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर तुरंत विमान कर्मियों और भारत पहुंचने पर स्वास्थ्य अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई ग्राम पंचायतों के गठन तक निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये प्रधान कल से प्रशासक के रूप में काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रूपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरमिरल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। रिजर्व बैंक ने शहरी और ग्रामीण सहकारी बैंकों के निदेशकों के लिए नए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत लगातार 10 वर्ष तक बोर्ड में रहने वाले निदेशकों के लिए विराम अवधि लागू की गई है। इन संशोधन निर्देशों में RBI शहरी सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 और ग्रामीण सहकारी बैंक शासन संशोधन निर्देश 2026 शामिल हैं। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और IPL क्रिकेट के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 7.7 megahertz FM Shimla. सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए. 103.7 megahertz FM Shimla.
1: आप सुन रहे हैं 103.7 megahertz पर FM Shimla. 7:05 हुए हैं और ये वक्त है चिंतन का.
2: महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था. महाराज युधिष्ठिर एकराट के रूप में अभिषिक्त कर दिए गए थे. अब भगवान श्री कृष्ण सुभद्रा को लेकर द्वारका लौट रहे थे. यात्रा करते हुए भगवान मारवाड़ देश में वहां पहुंचे जहां अमित तेजस्वी उत्तंक मुनि रहते थे. भगवान ने उनका दर्शन किया और पूजा भी की. तत्पश्चात मुनि ने उनका स्वागत सत्कार किया. फिर कुशल प्रश्न होने लगे. अंत में जब श्री कृष्ण ने कौरवों के संहार की बात सुनाई तब मुनि क्रोध में भर गए और बोले, मधुसूदन, कौरव तुम्हारे संबंधी और प्रेमी थे. शक्ति रहते हुए भी तुमने उनकी रक्षा नहीं की, अतः आज मैं तुम्हें शाप दूंगा. तुमने सामर्थ्य रहते भी उनकी उपेक्षा की. श्री कृष्ण बोले, भृगुनंदन, पहले मेरी बात तो सुन लीजिए. आपने जो बाल्यावस्था से ब्रह्मचर्य का पालन कर कठोर तपस्या की है और गुरु भक्ति से अपने गुरु को संतुष्ट किया है, मैं वो सब जानता हूँ. पर इतना याद रख लीजिए कि कोई भी पुरुष थोड़ी सी तपस्या के बल पर मेरा तिरस्कार नहीं कर सकता अथवा मुझे शाप नहीं दे सकता. मैं आपको कुछ अध्यात्म तत्व सुनाता हूँ, आप उसे सुन लीजिए और फिर आप विचार कीजिएगा. महर्षि, आपको मालूम होना चाहिए, ये रुद्र, वसु, संपूर्ण दैत्य, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, नाग और अप्सराओं का मुझसे ही प्रादुर्भाव हुआ है. असत, सदसत तथा उससे परे जो अव्यक्त जगत है वो भी मुझ सनातन देवाधिदेव से पृथक नहीं है. मैं धर्म की रक्षा तथा स्थापना के लिए महात्माओं के साथ अनेक बार अनेक योनियों में अवतार धारण करता हूँ. मैं ही ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र तथा सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ. जब जब धर्म का विनाश और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं विभिन्न योनियों में प्रविष्ट होकर मर्यादा धर्म की स्थापना करता हूँ. जब देव योनियों में अवतार लेता हूँ तब मेरे सारे आचार व्यवहार देवताओं के सदृश होते हैं. गंधर्व योनियों में अवतार लेने पर गंधर्वों के समान तथा नाग, यक्ष, राक्षस योनियों में अवतार लेने पर उनके सदृश आचार व्यवहार का पालन करता हूँ. इस समय में मनुष्य रूप में प्रकट हुआ हूँ. अतएव मैंने कौरवों से दीनतापूर्वक प्रार्थना की किंतु मोहग्रस्त होने के कारण उन्होंने मेरी बात नहीं मानी. अतः युद्ध में प्राण देकर इस समय वे स्वर्ग पहुंचे हैं. इस पर उत्तंक ने कहा, जनार्दन, मैं जानता हूँ आप जगदीश्वर हैं. अब मैं आपको शाप नहीं दूंगा, आप कृपा कर अपना विश्व रूप मुझे दिखलाएं. तत्पश्चात भगवान ने उन्हें सनातन विष्णु रूप का दर्शन कराया और वर मांगने के लिए प्रेरित किया. उत्तंक ने उस मरुभूमि में जल मिलने का वर मांगा. भगवान ने कहा, जब भी जल की आवश्यकता हो तब तब मेरा स्मरण कीजिए. ये कहकर श्री कृष्ण द्वारका को चल पड़े. एक दिन उत्तंक मुनि को बड़ी प्यास लगी. वे पानी पीने के लिए चारों ओर घूमने लगे. इतने में ही उन्हें श्री कृष्ण की बात स्मरण हो आई. उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया. तब उन्होंने देखा एक नंग धड़ंग कुत्तों से घिरा भीषण आकार का चांडाल चला आ रहा है. उस चांडाल के शरीर से अजस्र जल की धारा गिरती दिखाई देती थी. वो मुनि के निकट आकर बोला, आपको प्यास से व्याकुल देखकर मुझे बड़ी दया लगती है, आप जल्दी आकर मेरे पास जल पी लीजिए. ये सुनकर कुपित होकर उत्तंक उस चांडाल को डांटने लगे और वर देने वाले श्री कृष्ण को भी भला बुरा बकने लगे. उनके इनकार करने पर कुत्तों के साथ वो चांडाल वहीं गायब हो गया. ये देखकर महात्मा उत्तंक समझ गए कि श्री कृष्ण की ये सब माया है. तब तक भगवान श्री कृष्ण शंख, चक्र, गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए. उनको देखते ही उत्तंक बोल उठे, केशव, प्यासे ब्राह्मण के साथ इस तरह का बर्ताव आपको उचित नहीं. श्री कृष्ण ने बड़े मधुर शब्दों में कहा, मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से अमृत नहीं पिलाया जाता, इसलिए मैंने चांडाल वेशधारी इंद्र को गुप्त रूप से अमृत पिलाने भेजा था किंतु आप उन्हें पहचान न सके. पहले तो देवराज आपको अमृत देने को तैयार नहीं थे, पर मेरे बार बार अनुरोध करने पर वे इस शर्त पर आपको अमृत पिलाने तथा अमर बनाने को तैयार हो गए थे कि यदि ऋषि चांडाल वेश में तथा कथित ढंग से अमृत पी लेंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा, और यदि वो ना लेंगे तो अमृत से वंचित रह जाएंगे. पर खेद है आपने अमृत नहीं ग्रहण किया, आपने उनको लौटाकर बड़ा बुरा किया.

0: मैं आपको पुनः वर देता हूं कि जिस समय आप पानी पीने की इच्छा करेंगे उसी समय बादल मरुभूमि में पानी बरसाकर आपको स्वादिष्ट जल देंगे। उन मेघों का नाम उत्तंक मेघ होगा। भगवान के यूं कहने पर उत्तंक तब से बड़ी प्रसन्नता से वहीं रहने लगे। अब भी उत्तंक मेघ मारवाड़ की मरुभूमि में पानी बरसाते रहते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, प्रस्तुति थी डॉक्टर हुकुम शर्मा की। आपने ट्यून इन किया है हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला पर। अब वक्त है हमारे आज के प्रोग्राम शेड्यूल का। आइए आपको बताते हैं कि आज दिन भर में कौन कौन से प्रोग्राम किस समय पर प्रसारित किए जाएंगे।

अब से थोड़ी ही देर बाद 7:15 पर सुनिएगा इन्फोटेनमेंट से भरा प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। 8:45 पर सुनिएगा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, जिसका आज का विषय है लकवा यानी पक्षाघात पैरालिसिस कारण में बचाव। इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं फ़ोन नंबर 2808034 या 2808152 पर। नंबर फिर से सुन लीजिए 2808034 या फिर 2808152 पर। 8:45 से 9:15 के बीच आपके सवालों के जवाब देने के लिए विषय विशेषज्ञ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। पर कुदरत के रंग कार्यक्रम में निकलेंगे किसी नए एडवेंचर पर। 10:00 सुनिएगा कार्यक्रम राग छाया। 11:05 पर गीत पुरानी फिल्मों से और पहाड़ी संगीत सुबह 11:30 पर आप सुनेंगे। महिला सम्मेलन आप सुनते हैं 12:20 पर, 1:10 पर फिल्म संगीत और 2:00 कार्यक्रम सबरंग ज्ञान विज्ञान। ये कार्यक्रम आज आप सुनेंगे 2:30 पर।

3:10 पर ओल्ड हिट फिल्म संगीत के बाद द वॉइस ऑफ यूथ कार्यक्रम युववाणी 3:30 पर रोजाना आपके लिए पेश किया जाता है। रात 8 बजे भूले बिसरे गीत सुनिएगा, 9:15 पर प्रोग्राम एक फिल्म से। दिल की आवाज भी सुन बॉलीवुड सॉन्ग्स का सजाइए कार्यक्रम रात 9:30 पर। गजलें सुनिएगा रात 10 बजे और 10:30 पर सदाबहार नगमे।

आकाशवाणी समाचार हिंदी में आप सुनते हैं सुबह 8 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2:15 पर, रात 8:45 पर और 11 बजे। अंग्रेजी में समाचार सुबह 8:15 पर, 12:05 पर, 1:05 पर, शाम 7:05 पर, रात 9 बजे और 11:05 पर आप सुन सकते हैं।

0: मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
3: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना।

नमस्कार, सुप्रभात। हमारे सभी लवली लिसनर्स का आज के इस प्रोग्राम में तहे दिल से वेलकम। वेलकम इस सुहानी सुबह का, वेलकम आज के इस नए दिन का, वेलकम आपका।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: 103.7 MHz FM शिमला आपने ट्यून इन किया है और अपनी होस्ट एंड दोस्त भारती के साथ आप सुनेंगे आज का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। दोस्तों, जिंदगी का असली स्वाद भी अंगूर के गुच्छे जैसा है, कभी खट्टा तो कभी मीठा। अगर कोई एक अंगूर खट्टा निकल आए तो हम पूरा गुच्छा नहीं फेंकते। ठीक वैसे ही जिंदगी के एक बुरे दिन की वजह से पूरी जिंदगी को बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर जिंदगी में सिर्फ मिठास ही होगी तो हमें उसकी कदर नहीं होगी। ये खट्टा स्वाद जिंदगी की मुश्किलें ही हमें मिठास का, खुशी का असली मज़ा देता है। तो बात का निचोड़ ये है कि खट्टा हो या फिर मीठा, जिंदगी का हर पल अंगूर के रस की तरह ताज़ा और अनमोल है। हर स्वाद को अपनाइए और हंसते मुस्कुराते आगे बढ़िए। इसी खट्टी मीठी सीख के साथ आज के दिन की इस खूबसूरत और नई सुबह की शुरुआत करते हैं। 103.7 MHz FM शिमला आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला भारती के साथ।

गुड मॉर्निंग शिमला, ये प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। आइए अब बात करते हैं आज के इतिहास की। आज ही के दिन इतिहास में क्या हुआ था खास, वो आपको बताते हैं। 26 मई 1739 में मुगल और ईरानी साम्राज्य के बीच समझौता हुआ। करनाल की भीषण लड़ाई के बाद ईरान के शासक नादिर शाह और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के बीच दिल्ली में एक संधि हुई। इस समझौते के तहत मुगल शासक को सिंधु नदी के पश्चिम के अपने सारे महत्वपूर्ण क्षेत्र नादिर शाह को सौंपने पड़े। में नेपोलियन बोनापार्ट का इटली के राजा के रूप में राज्याभिषेक किया गया। इटली के मिलान शहर के प्रसिद्ध कैथेड्रल में इटली का राजा घोषित किया गया। इस दौरान उन्हें आयरन क्राउन ऑफ लोम्बार्डी पहनाया गया, जो कि ईसाई जगत के सबसे पुराने और सम्मानित शाही प्रतीकों में से एक है। सोने की 6 प्लेट से बने इस मुकुट की लोहे की एक पतली पत्ती से इसे जोड़ा गया है, और ऐसा बताया जाता है कि भीतरी पट्टी ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाए जाने वाले ट्रू क्रॉस की एक कील से बनाई गई थी। खैर, वैसे ये भी इतिहास की ही जानकारी है, पर हमें आज के इतिहास की बात कर रहे हैं। तो आयरन क्राउन ऑफ लोम्बार्डी इस मुकुट, उन्हें राज्याभिषेक, उन्हें यूरोपीय साम्राज्य विस्तार के लिए एक बहुत राजनीतिक प्रतीक माना गया था। गुड मॉर्निंग शिमला पर आज के इतिहास की कुछ खास विशेष घटनाएं आपको हम बता रहे हैं। आगे और भी हैं, पर पहले एक कार्यक्रम संबंधी सूचना। मंगलवार यानी आज 26 मई 2026 प्रातः 8:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का विषय है लकवा या पक्षाघात, कारण व बचाव। श्रोताओं, यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें आज सुबह 8:45 से 9:15 के बीच फोन नंबर 28080 और 28

0: 800-8150 पर संपर्क कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विषय विशेषज्ञ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। सूचना समाप्त।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और

0: मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला, और अब वक्त है एक गीत का।

0: इक्यावन मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग शिमला। अब बात कर रहे हैं आज के इतिहास की। ১৯৬৭ में आयरिश लेखक ब्राम स्टॉकर का विश्व प्रसिद्ध उपन्यास ड्रैकुला पहली बार लंदन में बिक्री के लिए उपलब्ध हुआ था। वैम्पायर संस्कृति पर आधारित इस किताब ने आधुनिक साहित्य, हॉलीवुड और पॉप कल्चर की दिशा में हमेशा के लिए एक नया बदलाव ला दिया। भारत के प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर बीपी पाल का जन्म पंजाब में मुकुंदपुर में आज ही के दिन 1906 में हुआ था। वे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था IARI के पहले महानिदेशक बने। उन्होंने भारत में गेहूं के अनुसंधान और गुलाब की नई हाइब्रिड किस्मों को विकसित करने में ऐतिहासिक योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 26 मई 1999 को कारगिल युद्ध में ऑपरेशन सफ़ेद सागर की शुरुआत हुई थी। भारतीय वायुसेना ने कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर छिपे पाकिस्तानी घुसपैठियों और आतंकवादियों को खदेड़ने के लिए आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन सफ़ेद सागर लॉन्च किया। ये पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने इतनी ऊंचाई लगभग 20,000 फीट पर MiG-21, MiG-27 और Mirage-2000 विमानों का उपयोग कर एयर स्ट्राइक्स किए और युद्ध का पासा भारत के पक्ष में पलट दिया। इस ऑपरेशन से कारगिल की बर्फीली चोटियों पर कब्जा जमाए बैठे पाकिस्तानी सैनिक और घुसपैठियों को खदेड़कर भारतीय थल सेना को हवाई मदद प्रदान की थी। FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं और अब वक्त है एक देशभक्ति गीत का इस जज्बे को कायम रखने के लिए।
1: होशियार होशियार।

कल कल बहती जीवन धारा, हर पल एक कहानी है, जो बीत गया कल वो इतिहास की निशानी है। बीतता हुआ हर एक पल हमारे जीवन की अनमोल पूंजी है, जो कल बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाता है। FM शिमला 103.7।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: क्या आप जानते हैं, स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये क्यों बता रही हूं। तो श्रोताओं, स्विट्जरलैंड में हर साल 26 मई को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और ये दिन पूरी तरह भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान को समर्पित है। उन्होंने 26 मई 2006 में स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके विशाल योगदान और विशेषज्ञता को देखते हुए स्विस सरकार ने उनके सम्मान में इस विशेष दिन को विज्ञान दिवस घोषित किया। अंबर की छाती चीर जिसने परमाणु का हुंकार भरा, वो मिसाइल मैन था माटी का, जिसने वैश्विक मंच पर भारत का नाम करा।

0: सरकारी विभाग हो या बैंक या फिर कोई सार्वजनिक उपक्रम यानी PSU,
1: आप सस्ते दामों पर आकाशवाणी के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का आकाशवाणी के माध्यम से विज्ञापनों द्वारा प्रचार प्रसार कर जन जन तक पहुंचा सकते हैं।
0: आकाशवाणी की पहुंच प्रदेश के दूर दराज ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों तक है
1: और आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTH पर ये सेवाएं उपलब्ध हैं।
0: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: अपनी होस्ट एंड दोस्त भारती के साथ अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग शिमला। कार्यक्रम में आज बस इतना ही।

गुड मॉर्निंग शिमला, ये प्रोग्राम आप सुन रहे थे 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर। श्रोताओं, अब आपको बता दें, आज प्रसारित किए जाने वाले लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर के बारे में। 8:45 पर सुनिएगा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर, जिसका आज का विषय है लकवा यानी पक्षाघात पैरालाइसिस, कारण वे बचाव। इस कार्यक्रम में आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए विषय विशेषज्ञ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित

कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं फ़ोन नंबर 2808034 और 2808152 पर। 8:45 से 9:15 के बीच आप ये कार्यक्रम सुनेंगे।

0: एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं और अब वक्त है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं विनोद कुमार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण के तहत प्रदेश की 1293 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक इनके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने कहा है कि मतदान कार्य को पूर्ण करने के लिए 8,198 मतदान दल कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मत पेटियों में स्कैनर की सुविधा शुरू की है, जो मतों की गणना तक निगरानी में सहायक सिद्ध होगी। दूरदर्शन समाचार नई दिल्ली की महानिदेशक ममता वर्मा ने कल दूरदर्शन केंद्र शिमला में महारा हिमाचल नाम से नए पॉडकास्ट स्टूडियो का शुभारंभ किया। डीडी न्यूज हिमाचल ने संचार व संवाद की दिशा में एक नवाचार किया है। ममता वर्मा ने इस नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि इससे दर्शक समाज के कई जाने अनजाने लोगों की उपलब्धियों के बारे में जान सकेंगे। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 6ठी से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल करने की कवायद तेज कर दी है। बोर्ड के सचिव विशाल शर्मा ने धर्मशाला में बताया कि आने वाले समय में एआई शिक्षा की आवश्यकता बढ़ने वाली है और इसी उद्देश्य से स्कूल शिक्षा बोर्ड ने एआई को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में ईद उल जुहा के अवकाश में बदलाव किया है। अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में अब 27 के बजाय 28 मई को ईद उल जुहा पर सार्वजनिक अवकाश रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय में 21 से 23 अगस्त तक विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा किया जाएगा। एफएम न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: हंड्रेड 3.7 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी एफएम शिमला। 8 बजने को है, अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र समाचार प्रभात और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज आप सुनेंगे।
2: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30 लाख से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे।

0: जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। डीजीसीए ने एयरलाइंस को जारी किए निर्देश। दिल्ली में प्रति किलोग्राम सीएनजी की कीमत 2 रुपये बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और आईपीएल क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज नई दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सो मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। बैठक में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, विभिन्न पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े ताजा घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन की सिक्किम यात्रा पर रहेंगे। गंगटोक से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी का दौरा करेंगी और गैंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को हरी झंडी दिखाएंगी। कल वो नाथुला का दौरा करेंगी और साथ ही गैंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपनी यात्रा के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू गैंगटोक के पलजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पुलिस कलर मेडल प्रदान करेगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गैंगटोक।
0: राष्ट्रपति भवन में कल नागरिक अलंकरण समारोह भी आयोजित किया गया जिसमें इस वर्ष के पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। गृहमंत्री अमित शाह अगले कुछ दिन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे। श्री शाह 2 दिन की यात्रा पर आज राजस्थान के बीकानेर पहुंच गए हैं। इस दौरान उनका सशस्त्र बलों से बातचीत करने और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करने का भी कार्यक्रम है। श्री शाह 29 मई को गुजरात जाएंगे। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि सरकार योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से चिकित्सा सेवाओं को मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक में श्री जाधव ने कहा कि योग और प्राकृतिक चिकित्सा भारत की प्राचीन पद्धति है और अब ये वैश्विक स्वास्थ्य अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहे हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ओटावा में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से द्विपक्षीय चर्चा की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। साथ ही भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता सीईपीए को जल्द पूरा करने पर सहमति जताई गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नागर विमानन महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान यात्रियों को बुखार, कमजोरी, मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द, गले में खराश, उल्टी या दस्त जैसे लक्षण होने पर अधिकारियों को जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। विमान में संदिग्ध मरीज मिलने पर उसे विमान के पिछले हिस्से में अलग रखने और आसपास की सीटें खाली रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। एयरलाइंस को मास्क, दस्ताने, पीपीई किट, सैनिटाइजर जैसी जरूरी सामग्री की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: दिल्ली में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी।

0: बढ़ोतरी की गई है। आज सुबह 6 बजे से लागू इस नई दर के बाद राष्ट्रीय राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 कैबिन में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जाँच के आदेश दिए हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सुरक्षा बलों ने डोरीमल वन क्षेत्र में आतंकियों के एक ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। ये कार्रवाई ऑपरेशन शेरुवाली के तहत चल रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। ड्रोन और खोजी कुत्तों की मदद से इलाके में तलाशी अभियान जारी है। पंजाब में नगर निगम चुनावों के लिए मतदान शुरू हो गया है। राज्य में 8 नगर निगमों, 75 नगर परिषदों और 20 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: राजनीतिक पार्टियों द्वारा 2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले हो रहे इन नगर निकाय चुनावों पर एक अहम राजनीतिक संकेत के तौर पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार पूरे राज्य में कुल 1896 वार्डों से 7555 उम्मीदवार मैदान में हैं। सभी नगर निकायों में आदर्श आचार संहिता पहले से ही लागू है। मतदाताओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने आज सभी के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मतों गिनती शुक्रवार 29 मई को होगी। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए नए निकाय गठित होने तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया है। राज्य की ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। निवर्तमान प्रधान स्वयं पंचायतों का प्रशासन संभालेंगे। एक रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार सभी जिला मजिस्ट्रेटों को ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक के रूप में नामित करने का अधिकार दिया गया है। ये निवर्तमान प्रधान कल से प्रशासक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। प्रशासकों को केवल नियमित और दैनिक कार्यों को करने की अनुमति होगी तथा उन्हें कोई भी नीतिगत निर्णय लेने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी भी परिस्थिति में कोई नीतिगत निर्णय आवश्यक हो तो जिला मजिस्ट्रेट की स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकता है। ग्राम पंचायत के प्रधानों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कार्यकाल समाप्त होने के बाद और पंचायतों के प्रधान बनने तक राज्य सरकार को प्रशासकों की नियुक्ति करने का अधिकार है। सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: भारत सहित दुनिया भर से सऊदी अरब पहुंचे लाखों जायरीन पवित्र हज यात्रा कर रहे हैं। 5 दिन के हज के पहले दिन कल हज यात्री मीना के टेंट सिटी में एकत्रित हुए। एक रिपोर्ट।
3: पवित्र हज यात्रा पर पहुंचे जायरीन आज पूरा दिन अरफात के मैदान में इबादत और दुआओं में बिताएंगे। इसके बाद हज यात्री निमरा मस्जिद में हज का विशेष संदेश खुतबे हज सुनेंगे और दोपहर तथा शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। सूर्यास्त के बाद वे मुजदलिफा के लिए रवाना होंगे। कल सुबह जायरीन मीना लौटेंगे जहां वे कुर्बानी और कंकर मारने की प्रतीकात्मक रस्म अदा करेंगे। समाचार कक्ष से कलीम अहमद।
0: अमरीकी सेना ने ईरान के साथ जारी संघर्ष विराम के बीच होर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरान के मिसाइल प्रक्षेपण स्थलों और नावों को निशाना बनाया है। ये घटनाक्रम तब सामने आया जब अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम वार्ता में कुछ प्रगति की खबरें आई हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी समझौते में सऊदी अरब और पाकिस्तान सहित कई देशों को अब्राहम समझौते में शामिल किया जाना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि या तो ये बातचीत शांति समझौते में बदलेगी या फिर पहले से ही बड़े संघर्ष की स्थिति का कारण बनेगी। अब्राहम समझौता अमरीका की मध्यस्थता में 2020 में हुआ ऐतिहासिक शांति समझौता है जिसका मुख्य उद्देश्य इसराइल और कई अरब तथा मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने के लिए शुरू किया गया था। ब्राजील सरकार ने अमेजन वर्षावन क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 61.75 करोड़ अमरीकी डॉलर आवंटित किए हैं। ये निवेश पिछले वर्ष के COP30 सम्मेलन के दौरान घोषित इको इन्वेस्ट कार्यक्रम का एक हिस्सा है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत फुटबॉल से। भारत ने कल गोवा में सैफ महिला चैंपियनशिप के ग्रुप बी मुकाबले में मालदीव को 11-0 से हरा दिया। अविका सिंह ने 4 गोल किए। प्रियंका नोरेम और करिश्मा ने 2-2 गोल दागे। 5 बार की चैंपियन भारतीय टीम का अगला मुकाबला रविवार को बांग्लादेश से होगा। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL के क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा।

0: मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफाइड टू में एक और मौका मिलेगा। उधर सिंगापुर में आज से शुरू हो रहे सिंगापुर ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन, HS प्रणॉय, किदाम्बी श्रीकांत और आयुष शेट्टी, वहीं महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और मालविका बंसोड़ चुनौती पेश करेंगे। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी तथा मिक्स्ड डबल्स में तनीषा क्रस्तो ध्रुव कपिला और रोहन कपूर रुथविका शिवानी गड्डे की जोड़ियां भी अपना अपना दावा पेश करेंगी। जी फरहत, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: धन्यवाद मुकेश। और अब रुख कर लेते हैं मौसम का। मौसम विभाग ने आज दिल्ली में भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शहर का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद फरहत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कला, खेल और विज्ञान सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली विभूतियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने की खबर आज हिंदुस्तान सहित कई अखबारों में है। पत्र लिखता है, पैरा खिलाड़ी प्रवीण कुमार को पद्मश्री सम्मान। अमर उजाला ने पुदुचेरी के पारंपरिक मार्शल आर्ट विशेषज्ञ के पजनी वेल के पद्मश्री सम्मान ग्रहण करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दंडवत प्रणाम करने और प्रधानमंत्री के तुरंत कुर्सी से उठकर उनको उठाने का चित्र प्रकाशित किया है। धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान। धर्मपत्नी हेमा मालिनी ने भावुक होकर ग्रहण किया सम्मान, देशबंधु में है। जनसत्ता ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत बढ़ने का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। 10 दिन में चौथी बार, अब दिल्ली में भी कीमत 100 पार। पत्र ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के शब्द भी दिए हैं, ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा संरक्षण पर ध्यान देने की जरूरत। क्वाड बैठक आज, चीन की चुनौती पर होगी बात। पश्चिम एशिया संकट के बीच दिल्ली में हो रही है मीटिंग, नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब, NTA ने कोई सबक नहीं सीखा। लोकसत्य ने सुनवाई शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट प्रकाशित की है। महिला अपराध के मामलों में देश भर में मध्य प्रदेश की हालत चिंताजनक। प्रदेश में हर रोज दर्ज हो रहे हैं दहेज प्रताड़ना के 20 प्रकरण। दैनिक जागरण ने आज अपने संपादकीय पन्ने पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, विकसित भारत के निर्माण की राह। संपादक ने अपने लेख में स्वामी विवेकानंद के शब्दों को अहमियत दी है, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। संपादक ने आयुष्मान भारत योजना, चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग और AI में भारत को वैश्विक कंपनियों में अहमियत मिलने से लेकर भारत की प्रगति की चर्चा की है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सिक्किम की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला में तकनीकी खराबी के बाद फंसे 300 से अधिक पर्यटकों को सुरक्षित बचाया गया। WHO ने इबोला वायरस को स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दिल्ली में प्रति किलोग्राम CNG की कीमत 2 रुपए बढ़ी। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में मालदीव को 11-0 से हराया। और IPL क्रिकेट क्वालिफायर 1 में आज शाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Quad Foreign Ministers meeting to be held in New Delhi today. President Draupadi Murmu to embark on a 3-day visit to Sikkim beginning today. More than 300 tourists stranded in Gulmarg gondola in Jammu and Kashmir rescued after technical snag halted its operations. DGCA issues directives for airlines after Ebola outbreak declared health emergency by WHO. CNG price hiked by 2 rupees per kg in Delhi. India thrashed Maldives 11-0 in their opening Group B match of

तक चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने कहा है कि मतदान कार्य को पूर्ण करवाने के लिए 8,198 मतदान दल कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मतपेटियों में स्कैनर की सुविधा शुरू की है, जो मतों की गणना तक निगरानी में सहायक सिद्ध होगी। प्रदेश में 28 मई को दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 3 बजे खुले में प्रचार बंद हो जाएगा। इस दौरान उम्मीदवार केवल अब व्यक्तिगत रूप से ही जनसंपर्क कर सकेंगे। तीसरे व अंतिम चरण का मतदान 30 मई को होगा। नशा तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के अभियान में शिमला पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर पंजाब के तरनतारण, मोगा और हरियाणा के अंबाला से 3 मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना आज गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से एचपीए स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि

0: मतदान को लेकर आज शाम 3 बजे खुले में प्रचार बंद हो जाएगा। इस दौरान उम्मीदवार केवल अब व्यक्तिगत रूप से ही जनसंपर्क कर सकेंगे। तीसरे व अंतिम चरण का मतदान 30 मई को होगा। नशा तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के अभियान में शिमला पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर पंजाब के तरनतारण, मोगा और हरियाणा के अंबाला से 3 मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया है। आईपीएल क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना आज गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से एचपीए स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। आईपीएल के इस मैच को लेकर एचपीसीए ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। न्यूज हेडलाइंस में अभी बस इतना ही। नमस्कार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।
2: ये है आकाशवाणी एफएम शिमला और अब आप सुनेंगे हमारे साथ लोकगीत।

लोक संगीत में जो निश्चल प्रेम और मिट्टी की सुगंध है, वो आधुनिकता की चकाचौंध में भी फीकी नहीं पड़ती। आइए इसी सांस्कृतिक धरोहर को इन लोकगीतों के माध्यम से महसूस करते हैं।

सुरेखा बरसांता की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। FM शिमला 103.7 MHz पर आप सुन रहे थे लोक संगीत। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। 8:45 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है हमारा लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर।

नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे लकवा या पक्षाघात कारण व बचाव विषय पर। दोस्तों, ये बीमारी अचानक से आती है और व्यक्ति के शरीर, बोलने की क्षमता और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित करती है, लेकिन सही समय पर इलाज और जागरूकता से कई लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो आज हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का विषय रखा गया है लकवा या पक्षाघात कारण व बचाव। यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स रहेंगे 2800

0: 8034, और हमारा दूसरा नंबर रहेगा 2970400, यानी 2970400। यदि आप शिमला से बाहर हैं और हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं और आज का विषय लकवा या पक्षाघात से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आपको एसटीडी कोड लगाना होगा 0177। फ़ोन नंबर्स आपको फिर से बता देते हैं 2808034, और दूसरा नंबर हमारा रहेगा 2970400। आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा। आप अटल सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा संस्थान चमियाना शिमला में न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं। डॉक्टर सुधीर शर्मा, स्टूडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आज का हमारा विषय है लकवा या पक्षाघात, तो सबसे पहले यही जानना चाहते हैं आपसे कि लकवा या पक्षाघात है क्या, विस्तार से जानेंगे।
1: सपना जी, पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आकाशवाणी शिमला का कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज आपने वार्तालाप के लिए मुझे आमंत्रित किया। यदि हम पक्षाघात या अधरंग या लकवा इसकी बात करें तो यह बीमारी उतनी ही प्राचीन है जितनी मानवता है, परंतु हैरानी की बात फिर भी ये है कि आज भी इसके बारे में जनसाधारण में जानकारी का बहुत अधिक अभाव है
0: जी।
1: बहुत सी भ्रांतियाँ प्रचलित हैं, और आज के वैज्ञानिक युग में जबकि इसके आधुनिक इलाज उपलब्ध हैं जिनके द्वारा अधरंग के मरीज़ बहुत अधिक राहत पा सकते हैं, फिर भी लोग जागरूकता के अभाव में या इन भ्रांतियों की वजह से सही समय पर सही जगह पर वो उपचार प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो आज इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी श्रोताओं को हमारा ये बताने का उद्देश्य रहेगा कि जो लकवा या अधरंग है वो है क्या। तो यदि हम लकवा की बात करें या अधरंग की बात करें तो हमारा मस्तिष्क है, पहले तो ये मस्तिष्क की बीमारी है। जो हमारा मस्तिष्क एक विशेष अंग है शरीर का, जिसका जो वजन है वो शरीर का लगभग 2% होता है, परंतु वो 20% है जो शरीर का जो रक्त है उस सप्लाई जो ब्रेन को जाती है
0: जी।
1: और एक और विशेष बात मस्तिष्क के बारे में ये है कि वहाँ पर ऊर्जा का और ग्लूकोज जो आवश्यक है सभी सेल्स की एनर्जी के लिए, उसका संचय नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मस्तिष्क एक ऐसा अंग है शरीर का जिसे निरंतर ग्लूकोज और ऑक्सीजन रक्त के माध्यम से मिलता रहना चाहिए
0: जी।
1: जैसे ही रक्त के प्रवाह में कोई व्यवधान हुआ, वैसे ही हमारे जो कोशिकाएं हैं मस्तिष्क की, वे क्षतिग्रस्त होने लगती हैं, और इन कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने से जो भी लक्षण उत्पन्न होते हैं उन्हें हम पक्षाघात या लकवा कह सकते हैं। जनसाधारण में तो ये धारणा है कि शरीर का एक हिस्सा कमज़ोर हो जाए, जैसे हाथ और पैर और मुंह का टेढ़ा हो जाना, इनमें कमज़ोरी आना, वो अधरंग है, जैसा कि नाम भी है अधरंग
0: जी, बिल्कुल।
1: परंतु हमारे मस्तिष्क के किस भाग में खून का बहाव रुका है उस पर लक्षण निर्भर करते हैं, और अधरंग तो इसका एक लक्षण है ही, शरीर के आधे हिस्से में कमज़ोर रहना। उसके अलावा अचानक से बोलने में समस्या आना, अचानक से संतुलन की समस्या आना, अचानक से शरीर के किसी हिस्से में संवेदना कम हो जाना, चक्कर आना, स्मृति कम हो जाना, आँख से दिखना कम हो जाना, क्योंकि हमारे मस्तिष्क के जो विभिन्न भाग हैं उनमें कार्य का विभाजन है
0: जी।
1: तो जो भाग देखने का कार्य करता है, यदि वहाँ पर खून का बहाव रुकेगा तो देखने में समस्या आएगी। तो इसलिए अधरंग या पक्षाघात के बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं, अधरंग या एक हिस्से में कमजोरी के अलावा भी। तो अब जनसाधारण कैसे ये याद रखे कि भाई इतने सारे लक्षण हैं, अभी लक्षण अधरंग या स्ट्रोक की वजह से या किसी और वजह से, तो इसके लिए हमें एक सूत्र है जो जनसाधारण में ज़्यादातर बताते हैं, जिसे अंग्रेजी में फास्ट कहते हैं।
0: फास्ट,
1: FAST, F फॉर फेस, A फॉर आर्म, S फॉर स्पीच और T फॉर टाइम। F फॉर फेस मतलब अचानक से मुंह का टेढ़ा हो जाना, A फॉर आर्म मतलब अचानक से हाथ या पैर में कमजोरी आना, S फॉर स्पीच अचानक से बोलने या समझने में कोई दिक्कत होना, और T फॉर टाइम ये लक्षण किसी को कभी भी हो तो वे समय व्यर्थ न गवाएं, निकटतम चिकित्सा संस्थान में जाएं, क्योंकि ये अधरंग की वजह से, स्ट्रोक की वजह से हो सकता है। हिंदी में भी हम इसका एक सूत्र जैसे हमने बनाया है बचाओ, तो ब से बाजू, अचानक से बाजू में कमजोरी आ जाना, च से चेहरा, चेहरे का टेढ़ा हो जाना, आ से आवाज़, बोलने या समझने में समस्या आना, और व से

0: वक्त
1: क्योंकि वक्त इसमें बहुत
0: बहुत
1: महत्वपूर्ण है।
0: बढ़िया।
1: जैसे हम आगे भी इसमें बारे में बात करेंगे कि क्यों ब्रेन स्ट्रोक में या पक्षाघात में वक्त इतना महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने शुरू में भी बताया, जो मस्तिष्क है वो ऊर्जा का संचय नहीं कर सकता है, तो जितनी देर खून का बहाव रुका रहेगा कोशिकाएं क्षतिग्रस्त रहेंगी।
0: जी
1: तो यदि उस खून के बहाव को हम जितनी जल्दी सुचारू कर सके उतना ही पक्षाघात के लक्षण ठीक हो सकते हैं।
0: जी डॉक्टर सिद्धि, बहुत अच्छी आपने ये जानकारी हमें दी। परंतु आम भाषा में लोग ब्रेन स्ट्रोक, लकवा और पक्षाघात को एक ही चीज़ समझते हैं। आपने विस्तार से बताया कि ये दोनों अलग हैं, यानी ब्रेन स्ट्रोक कारण है और जो स्ट्रोक है वो इसका आगे
1: लक्षण है।
0: लक्षण है। जी हमारी चर्चा जारी रहेगी, इस बीच एक कॉलर है, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। पहले आप अपने वॉल्यूम, जो रेडियो सेट का वॉल्यूम है उसे कम करें।
2: हाँ, सपना ठाकुर जी नमस्कार।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: मेरा नमस्कार, तेजराम शर्मा सुन्नी से बोल रहा हूँ।
0: जी आज हमारे लकवा यानी पक्षाघात क्या जानना चाहेंगे इससे संबंधित, डॉक्टर सुधीर शर्मा हैं साथ में।
2: डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी जो है वो पसीने से लथपथ है, और वो जब आता है कहीं घर में तो बोलता है कि भाई बहुत गर्मी लग रही है, मैं पंखे के नीचे बैठना है। तो वो पंखे के नीचे बैठ के क्या इस शरीर में भी इसका कोई फर्क पड़ता है कि या एक ही तरफ को, जैसे आपने बोला कि भाई मुंह टेढ़ा हो जाता है दूसरा हो जाता है, या जैसे एक ही साइड में या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में एक पूरा अंग नीचे से ऊपर तक वो शून्य हो जाता है, तो इसी कारण से होता होगा क्या ये क्या?
1: तेजराम जी, जो आपका प्रश्न है कि कोई पसीने से लथपथ है और अचानक पंखे के नीचे बैठ जाए, क्या उससे अधरंग या लकवा होने की आशंका है? तो वैसे तो इसका कोई विशेष वैज्ञानिक आधार नहीं है। लकवा जो है इसके कारणों पे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे, परंतु ऐसा कोई कारण नहीं है कि यदि कोई पसीने से व्यक्ति पंखे के नीचे बैठ जाए तो उसे लकवा या अधरंग होने की संभावना है, ऐसा नहीं है।
0: जी तेजराम जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर सुधीर, आपसे एक ये जानकारी हम ज़रूर लेना चाहेंगे कि ये बीमारी अचानक से क्यों होती है।
1: बिल्कुल, मैं इसी बात पे आना चाहता था कि जो अधरंग के इतने सारे लक्षणों की हमने बात की, देखना कम हो जाना, एक हिस्से में कमजोरी आ जाना, संतुलन की समस्या, तो बहुत सारी इसके लक्षण हैं, परंतु ये लक्षण केवल ब्रेन स्ट्रोक या लकवे से ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि कान की बीमारियों से भी चक्कर आते हैं,
0: जी
1: तो स्ट्रोक के कारण जो लक्षण होंगे उनके बारे में एक खास बात यह है कि वे अचानक से आते हैं, सडननेस, आकस्मिक रूप से। ऐसे एक क्षण पहले आप पूर्णतया स्वस्थ हैं और दूसरे ही क्षण आपका मुंह टेढ़ा हो गया, या दूसरे क्षण आप बोल ही नहीं पा रहे हैं, या दूसरे ही क्षण आपका हाथ ही नहीं उठ रहा है। तो जब भी किसी व्यक्ति को अचानक से कोई भी लक्षण आए तो एक बार ये शंका अवश्य करनी चाहिए कि क्या ये अधरंग या स्ट्रोक तो नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हम बहुत से मरीज हैं जो समय पर चिकित्सालय पहुंच सकेंगे। तो एक तो हमने फास्ट की बात की जिसमें चेहरा, बाजू, आवाज़ की बात की, लगभग 75% ब्रेन स्ट्रोक के जो मरीज़ हैं इन्हीं लक्षणों से हमारे पास आते हैं। परंतु उसके अलावा जो एक और इन सब के बीच एक समानता है सभी लक्षणों में, वो है अचानक से होना।
0: जी
1: क्योंकि जैसे ही मस्तिष्क का खून का प्रवाह अवरुद्ध हुआ, कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होना आरंभ हुई और लक्षण आ गए।
0: जी
1: तो ऐसा नहीं होगा कि कभी एक हफ्ते से धीरे धीरे कमजोरी आ रही है या महीने से कमजोरी आ रही है। जैसे अंग्रेजी में हम कहते हैं स्ट्रोक स्ट्राइक्स लाइक लाइटनिंग,
0: जी
1: एक बिजली की तरह अचानक से वो लक्षण आते हैं। तो कोई भी ऐसा लक्षण कभी भी आए, हमेशा ये शंका करनी चाहिए कि ये पक्षाघात की वजह से हो सकता है, और तुरंत निकटतम चिकित्सालय में जाना चाहिए।
0: जी इस बीच एक कॉलर है, आपसे कुछ
2: हेलो
0: जानकारी चाह रहे हैं। हेलो,
3: हेलो, नमस्कार जी, रमेश शर्मा बोल रहा हूँ मंडी धर्मपुर से।
0: जी
3: नमस्कार आपको भी, डॉक्टर साहब को भी।
1: नमस्कार
3: अभी जी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि लोगों को जानकारी के अभाव में या कुछ ऐसा, डॉक्टर साहब जो बता रहे थे वो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक बताता हूँ। 3 साल पहले मेरी माता जी को ये ब्रेन स्ट्रोक आ गया था, हम मेरे चौक ले गए तो डॉक्टरों का ये हाल है कि 5 दिन तक तो डॉक्टर नहीं आए जी उनको देखने के लिए, सिर्फ वो जो ट्रेनी डॉक्टर है वो आते रहे। 5वें दिन तो मेन डॉक्टर आए, उनको मैंने बताया अब ये समस्या है कि आप बताओ क्या आप कर रहे हैं, उन्होंने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, कि अगर आप कर सकते हैं या कहीं और, तो उन्होंने 2 मिनट में उनको कर दिया कि आप कहीं और ले जाओ। तो हॉस्पिटलों में ये जो समस्या है ना, इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो लोग कैसे जाए।

0: हॉस्पिटलों में भी।
1: जी
0: गटो
1: बिल्कुल रमेश जी,
0: बिल्कुल
1: आपने
0: सही
1: बहुत ही
0: कहा।
1: महत्वपूर्ण विषय उठाया है कि जो अधरंग या पक्षाघात के बारे में एक संवेदनशीलात्मक दृष्टिकोण है, वे ना केवल मरीज और जनसाधारण के स्तर पर बल्कि जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनके स्तर पर भी ये बहुत आवश्यक है, और स्वास्थ्य कर्मियों में भी इसकी जानकारी के बारे में अभाव है। ऐसा नहीं है, कई बार हॉस्पिटल के अंदर ही स्ट्रोक हो जाता है और हमें दूसरे तीसरे दिन पता चलता है।
0: कि
1: तो
0: ऐसा हो गया।
1: जानकारी का अभाव ना केवल जनसाधारण के स्तर पर है बल्कि स्वास्थ्य कर्मियों के स्तर पर भी है। तो हमें खेद है कि आपको नेर चौक में जो है ऐसे समस्या का सामना करना पड़ा, परंतु हम निरंतर विभिन्न कार्यक्रम अपने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं उनके लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स जो हैं ये करते रहते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो हैं ये करते रहते हैं, जिसमें हमारा प्रयास है कि वे भी इसके बारे में जागरूक हों और मरीज़ों को कम से कम, अगर वो सही समय पर पहुंच रहे हैं तो उस प्रकार से उपचार भी मिले। पर इसमें अभी भी बहुत कुछ वांछित और अपेक्षित है, पर हमारा प्रयास निरंतर जारी है।
0: डॉक्टर सुधीर, जैसे कि किसी का अचानक से मुंह टेढ़ा हो जाता है, हाथ पैर काम करने बंद कर देते हैं, तो तुरंत परिवार या समाज में ऐसा जैसे व्यक्ति देख लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं, कैसे
1: बिल्कुल, ये
0: प्राथमिक उपचार
1: जो
0: दिया जा
1: आपका
0: सकता है
1: प्रश्न है कि क्या प्राथमिक चिकित्सा दी
0: उपचार?
1: जाए यदि किसी को अधरंग या पक्षाघात होने की संभावना है, तो इस बारे में मैं दो टूक शब्दों में कहूँगा कि कोई प्राथमिक चिकित्सा नहीं है। आप बिल्कुल भी किसी नीम हकीम घरेलू उपचार में समय व्यर्थ ना गंवाएं। अब मैं पक्षाघात के दूसरी बात पे आता हूँ कि पक्षाघात दो वजह से हो सकता है। जो मस्तिष्क को खून का प्रवाह है वो दो वजह से रुक सकता है। एक तो हमारी जो धमनियां हैं, आर्टरीज हैं, उनमें खून का थक्का जम गया, क्लॉटिंग जिसे हम बोलते हैं, और दूसरा खून की धमनी फट गई और
0: जी,
1: खून बाहर फैल गया।
0: जिसे कहते हैं नस फट गई
1: हाँ,
0: और
1: नस
0: खून की
1: बना,
0: सप्लाई
1: ब्रेन
0: बंद हो गई।
1: हैमरेज हो गई।
0: जी
1: तो अधरंग जो है वो दो प्रकार का है, एक जो ब्रेन हैमरेज जिसे हम बोलते हैं, और एक इश्कीमिक स्ट्रोक जिसमें रुकावट आ गई खून का थक्का जमने से। अब दोनों प्रकार के जो अधरंग हैं इनके लक्षण लगभग एक समान होते हैं, तो केवल लक्षणों के आधार पर यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि ये ब्लॉकेज वाला स्ट्रोक है कि हैमरेज वाला, परंतु इनका उपचार बिल्कुल विपरीत है। हमें ब्लॉकेज वाले स्ट्रोक में खून को पतला करना है और खून को फिर से सुचारू करना है, जबकि जहाँ पर ब्रेन हैमरेज हो गई है वहाँ बहते खून को रोकना है, वहाँ पे खून पिघलाने वाली दवाइयों से और भी ज़्यादा नुकसान होगा। तो यदि आप कहें कि किसी को अधरंग लग रहा है उसे एस्पिरिन दे दें या कोई वैसी दवाई दे दें, तो अधिक कई बार ये जो है हानिकारक भी हो सकता है। उससे बेहतर ये रहेगा कि यदि शक है कि किसी को अधरंग के लक्षण आ रहे हैं, निकटतम चिकित्सालय में तुरंत ले जाएं, दिन और रात में कोई अंतर ना करें, और हर किसी चिकित्सालय में जाने का भी फायदा नहीं है।
0: यानी समय संभालने की बात
1: बिल्कुल,
0: है।
1: और जाना भी उसी चिकित्सालय में जहाँ पर सीटी स्कैन की सुविधा
0: जी
1: उपलब्ध है,
0: जी
1: क्योंकि सीटी स्कैन के अलावा कोई ऐसी तरीका नहीं है जिससे हम ये पता कर सकें कि वो हैमरेज है या ब्लॉकेज है। तो प्राथमिक उपचार के चक्कर में ना पड़ें, अपने नीम हकीम जो है खतराए जान जिसे कहा जाता है, तो घरेलू उपचार के चक्कर में ना पड़ें, नहीं तो आप बहुत ही मूल्यवान समय जो है उसमें गंवा देंगे।
0: ना घरेलू उपचार ना पारंपरिक उपचार। जी, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे, हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर सुधीर, हमारी चर्चा जारी रहेगी, इस बीच एक कॉलर कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो,
2: नमस्कार मैम,
0: नमस्कार
2: डॉक्टर साहब को मेरा सादर नमस्कार। मैं इंदु कुमार शर्मा श्रीनिवास बात कर रहा हूँ। मैम
0: जी। महेंद्र जी, क्या जानना चाहेंगे आज?
2: डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर साहब से मेरा एक साधारण सा प्रश्न है मैम। बहुत बहुत ऐसा होता है कि जो पैरालाइज हो जाते हैं लोग, उनको मतलब जैसे हम हॉस्पिटलाइज कर देते हैं, और वहाँ पर सबसे प्राथमिक उपचार ये है मैम कि उनको वहाँ ग्लूकोज चढ़ा दिया जाता है। क्योंकि मैं आपके कार्यक्रम से देरी से जुड़ा हूँ, हो सकता है आपने इसका उत्तर पहले भी दे दिया हो, लेकिन चूंकि मैं जानना चाहता हूँ अपने लिए भी और थोड़ा लोगों के लिए भी, कि वो जो आप प्रथम दृष्टया जो आप ग्लूकोज से उनका उपचार करते हैं, लेकिन बाद में कुछ लोगों में ऐसी भी भ्रांतियां कि आप हॉस्पिटल क्यों ले गए जी, वहां पर आपने ग्लूकोज चढ़ा दिया, अब तो ये ज्यादा लंबा चलेगा। क्योंकि वो कुछ लोग बाहर भी इलाज करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे नारक में हो गया, पंचकुला में भी कोई इस प्रकार की मेडिसिन मिलती है, कोई इंजेक्शन मिलता है, ऐसा ऐसा वो एडवर्टाइजमेंट भी आती रहती है अखबारों में। तो डॉक्टर साहब, आप हमारा बिल्कुल मार्गदर्शन करें इस संदर्भ में कि हम प्रथम दृष्टया क्या करें।
1: देखिए, आपके स्तर पे जो चीज़ बात महत्वपूर्ण है वो है कि आप रोगी को तुरंत ऐसे चिकित्सालय में ले जाएं।

0: जहाँ पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। अब उसके बाद उपचार क्या करना है ये आप चिकित्सक पे छोड़ दें, क्योंकि जिसे आप ग्लूकोज बोल रहे हैं उसमें अनेक प्रकार की दवाइयाँ होती हैं। ग्लूकोज काली जिसे हम नॉर्मल सेलाइन बोलते हैं या डेक्सट्रोज बोलते हैं वही नहीं होता है। कई बार ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है, मैनिटॉल दिया जाता है जो खून को के थक्के को पिघलाने वाली दवाई है, वो भी इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू ही दी जाती है। और बहुधा लोग जो हैं बड़ा स्ट्रोक होने के बाद निगल नहीं सकते हैं, वे खा नहीं पाते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें उसकी क्षतिपूर्ति के लिए आईवी फ्लूइड्स जिन्हें हम बोलते हैं वो दिए जाते हैं। परंतु सामान्य जन इस बात में कोई तथ्य नहीं है कि ग्लूकोज लगाने से अधरंग बढ़ गया या ठीक नहीं हुआ। और ग्लूकोज एक्चुअली था, दिया क्या जा रहा है वो चिकित्सक और चिकित्साकर्मी ही जान सकते हैं। तो एक साधारण जनता के स्तर पर ये ज़्यादा आवश्यक है कि समय व्यर्थ ना गंवाएं, जो उपचार चिकित्सक ने देना है वो उसे देने दें।
1: जी, इस बीच एक और कॉलर है। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
2: जिला सागर तहसील बंडा मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, चरण सिंह
1: जी।
2: लखवा का बजा से लगता है मैम।
1: जी, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब बताएंगे आपको।
2: जी,
0: लकवा के आप कारण जानना चाहते हैं तो लकवे या अधरंग के जो कारण हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक जो कारण हैं जो वंशानुगत हैं जिसे हम नॉन मॉडिफाइबल बोलते हैं, जैसे किसी के परिवार में किसी को लकवा है तो आगे अगली पीढ़ी में लकवा होने के जो संभावना है वो बढ़ जाती है। आयु का अधिक होना एक रिस्क फैक्टर है, जितनी ज़्यादा आयु है लकवा होने की संभावना बढ़ जाती है। उसके अलावा शुगर इत्यादि भी कई बार वंशानुगत हो सकता है। परंतु उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण वो कारण हैं जो मॉडिफाइबल हैं, जिन्हें हम परिवर्तित कर सकते हैं, और इनके बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करना चाहूँगा। सबसे महत्वपूर्ण कारण जो अधरंग या पक्षाघात होने का है वो है उच्च रक्तचाप
1: जी,
0: हाई ब्लड प्रेशर जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण है। इस वजह से कि केवल एक ब्लड प्रेशर यदि हम कंट्रोल कर सके, ऐसे अध्ययन हुए हैं जिनमें पाया गया है कि 10 से 12 मिलीमीटर मरकरी हम अपना ब्लड प्रेशर कम कर सकें तो हमारी पक्षाघात की संभावना लगभग 40% घट जाती है, लगभग आधी हो जाती है। तो केवल एक ब्लड प्रेशर के सही उपचार से हमारी पक्षाघात होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। और उच्च रक्तचाप का जो निदान है, डायग्नोसिस है, कोई कठिन नहीं है। इसके लिए सिर्फ एक बीपी ऑपरेटर्स चाहिए। आजकल तो डिजिटल बीपी ऑपरेटर्स हैं, डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है, घर पे चेक कर सकते हैं। फिर ना इसकी दवाइयाँ जो हैं वो इतनी महंगी या उपलब्ध ना हो, अधिकतर चिकित्सा संस्थानों में प्राथमिक चिकित्सा संस्थानों तक सब सेंटर तक ये दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कारण है ब्लड प्रेशर। तो पर दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा पाया गया है कि अनुमान है कि भारत में लगभग 15-20% लोग हैं जो उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, परंतु उनमें से 2/3 को पता ही नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी ब्लड प्रेशर ही चेक नहीं कराया। फिर जिन 1/3 को पता भी है उनमें से भी 1/3 हैं जो दवाई लेते हैं
1: और वे बीच में
0: छोड़ देते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर 15-20% ही उच्च रक्तचाप के रोगी हैं जिनका जो रक्तचाप है वो नियंत्रण में है।
1: तो डॉक्टर सुधीर, क्या डायबिटीज और तनाव भी कारण हो सकता?
0: बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी पर अब आ रहा था। जो उच्च रक्तचाप के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है वो है धूम्रपान।
1: जी,
0: धूम्रपान एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है। वैसे तो ना केवल पक्षाघात के लिए, कितनी ही बीमारियां, कितने ही कैंसर हम कहाँ करने हो धूम्रपान से संबंधित है। तो धूम्रपान के बारे में वैसे भी बहुत प्रचार होता रहता है तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। ऐसा कहा जाता है कि धूम्रपान जो है, जो एक सिगरेट है, उसके एक सिरे में तो धुआं होता है और दूसरे सिरे पे कोई मूर्खी होगा
1: जी,
0: क्योंकि इतनी सारी जो है वो बीमारियां कर रहा है फिर भी आप धूम्रपान कर रहे हैं। तो फिर यदि आप अपना स्वास्थ्य का खुद ख्याल नहीं रखेंगे तो फिर दूसरा भी कोई कुछ नहीं कर सकता।
1: जी बिल्कुल। इस बीच एक कॉलर है, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जा रहा है। हेलो
3: जी। दीदी, आप दोनों महोदय जी को राम राम।
1: जी नमस्कार।
3: जी, मैं पंडित राम जी गर्ग रीवा मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ।
1: जी
3: मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति को लकवा मार दिया है तो उसको तुरंत ले जाया जाए तो क्या वो जल्दी से जल्दी ले जाने से हॉस्पिटल ठीक हो जाते हैं? पर मैं देखता हूँ तो उनको कुछ ना कुछ लक्षण रहे ही आते हैं, चाहे कितना जल्दी हॉस्पिटल ले जाए।
0: आपका प्रश्न जो

0: तो ये है कि यदि हम जल्दी ले जाते हैं फिर भी व्यक्ति पूरी तरह ठीक नहीं होता है, तो देखिए अधरंग या लकवा कितना ठीक होगा ये इस बात पे निर्भर रहता है कि कौन सी जो धमनी है वो अवरुद्ध हुई है और कितनी बड़ी है, मस्तिष्क का कितना हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। यदि हिस्सा वो छोटा है, कम है, तो रिकवरी पूरी भी हो सकती है, 100% भी हो सकती है। परंतु यदि वह जो ब्रेन का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो रहा है वो बड़ा है, और फिर आप पहुंच भी देर से रहे हैं, और फिर आपको उचित उपचार भी नहीं मिल रहा है, तब तो आपको लकवे के जो हैं हम जिसको सिकुले बोलते हैं, उसका जो परिणाम है उसकी वजह से जो शरीर में अपंगता आएगी वो फिर जाती नहीं। और लकवे के बारे में ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक व्यक्ति को यदि यदि हम देखें लकवा होने के बाद, अगर हम हमारी जो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ की जो हम बात करते हैं, 6 महीने के अंदर 1/3 लोग मर जाते हैं लकवे के से जो पीड़ित होते हैं, और 1/3 लोग ही हैं जो पूर्णतया स्वतंत्र हो पाते हैं अपनी दिनचर्या में, और 1/3 लोग वे हैं जो ना मरे और ना पूरी तरह ठीक हुए। उनकी दशा सबसे ज़्यादा दुखद है क्योंकि वो पूरी तरह से समाज पर, अपने परिवार पर निर्भर हो
1: असहनीय
0: जाते
1: हो
0: हैं,
1: जाती है
0: असहनीय हो
1: स्थिति। हाँ
0: जाते
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल।
0: वो अपना शरीर की देखभाल नहीं करते, अधिक लोग तो बोल और समझ भी नहीं सकते, तो उनकी दुर्दशा जो है बहुत ही दयनीय
1: कई बार
0: होती
1: परिवार
0: है।
1: भी अनदेखी कर देता है।
0: बिल्कुल, तो इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि हम इसका उपचार, इसके एक तो इसके बारे में जागरूकता रखें, बचाव रखें, और यदि हो जाए तो सही उपचार के लिए सही समय पर जाएं।
1: धन्यवाद जी कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। एक कॉलर और हैं, डॉक्टर सुधीर शर्मा आपसे कुछ जानकारी चाह रहे हैं। हेलो,
2: हेलो, नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: डॉक्टर साहब नमस्कार,
0: नमस्कार,
2: ललित बोल रहा हूँ क्या आरटू से जी।
0: नमस्कार जी।
2: डॉक्टर साहब मैंने दो बातें पूछनी थी आपसे जी।
0: हाँ
2: जैसे बचपन में सिर में चोट लग जाती है, जैसे स्पोर्ट्समैन होते हैं, बच्चे खेलते हैं, तो उसका कोई रिलेशन है इससे जी?
0: देखिए, सिर में चोट लगने से भी कई बार शरीर में विभिन्न प्रकार के लक्षण आ सकते हैं, परंतु उन्हें हम अधरंग या लकवा नहीं कहते, वो चोट की वजह से लगी हैं, जबकि अधरंग जो है वो खून के प्रवाह के रुकने से, ब्लॉकेज से होता है। तो सिर में चोट लगने से भी शरीर में कमजोरी, बोलने में दिक्कत, वो सब लक्षण आ सकते हैं, पर उनका उपचार अलग से होता है और उसे हम स्ट्रोक की श्रेणी में नहीं रखते हैं।
1: जी
2: जी डॉक्टर
1: जैसे
2: साहब, दूसरा मेरा प्रश्न है कि जैसे ब्रेन स्ट्रोक किसी को हो जाता है और जितने हम उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो फर्स्ट एड हम क्या लें उस दौरान?
0: अभी कुछ देर पहले ही हमने इस विषय पर बात की है कि फर्स्ट एड के चक्कर में ना पड़े, व्यक्ति को तुरंत उस चिकित्सालय में ले जाएं जहां सीटी स्कैन उपलब्ध है, क्योंकि
2: अच्छा
0: जैसा मैंने कहा कि दो कारण हैं पक्षाघात होने के, एक है खून का बहाव का रुक जाना खून के थक्के क्लॉटिंग की वजह से, और दूसरा है धमनियों का फट जाना हैमरेज की वजह से, और दोनों का उपचार विपरीत है। और अगर आप ये भी सोचें कि ब्लड प्रेशर बहुत हाई, हम उसे कम कर दें, तो उसमें भी जो ब्लॉकेज वाले स्ट्रोक हैं उसमें हम ब्लड प्रेशर तुरंत से बहुत अधिक कम नहीं करना चाहते, क्योंकि ब्लॉकेज की वजह से जो बाकी धमनियां हैं वो उच्च रक्तचाप वहाँ से खून मस्तिष्क को पहुँचा रहा है। तो फर्स्ट एड आप यही दें कि तुरंत मरीज को निकटतम उस चिकित्सालय ले जाएं जहाँ पर सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, और घरेलू उपचार में, पारंपरिक उपचार में यदि आप जितना अधिक समय व्यर्थ गंवाएंगे तो व्यक्ति को सही उपचार मिलने की संभावना उतनी कम होती जाएगी।
1: जी हेलो डॉक्टर, कार्यक्रम आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किया जा रहा है। आज का हमारा विषय है लकवा या पक्षाघात। यदि आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2808034, और हमारा दूसरा नंबर रहेगा 2970400। हमारे साथ आज स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर सुधीर शर्मा। डॉक्टर सुधीर शर्मा, जैसे कि लकवे पर हमारी बात हो रही है, जैसे आपने कहा कि ब्रेन स्ट्रोक कारण है और स्ट्रोक जो है उसका लक्षण है, तो किन लोगों में खतरा बना रहता है, किन में संभावना रहती है? एक तो आपने बता दिया कि हाई ब्लड प्रेशर जिनमें है उनको बचाव करना है, और कौन कौन लोग इसमें
0: दूसरी हमने
1: शामिल?
0: बात धूम्रपान की। तीसरी मैं जो बात करना चाहूँगा वो है मधुमेह,
1: जी
0: डायबिटीज़। डायबिटीज़ को कहा जाता है कि सभी असंक्रामक रोगों की जननी है, इट इज़ द मदर ऑफ ऑल नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जिसमें स्ट्रोक ले लें, हृदय के रोग ले लें, आँखों के ले लें, किडनी के ले लें। तो जो मधुमेह है उसका भी जो डायग्नोसिस है कोई कठिन नहीं है, शुगर की जांच अधिकतर चिकित्सालयों में उपलब्ध है, परंतु व्यक्ति इलाज से बहुत गुरेज करते हैं।

0: इस
1: जी
0: दवाई शुरू हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, हमारी शुगर कंट्रोल हो जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, उम्र भर दवाई खानी पड़े। बीपी के बारे में भी यही एक मिथक है कि भी दवाई शुरू हो गई तो उम्र भर खानी है इसलिए शुरू ही नहीं करनी है। देखिए अब हम खाना भी तो रोज़ खाते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम खाना ही छोड़ दें कि रोज़ खाना पड़ रहा है, क्योंकि जो बीपी और शुगर हैं वो जो शरीर में क्षति करते हैं वो धीरे धीरे होती है। फिर आप बाद में जाके दवाई शुरू कर भी दें पर जो क्षति तब तक हो चुकी है वो वापस नहीं होती है।
1: जी
0: तो इसलिए मधुमेह एक तो इसका टेस्ट कराएं शुगर का नियमित रूप से, फिर जिनको मधुमेह है वे इसकी उचित रूप से नियमित दवाई लें, परहेज़ भी करें, परहेज़ इसमें आवश्यक होता है, परंतु सिर्फ परहेज से ही मधुमेह में अधिकतर शुगर कंट्रोल नहीं होता है, आपको दवाई लेनी पड़ती है। अगर ज़रूरत पड़े तो इंसुलिन भी लें, लोग इस इंजेक्शन लेने से तो बहुत ही कतराते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर हमारा स्वास्थ्य है, यदि वो स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो फिर दवाइयाँ बाद में जितनी जितनी मर्जी ले लें आपको वो स्वास्थ्य पुनः प्राप्त नहीं होगा। तो मधुमेह हो गया। चौथी जो मैं जिस बात पर करना चाहूँ वो है हमारा खान पान और व्यायाम। आजकल हमारी जो जीवन शैली है उसमें व्यायाम की काफ़ी कमी है, शारीरिक श्रम वाले कार्य जो है मशीनीकरण हो गया है तो कम है, गाड़ियां हैं, चलना फिरना भी कम है, तो इस वजह से आजकल मोटापा जो है ये बढ़ रहा है और एक्सरसाइज की काफ़ी कमी है। तो यदि आप हफ्ते में 3 दिन भी कुछ ऐसा व्यायाम करें जिससे थोड़ा पसीना आए, हमारी हृदय गति बढ़े, लगभग 30 से 40 मिनट करें, तो उससे हमारे न केवल ब्रेन स्ट्रोक, शरीर के अन्य अंगों को भी बहुत अधिक इससे लाभ मिलता है।
1: यानी हमें अपनी दिनचर्या में बदलाव लाना होगा अगर इससे बचाव करना है। डॉक्टर सुधीर, सबसे अहम सवाल ये है कि इसका इलाज क्या रहता है, उपचार क्या रहता है?
0: जैसे हमने बात की, दो प्रकार के जो हैं पक्षाघात या स्ट्रोक्स होते हैं, एक क्लॉटिंग वाले जिसमें खून का बहाव जो है खून के थक्के की वजह से अवरुद्ध हो जाता है, और दूसरे हैं हेमरेज वाले। तो एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 3/4 जो स्ट्रोक हैं, लगभग 75 से 80% जो स्ट्रोक हैं वो ब्लॉकेज वाले होते हैं, जिसमें खून का धक्का जो है धमनियों में खून को रोक देता है। तो इन पक्षाघात के लिए अब हमारे पास ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो इस थक्के को पिघला सकती हैं और फिर से खून का बहाव सुचारू कर सकती हैं। समस्या यही है कि ये जो इलाज है ये शुरू के 4 से 4.5 घंटे में ही कारगर है, तो इसीलिए समय बहुत ज़रूरी है कि व्यक्ति समय पर चिकित्सालय पहुंचे और उसे ब्लॉकेज वाला स्ट्रोक हमें सीटी स्कैन में आता है तो उस इंजेक्शन को का उसे लाभ मिले, क्योंकि 4 से 4.5 घंटे के बाद उस इंजेक्शन का लाभ नहीं है, उससे नुकसान होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो जो ब्लॉकेज वाले स्ट्रोक हैं उसमें हमारे पास ऐसी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और ये दवाइयाँ अब हमने हिमाचल प्रदेश में तो जितने भी सीटी स्कैन युक्त चिकित्सालय हैं सब जगह पर ये उपलब्ध हैं और निःशुल्क उपलब्ध हैं।
1: और गाँव और जो छोटे शहरों के लोग हैं उनसे क्या गलती होती है, एक संदेश से बताएं।
0: सबसे पहले तो यह है कि हम जब पक्षाघात है हम उसे अपने पारंपरिक उपचार में ही समय गंवा देते हैं, और जब हम इलाज के लिए जाते भी हैं तो सही चिकित्सालय नहीं पहुंचते हैं। फिर सब चिकित्सा के बावजूद भी जैसे मैंने बताया 1/3 लोग ही पूरी तरह ठीक हो पाते हैं, तो इसमें व्यायाम फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, रिहैबिलिटेशन का बहुत बड़ा रोल है, और इसमें हमें अपेक्षा जो है वो दिनों में ठीक होने की नहीं, हफ्तों और महीनों में ठीक होने की रखनी चाहिए, और निरंतर इसके लिए एक्सरसाइज भी आवश्यक है।
1: डॉक्टर सुधीर, सही पहचान और सही इलाज ही इसकी जागरूकता है। आज आपने लकवा यानी पक्षाघात से के विषय पर आज हमें जानकारी दी, विस्तार से जानकारी दी, आप हमारे स्टूडियो में, आपका धन्यवाद। इसी के साथ हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आज का अंक यहीं संपन्न होता है, आगे लेते हैं, नमस्कार।
2: लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो डॉक्टर अभी आपने सुना, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
3: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
4: वन जीरो थ्री पॉइंट सेवन मेगाहर्ट्ज़ पर ये है FM शिमला।

0: आइए अब आपको बताते हैं आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल पर आज आप कौन से कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम सुन सकते हैं। सुरबेला कार्यक्रम में सुबह 9:31 पर राजेश कुमार से सुनेंगे तबला वादन ताल 3 ताल और 10 आप सुनेंगे फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम रिमझिम। NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग 11:30 पर, सैनिकों के लिए कार्यक्रम 1:10 पर, कार्यक्रम सुनहरी किरणें सुनेंगे आप 2:00, 2:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। शाम 4:20 पर हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में सिरमौरी कार्यक्रम, 4:50 पर महास्वी, 5:20 पर स्पीति, 6:06 पर कांगड़ी और 6:35 पर लाहौली कार्यक्रम। शाम 7:10 पर कार्यक्रम कृषि जगत। रात 8 आप सुनेंगे धारा दे गीत, संदीप कुमार से सुनिएगा सुगम संगीत 8:30 पर, 9:15 पर गजलों का गुलदस्ता, रात 9:30 पर मनी टॉक और मंथन 9:45 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। परछाई ये नाटक सुनिएगा रात 10 और 10:30 पर कार्यक्रम सुरबहार। तो ये कार्यक्रम आज आप आकाशवाणी के प्राइमरी चैनल मीडियम वेव 387.6 अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर सुन सकते हैं। अभी आप बने हुए हैं हमारे साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 387.6 अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र भी प्रसारित कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो DTS सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है।
2: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
3: 26, 28 और 30 मई को 3 में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
2: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
3: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

टॉक्स टू डियो। नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव में आज 1293 पंचायतों में डाले जा रहे हैं वोट। मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी। राज्य में 28 मई को दूसरे चरण के होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आज दोपहर बाद 3 बजे थमेगा खुले में प्रचार। उम्मीदवार केवल व्यक्तिगत रूप से ही कर सकेंगे जनसंपर्क। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ने के चलते मिल्क फेड ने दूध के दामों में की 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली प्रदेश की सबसे लंबे रूट वाली HRTC की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से शुरू। और IPL क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज धर्मशाला के सामने होंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और

0: अब समाचार विस्तार से। पंचायत चुनाव प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान शुरू हो गया है। पहले चरण के तहत प्रदेश की 1,293 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले जा रहे वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक इनके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने बताया कि मतदान कार्य को पूर्ण रूप से संपन्न करवाने के लिए 8,198 मतदान दल कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के उद्देश्यों से मतपेटियों में स्कैनर की सुविधा शुरू की है, जो मतों की गणना तक निगरानी में सहायक सिद्ध होगी।
1: देखिए, आज प्रातः 7 बजे से जो मतदान शुरू हो चुका है। आज हमारा प्रथम चरण में 1,293 पंचायतों में चुनाव जारी है। इस बार आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए काफी स्टेप उठाए हैं। सभी बेल्ट बॉक्सेस के ऊपर जो है वो स्कैनर लगाया है, तो कोई भी बेल्ट बॉक्स जो है वो जब पोलिंग स्टार्ट हुई है तो वो स्कैन किया गया है। स्कैन करने उसकी एक आईडी आ गई और वो जब काउंटिंग पे जाएगा तो वहाँ फिर स्कैन किया जाएगा, ताकि बेल्ट बॉक्स पोलिंग स्टेशन पे यूज हुआ है वही बेल्ट बॉक्स काउंटिंग के केंद्र पे पहुंचा है। जहां तक काउंटिंग का सवाल है, हर काउंटिंग सेंटर की 100% जो है वो सीसीटीवी कवरेज की जाएगी, ताकि काउंटिंग के में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी का कोई चांस ना रहे और पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग हो और परिणाम जो है समय पर घोषित।
0: इस बीच 28 मई को दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 3 बजे खुले में प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार केवल व्यक्तिगत रूप से ही जनसंपर्क कर सकेंगे। जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती 31 मई को होगी। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने कहा है कि प्रदेश में कुल 3,754 पंचायतों के लिए 3 चरणों में वोट डाले जा रहे हैं। पहले चरण में आज मतदान हो रहा है, जबकि दूसरे चरण के तहत 1,274 पंचायतों में 28 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि तीसरे और अंतिम चरण में 1,187 पंचायतों में चुनाव होगा। उन्होंने कहा कि इस बार प्रदेश में निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के लिए 21,678 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें से 3,554 मतदान केंद्र संवेदनशील जबकि 1,585 मतदान केंद्र अति संवेदनशील घोषित किए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी लोगों से जनगणना कार्य में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आग्रह किया है। जनगणना निदेशालय की निदेशक दीपशिखा शर्मा ने शिमला में मुख्यमंत्री से भेंट की और उन्हें जनगणना 2027 के विभिन्न पहलुओं से अवगत करवाया। उन्होंने बताया कि लोगों को इस बार स्वगणना का भी विकल्प दिया गया है और 1 से 15 जून तक स्वगणना पोर्टल पर जानकारी दर्ज करवाई जा सकती है। प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई के बीच करवाया जाएगा। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ गई है, जिसके चलते राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी मिल्कफेड ने दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी के बाद मिल्कफेड का खुला दूध 51 से बढ़कर 53 रुपये और पैकेट बंद दूध 55 से बढ़कर 57 रुपये प्रति लीटर हो गया है। मिल्कफेड ने पिछले 7 नवम्बर से दूध के दाम 3 से 4 रुपये तक घटाए थे। मिल्कफेड हिमाचल में सबसे बड़ा सरकारी दुग्ध उत्पादक संघ है। रोजाना हजारों लीटर दूध की सप्लाई मिल्कफेड के जरिए होती है। दाम बढ़ने से अब दूध से बनने वाले सभी उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले सबसे लंबे रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से एक बार फिर शुरू हो गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक केलंग अंशित शर्मा ने कहा है कि 990 किलोमीटर लंबा ये रूट स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहती है। ये बस लाहौल स्पीति के प्रमुख पर्यटन स्थलों जिस्पा, दारचा, बारालाचा और सच्चू से होती हुई लेह तक पहुँचेगी।
2: HRTC केलंग अपना सबसे लंबा रूट दिल्ली केलंग ले इसको रिज्यूम करने जा रहा है। ये रूट हमारा दिल्ली से स्टार्ट होगा, दिल्ली से 12:20 का समय रहेगा और ये

0: केलोंग पहुंचेगा 5 बजे सुबह। केलोंग से मॉर्निंग 5:30 गाड़ी निकलेगी और वो बालालाचा पास, नकीला पास, तांगलंगला पास होते हुए लेह पहुंचेगी। ये जो पूरा सफर रहेगा दिल्ली से 990 किलोमीटर का रहेगा और इसका किराया जो है वो 1840 रुपए रहेगा। टूरिस्ट काफी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, ये पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहेगा कि वो इस रूट का आनंद लें।
1: नशा तस्करी के नेटवर्क को ख़त्म करने के अभियान में शिमला पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर पंजाब के तरनतारन, मोगा और हरियाणा के अंबाला से 3 मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया है। ASP ने बताया कि शिमला पुलिस ने इस साल अब तक नशा तस्करी के अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 32 नेटवर्क को ध्वस्त किया है, जिसमें NDPC एक्ट के तहत 134 मामले दर्ज हुए हैं और 286 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। IPL क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना आज गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से HPCA स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे IPL 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। पंजाब किंग्स पर जीत के बाद रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु पहुंचने वाली पहली टीम बनी थी। टीम ने 14 मैचों में 18 अंक हासिल कर बेहतर रन रेट के आधार पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। IPL के इस मैच को लेकर HPCA ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के साथ ही आने वाले दिनों में लू की संभावना को देखते हुए मंडी जिला प्रशासन ने सभी विभागों को सतर्क रहते हुए जरूरी तैयारियां पूरी करने के दिशा निर्देश दिए हैं। इन विभागों ने मुख्यतः स्वास्थ्य, स्कूल, कृषि व वन विभाग शामिल है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे जिला संवाददाता।
2: भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान ने जिला प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पूरे मंडी जिला में अलर्ट जारी कर दिया है। सुंदरनगर में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, जबकि यह तापमान मंडी शहर में 38 डिग्री हो गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में लू और कम बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने सभी विभागों को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से बचने के लिए तैयारियां की गई हैं, जबकि स्कूलों में बच्चों के लिए ठंडे पानी और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। वहीं सार्वजनिक स्थानों में पेयजल सुविधाएं शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। वन विभाग को जंगलों में आग की घटनाओं पर नजर रखने और कृषि विभाग को किसानों को फसलों को गर्मी से बचाने के उपाय बताने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है सीधी धूप से बचें और बच्चों व बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। आकाशवाणी समाचारों के लिए मंडी से मैं मुनीश सूद।
1: अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर अखबारों ने पंचायत चुनाव से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है। दैनिक जागरण की सुर्खी है 1293 पंचायतों को आज मिलेंगे प्रतिनिधि। अमर उजाला ने शीर्षक दिया है हिमाचल में 1293 पंचायतों में चुनाव आज, 16 लाख मतदाता चुने गए गांव की सरकार। दिव्य हिमाचल बतौर मुख्यमंत्री लिखता है देश में सर्वश्रेष्ठ बनेंगे हिमाचल के स्कूल। हिमाचल दस्तक की एक खबर है सर्दियों के लिए बिजली बोर्ड ने खरीदी एडवांस बिजली। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के चुनाव में आज 1293 पंचायतों में डाले जा रहे हैं वोट, मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से जारी। राज्य में 28 मई को दूसरे चरण में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए आज दोपहर बाद 3 बजे थमेगा खुले में प्रचार, उम्मीदवार केवल व्यक्तिगत रूप से ही कर सकेंगे जनसंपर्क। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ने के चलते मिल्क फेड ने दूध के दामों में की 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को जोड़ने वाली प्रदेश की सबसे लंबे रूट वाली HRTC की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से शुरू। और IPL क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में आज धर्मशाला में आमने सामने होंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
3: प्रादेशिक समाचार अभी आपने सुने। इसे FM शिमला 103.7 MHz के साथ साथ आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी प्रसारित किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
4: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महक

0: एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। हंसने हंसाने आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
1: हम तो मोहब्बत करेगा दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा
0: एफएम।

कुदरत के रंग 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर कुदरत के रंग का आज का सफर आप तय करेंगे अपनी हमसफर भारती के साथ। दोस्तों, जब जिंदगी को बहुत करीब से देखो, इन पहाड़ों की खामोशी को महसूस करो, तो समझ आता है कि कुदरत सिर्फ नज़ारों का नाम नहीं है। ये खुदा की लिखी वो मुकम्मल शायरी है जिसे समझने में उम्र गुजर जाती है। आज कुदरत के रंग में बात होगी उन लहरों की जो सिर्फ पानी नहीं, रोमांच, हौसला और मुस्कुराहट भी बहा कर लाती है। रिवर राफ्टिंग यानी तेज बहती नदी के साथ दोस्ती करने का वो अनुभव जहां हर मोड़ पर दिल कह उठता है कि जिंदगी सच में खूबसूरत है। कुदरत के रंग में हम आज बात करेंगे हिमाचल की उन शानदार जगहों की जहां रिवर राफ्टिंग का रोमांच हर धड़कन को और भी जिंदा कर देता है।

तो चलिए रिवर राफ्टिंग के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं मनाली से। मनाली से लगभग 15 किलोमीटर दूर बाबेली नाम का एक खूबसूरत जगह है, जहां से राफ्टिंग का ये रोमांचक सफ़र शुरू होता है और कुल्लू के पिरड़ी तक पहुंच जाता है। ये पूरा स्ट्रेच लगभग 14 किलोमीटर लंबा है। इस सफ़र को तय करने में लगभग 45 मिनट से एक घंटे का समय लगता है। यहाँ पानी में Grade 2 और Grade 3 लहरों के उछाल मिलते हैं, जो सुरक्षित भी हैं और दिल थामने पर मजबूर करने वाले भी। अगर आप पहली बार रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं तो 3 से 5 किलोमीटर का स्ट्रेच ले सकते हैं, और अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं यानी अनुभवी हैं तो गाइड्स की देखरेख में 14 किलोमीटर का स्ट्रेच आपका इंतज़ार कर रहा है। 103.7 MHz FM शिमला पर आप सुन रहे हैं कुदरत के रंग। आज बात कर रहे हैं रिवर राफ्टिंग की।

தத்தும் தத்தும்.

ब्यास नदी की लहरों पर थरकने के बाद अब कुदरत के रंग में हम रुक कर रहे हैं शिमला के पास बसे तत्तापानी की। यहाँ दो बड़ी स्ट्रेच हैं, चब्बा से तत्तापानी जो लगभग 12 किलोमीटर लंबा है, और ज़्यादा एडवेंचर चाहते हैं तो सुन्नी से तत्तापानी तक का 36 किलोमीटर का विशाल स्ट्रेच आपका वेट कर रहा है। यहाँ ग्रेड 1 से ग्रेड 4 के रैपिड्स मिलते हैं। चब्बा से तत्तापानी वाला रूट बिगिनर्स और परिवार के लिए सुरक्षित और मज़ेदार है। अनुभवी राफ्टर्स 36 किलोमीटर वाला स्ट्रेच एंजॉय कर सकते हैं। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुदरत के रंग। कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा एक संदेश के बाद।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: कुदरत किरण, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। कुदरत किरण में अब हम कदम रखेंगे हिमाचल के एक ऐसे कोने में जहां की हवाओं में लोकगीत घुले हैं, खूबसूरत चंबा और रावी नदी। चंबा का असली रोमांच शुरू होता है चमेरा लेक के पास से। यहां दो रूट्स मशहूर हैं, चमेरा डैम से टीसा ब्रिज जो लगभग 8 से 10 किलोमीटर लंबा है, इसके अलावा एक छोटा और शांत स्ट्रेच जो लगभग 4 से 5 किलोमीटर का है। यहाँ मुख्य रूप से ग्रेड 2 मिलता है जिसमें लहरों का उछाल बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं होता, तो आप यहाँ बिना किसी डर के साथ पानी का आनंद ले सकते हैं।

कुदरत के रंग एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रिवर राफ्टिंग की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों अब दिल थाम लीजिए क्योंकि अब है हम अपने आखिरी पड़ाव पर, लाहौल और स्पीति, जहां चंद्र और भागा के खौफनाक और खूबसूरत रूप से आप रूबरू होंगे। यहां नदी का बहाव तेज और पानी इतना बर्फीला होता है कि यहां ग्रेड 4 और ग्रेड 5 के रैपिड्स मिलते हैं। लाहौल घाटी के दारचा से लेकर जिस्पा और फिर वहां से आगे केलोंग तक का स्ट्रेच राफ्टर्स की पहली पसंद है। ये लगभग 12 से 16 किलोमीटर लंबा है जहां आगे चलकर चंद्र और भागा नदियां मिलकर चेनाब नदी बनती है।

दोस्तों, ये एडवेंचर का मज़ा तभी तक है जब तक हम सुरक्षित हैं। कुदरत खूबसूरत भी है और ताकतवर भी। हिमाचल में रिवर राफ्टिंग के लिए मार्च से जून और सितंबर से नवंबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है, पर राफ्टिंग का मन बनाएं तो हमेशा याद रखें कि हिमाचल टूरिज्म से रजिस्टर्ड और लाइसेंस्ड ऑपरेटर के साथ ही राफ्टिंग करें। लाइफ जैकेट और हेलमेट पहनने में कभी भी लापरवाही ना बरतें। आज के सफ़र में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए सफ़र के साथ। और भूलिएगा नहीं कि प्रकृति कुदरत का वो रंगमंच है जहाँ हर रंग की अपनी एक कहानी और अपना एक तजुर्बा है। इस आखिरी गीत के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं और मैं भारती इस कार्यक्रम को भी यहीं विराम दूंगी इस गीत के बाद।

0: कुदरत किरण, ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। आइए अब सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हूं विनोद कुमार। डीजल में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ गई है, जिसके चलते राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी मिल्कफेड ने दूध के दामों में 2 रुपये प्रति

0: लीटर बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी के बाद मिल्कफेड का खुला दूध 51 से बढ़कर 53 रुपये और पैकेट बंद दूध 55 से बढ़कर 57 रुपये प्रति लीटर हो गया है। हिमाचल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले सबसे लंबे रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से एक बार फिर शुरू हो गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक केलंग अंशिता शर्मा ने कहा कि 990 किलोमीटर लंबा ये रूट स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहती है। ये बस लाहौल स्पीति के प्रमुख पर्यटन स्थलों जिस्पा, दारचा, बारालाचा और सरचू से होती हुई लेह तक पहुंचेगी। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज सुबह 7 बजे से मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। पहले चरण के तहत प्रदेश की 1293 पंचायतों में वोट डाले जा रहे हैं। मतदान दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन अधिकारी संजीव महाजन ने कहा है कि मतदान कार्य को पूर्ण करवाने के लिए 8198 मतदान दल कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मतपेटियों में स्कैनर की सुविधा भी शुरू की है, जो मतों की गणना तक निगरानी में सहायक सिद्ध होगी। प्रदेश में 28 मई को दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 3 बजे खुले में प्रचार बंद हो जाएगा। इस दौरान उम्मीदवार केवल अब व्यक्तिगत रूप से ही जनसंपर्क कर सकेंगे। तीसरे व अंतिम चरण का मतदान 30 मई को होगा। नशा तस्करी के नेटवर्क को खत्म करने के अभियान में शिमला पुलिस ने 2 अलग-अलग मामलों में 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक ने जानकारी देते हुए बताया कि बैकवर्ड लिंकेज के आधार पर पंजाब के तरनतारण, मोगा और हरियाणा के अंबाला से 3 मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया है। आईपीएल क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना आज गुजरात टाइटंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से एचपीए स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। इस मुकाबले की विजेता टीम सीधे आईपीएल 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। आईपीएल के इस मैच को लेकर एचपीसीए ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है और इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है। एफएम न्यूज हेडलाइंस पे आज बस इतना ही। नमस्कार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला।
2: हर खुशी अब लगे नमी,
1: मस्त चुनो मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए एफएम।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला आप सुन रहे हैं। लिसनर्स, आपको बता दें कि आज दिन में 2:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान। अभी 10 बज चुके हैं। पेश है प्रोग्राम राग छाया। राग छाया, इस कार्यक्रम में पहला गीत फिल्म रॉकस्टार से आपको हम सुनवा रहे हैं, कत्या करूं। ये सॉन्ग आपके लिए प्ले कर रहे हैं जो मुख्य रूप से राग काफी पर आधारित है। संगीतकार एआर रहमान और गीत को आवाज दी है हर्षदीप कौर ने। कत्या करूं की मेलोडी और इसकी प्राकृतिक लोकधुन राग काफी थाट के अंतर्गत आती है। एआर रहमान ने इस राग को विशुद्ध शास्त्रीय रखने के बजाय फोक और सूफी संगीत में ढाला है। आइए सुनते हैं।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: रागछाया, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। तनु वेड्स मनु से पिया न रहे मन बसिया, ये सॉन्ग अब आपके लिए हम पेश कर रहे हैं। मुख्य रूप से राग अहिर भैरव और राग भैरव के प्रभाव पर आधारित क्लासिकल टच वाले गीत के संगीतकार हैं कृष्णा सोलू। रूहानी आवाज़ से सजाया है रूप कुमार राठौड़ ने। आइए सुनते हैं।

संगीतकार शंकर एहसान लॉय ने कंपोज किया है, गायक कलाकार हैं श्रेया घोषाल और जावेद बशीर। भाग मिल्खा भाग इस फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए पेश है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला पर। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं राग छाया।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राग छाया।
4: आपका गांव है आपका गर्व। इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
5: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
4: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: तेरे रंग रंग अतरंगी रे इस फिल्म का गीत अब आप सुनेंगे। राग यमन और राग चारुकेशी के तत्वों पर आधारित बेहद जटिल और खूबसूरत राग मालिका रचना अब आप सुनेंगे। श्रेया घोषाल और हरिचरण ने इस गीत को अपनी आवाजें दी हैं। संगीतकार हैं AR रहमान। राग छाया कार्यक्रम 103.7 MHz FM शिमला पर आप सुन रहे हैं।
6: कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग लगी समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन में दंग और दर्प दंग।

राग यमन कल्याण के शास्त्रीय ढांचे पर आधारित है ये हमारा नेक्स्ट सॉन्ग, जिसमें बनारस के पारंपरिक लोक संगीत जिसमें चेती कजरी अंग का बहुत ही खूबसूरत प्रभाव मिलता है। अब सुनते हैं फिल्म रांझना से, आवाज़ श्रेया घोषाल की है, लिखा है इरशद कामिल ने और संगीतकार हैं AR रहमान।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: वीर फिल्म से अब आप सुनेंगे ये गीत, जो मुख्यतः राग बिलावल पर आधारित है, जिसमें राग अहलैया बिलावल का भी बेहद खूबसूरत प्रभाव मिलता है। साजिद वाजिद ने यह सॉन्ग कंपोज किया और लिखा है ओलजार ने। इस गीत को गाया रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल ने। तो आइए सुनते हैं फिल्म वीर से ये नगमा।

के संगीतकार हैं सचिन गुप्ता। राहत फतेह अली खान ने गीत को अपनी आवाज़ दी है। यूं ही बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम राग छाया। अलग अलग गीतों के साथ हम आपका मनोरंजन कर रहे हैं। जिंदगी ये सफर में है, दिल कबड्डी फिल्म का ये गीत हम अब आपको सुनवाएंगे। राग किरवानी के प्रभाव और उसके सुरों के ढांचे पर आधारित ये गीत आप सुनेंगे। भावुक और सूफियाना अंदाज वाले रॉक फ्यूजन गीत।

0: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
1: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
0: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
2: ओमकार। इस फिल्म से आइए सुनते हैं हमारा अगला गीत, राग अहिर भैरव पर आधारित। संगीतकार विशाल भारद्वाज, लिखा है गुलजार ने और आवाज दी है राहत फतेह अली खान ने। उम्मीद है ये गीत आपको पसंद आएगा।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला राग छाया ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। सुनते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
0: इस्माइल दरबार द्वारा कंपोज सॉन्ग अब सुनते हैं, जिसे लिखा है नुसरत बदर ने। कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की आवाज, राग यमन पर आधारित ये गीत। इसके साथ इसमें राग मांड और राग भूपेश्वरी के बेहद खूबसूरत सेमी क्लासिकल प्रभाव देखने को मिलते हैं। मूवी का नाम है देवदास।

फिल्म हम दिल दे चुके सनम, इसका टाइटल ट्रैक अब आप सुनेंगे। राग अहिर भैरव पर आधारित ये सेमी क्लासिकल रचना है। संगीतकार इस्माइल दरबार महबूब ने इस गीत को लिखा है। कविता कृष्णामूर्ति, मोहम्मद सलामत व डोमिनिक ने अपनी आवाजें दी हैं। राग छाया कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आपके लिए हम प्ले कर रहे हैं।

103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप सुन रहे थे कार्यक्रम राग छाया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। 11 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर के साथ साथ डीटीएच सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण तरीके से जारी है। पहले चरण के तहत प्रदेश की 1293 पंचायतों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चलेगा। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती मतदान के तुरंत बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक इनके नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव अधिकारी संजीव महाजन ने कहा कि इस बार आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से मत पेटियों में स्कैनर की सुविधा शुरू की है, जो मतों की गणना तक निगरानी में सहायक सिद्ध होगी।
1: देखिए, आज प्रातः 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। आज हमारा प्रथम चरण में 1293 पंचायतों में चुनाव जारी है। इस बार आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए काफी स्टेप उठाए हैं। सभी बेल्ट बॉक्सेस के ऊपर जो है वो स्कैनर लगाया है, तो कोई भी बेल्ट बॉक्स जो है वो जब पोलिंग स्टार्ट हुई है तो वो स्कैन किया गया है। स्कैन करने उसकी एक आईडी आ गई और वो जब काउंटिंग पे जाएगा तो वहाँ फिर स्कैन किया जाएगा, ताकि तय हो बेल्ट बॉक्स पोलिंग स्टेशन पे यूज हुआ है वही बेल्ट बॉक्स काउंटिंग के केंद्र पे पहुंचा है। जहां तक काउंटिंग का सवाल है, हर काउंटिंग सेंटर की 100% जो है वो सीसीटीवी कवरेज की जाएगी, ताकि काउंटिंग के में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी का कोई चांस ना रहे और पूरी पारदर्शिता के साथ काउंटिंग हो और परिणाम जो है समय पर घोषित।
0: इस बीच आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। खासकर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं के अलावा बुजुर्ग मतदाताओं ने लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदान कर हिस्सा लिया और अन्य लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की।
2: नमस्कार, मेरा नाम अंबिका जम्भाल है और मैंने आज फर्स्ट टाइम पंचायत का इलेक्शन जो हो रहे हैं उनमें अपना वोट दिया है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस वोट के लिए। और मैं अपने युवा साथियों को भी यही बोलना चाहूँगी कि वोट दें और अपने लोकतंत्र को मजबूत करें। धन्यवाद।

0: इस बीच प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से सुबह 9 बजे तक की मतदान प्रतिशतता भी सामने आ रही है। ऊना जिला के 5 ब्लॉकों की विभिन्न पंचायतों में 20% मतदान हो चुका था, जबकि कुल्लू विकास खंड में 20 और शिमला जिला के रोहड़ू विकास खंड में 17.46% मतदान सुबह 9 बजे तक हो चुका था। इधर 28 मई को दूसरे चरण के लिए होने वाले मतदान को लेकर आज शाम 3 बजे खुले में प्रचार बंद हो जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार केवल अब व्यक्तिगत रूप से ही जनसंपर्क कर सकेंगे। हिमाचल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले सबसे लंबे रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से एक बार फिर शुरू हो गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक केलंग अंशित शर्मा ने कहा है कि 990 किलोमीटर लंबा ये रूट स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहती है। ये बस सेवा लाहौल स्पीति के प्रमुख पर्यटन स्थलों जिस्पा, दारचा, बारालाचा और सरचू से होती हुई लेह तक पहुँचेगी।
1: HRTC केलोंग अपना सबसे लंबा रूट दिल्ली केलोंग ले इसको रिज्यूम करने जा रहा है। ये रूट हमारा दिल्ली से स्टार्ट होगा, दिल्ली से 12:20 का समय रहेगा और ये केलोंग पहुंचेगा 5 बजे सुबह। केलोंग से मॉर्निंग 5:30 गाड़ी निकलेगी और वो बालालाचा पास, नकीला पास, तांगलंगला पास होते हुए लेह पहुंचेगी। ये जो पूरा सफर रहेगा दिल्ली से 990 किलोमीटर का रहेगा और इसका किराया जो है वो 1840 रुपये रहेगा। टूरिस्ट काफी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, ये पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहेगा कि वो इस रूट का आनंद लें।
0: IPL क्रिकेट में क्वालिफायर 1 मुकाबले में मौजूदा चैंपियंस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का सामना आज गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच आज शाम 7 बजे से HPCA स्टेडियम धर्मशाला में खेला जाएगा। इस मुकाबले को विजेता टीम सीधे IPL 2026 के फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर 2 में एक और मौका मिलेगा। IPL के इस मैच को लेकर HPCA ने सभी तैयारियाँ पूरी कर ली है और इस मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से परिवहन लागत बढ़ गई है, जिसके चलते राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी मिल्कफेड ने दूध के दामों में 2 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। बढ़ोतरी के बाद मिल्कफेड का खुला दूध 51 से बढ़कर 53 रुपये और पैकेट बंद दूध 55 से बढ़कर 57 रुपये प्रति लीटर हो गया है। दाम बढ़ने से अब दूध से बनने वाले सभी उत्पाद भी महंगे हो सकते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
2: आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 11:05 हुए हैं। हर नया दिन कुछ नया करने का अवसर लेकर आता है। हमेशा मुस्कुराते रहें, क्योंकि उम्मीद जीवन की रोशनी है। इसी विचार के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं आकाशवाणी FM शिमला पर।

आकाशवाणी फिल्म शिमला पर यह समय है पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम का। पहाड़ों की खूबसूरत वादियां, ठंडी ठंडी हवाओं और मधुर संगीत के साथ इस प्यारे से सफर की शुरुआत करते हैं। स्वागत करती हूं आप सबका, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त रुचि ठाकुर। आइए आगाज करते हैं कार्यक्रम का नया दौर फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोंसले ने, साहिब के बोल और ओपी नैयर का संगीत।

आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं पुरानी फिल्मों से ये कार्यक्रम। गीतों में सादगी, संगीत में मिठास और हर शब्द दिल में उतर जाता है। जी हाँ, यही तो खासियत है पुराने फिल्मी गीतों की। आइए अब आपको सुनवाते हैं मेरे जीवन साथी फिल्म का ये गीत किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरूह के बोल और आर डी वर्मन का संगीत।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। शिमला की इन खूबसूरत वादियों के साथ पुराने गीत सुनने का मजा ही कुछ और है। चाहे आप चाय की चुस्कियां ले रहे हों या अपने सफर की ओर चल पड़े हों, घूमने आए हों, ये कार्यक्रम आपके सफर को और मजेदार बना देगा। जी हाँ, अब आपको सुनवाते हैं ये गीत, इसलिए है हमने चलती का नाम गाड़ी फिल्म से।
3: बाजू

0: रहा यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
3: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
4: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा

0: और सुरक्षित बनाने का संकल्प ले। पेड़ लगाए, पानी बचाए और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
2: पुराने फिल्मी गीतों का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी फिल्म शिमला पर। आइए अब आपको सुनवाएंगे हावड़ा ब्रिज फिल्म का ये गीत, गीता दत्त की आवाज में। इन गीतों में प्यार, अपनापन, दिल को छू लेने वाला एहसास होता है। हर गीत एक कहानी कहता है।

0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है, आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।

0: 103.7 MHz आकाशवाणी एफ एम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हुए हैं। FM शिमला पर यह समय रहता है हिमाचली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का। जी हाँ, हिमाचल की प्रदेश की वादियाँ और साथ हो लोक संगीत का तो बात ही कुछ और है। तो आइए आगाज़ करते हैं हावड़ा ब्रिज फिल्म के इस गीत के साथ, माफ़ कीजिएगा, अभिषेक वर्मा के गाए इस गीत के साथ। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं। आप सुन रहे हैं हिमाचली लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पहाड़ी संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं रमेश कुमार का गाया ये लोकगीत। ये हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है और हमारे पहाड़ों के दिल की आवाज़ है।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं पहाड़ी संगीत कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आइए अब आपको सुनवाते हैं पहाड़ी संगीत में राज प्रभाकर का गाया ये लोकगीत। जीवन की छोटी छोटी घटनाओं को पिरोया जाता है गीतों के माध्यम से, बोलों के माध्यम से, और बनाए जाते हैं लोकगीत। जी हाँ, ये लोकगीत जो हैं वो हमारे जीवन पर बने होते हैं, या छोटी छोटी घटनाएं जो घटती हैं रोज़मर्रा के जीवन पर, उस पर बनाए जाते हैं। ये सुनने में जितने मधुर होते हैं उतना ही सुंदर होता है इस पर किया जाने वाला नृत्य भी।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान, आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में हिमाचली लोकगीतों का आनंद ले रहे हैं आप। आइए अब आपको सुनवाते हैं सुनपति और लक्ष्मी का गाया ये लोकगीत।

इसी गीत के साथ आज पहाड़ी संगीत कार्यक्रम में बस इतना ही। 12 बजने को है। अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र हिंदी व अंग्रेजी समाचार के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर बल दिया। उन्होंने दूसरों की सहायता करने की बात भी कही। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड देश खुले समाज हैं जो समृद्धि और विकास की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर उन्होंने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। बैठक के बारे में उन्होंने बताया कि द्विपक्षीय चर्चाएं विश्व की मौजूदा स्थिति पर केंद्रित थीं। चारों देशों ने विशेष रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सहयोग का लगातार विस्तार हुआ है, जिसमें निगरानी और समुद्री क्षेत्र की जानकारी, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, समुद्र के नीचे बिछी केबलें, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत गतिविधियाँ शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के सिक्किम यात्रा पर रहेंगी। राष्ट्रपति यात्रा के पहले दिन देवराली में नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ तिब्बतोलॉजी का दौरा करेंगी और गंगटोक में महिलाओं के लिए पिंक बसों को झंडी दिखाएंगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और प्रशासन ने संयुक्त रूप से करीब 7 घंटे तक बचाव अभियान चलाकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया, उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का एक बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और निर्णायक वैश्विक नेतृत्व से लेकर एक मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा ढांचे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। दिल्ली में सीएनजी की कीमत में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि हुई है। आज सुबह 6 बजे के बाद से राष्ट्रीय

0: राजधानी में सीएनजी की नई कीमत 83.09 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। नागर विमानन महानिदेशालय ने इबोला वायरस को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं। ये कदम विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कांगो और युगांडा में इबोला वायरस को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद उठाया गया है। महानिदेशालय ने कहा है कि युगांडा और कांगो से जुड़ी उड़ानों को का संचालन करने वाली एयरलाइंस को यात्रियों के विमान से उतरने से पहले उनसे यात्री जानकारी फॉर्म भरवाना अनिवार्य होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से बात की और रूस यूक्रेन युद्ध तथा ईरान की स्थिति पर विचार विमर्श किया। अमेरिका में विदेश विभाग के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इस संबंध में जानकारी दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी, जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने बताया कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मानसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भीषण लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. The Quad Foreign Ministers meeting concluded in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chaired the meeting, which was attended by U.S. Secretary of State Marco Rubio, Foreign Minister of Australia Penny Wong, and Foreign Minister of Japan Toshimitsu Motegi. Addressing a joint press conference after the meeting, Dr. Jaishankar emphasized on further strengthening cooperation among the Quad nations in addition to assisting others. He said the Quad nations are open societies who foster innovation and creativity in the quest of growth for prosperity. He underlined that as democratic nations, they also devoted their attention to countering the common threat of terrorism.
2: As democratic nations, we also devoted attention to countering the common threat of terrorism. There must be zero tolerance for terrorism, and nations subject to terrorist attacks have the right to defend themselves. A free and open Indo-Pacific has many dimensions and facets. Our meeting today took stock of the progress in many of them while encouraging exploration in others. In the coming days, whether it is economic activity, energy trade, or maritime commerce, the Indo-Pacific will become even more important to the world.
1: Dr. Jaishankar said bilateral exchanges were devoted to the current state of the world, and these four nations focused on issues of particular relevance to the Indo-Pacific. He said the maritime domain has seen a steady expansion of collaboration, including surveillance and domain awareness, logistics network, undersea cables, and disaster relief activities, among others. U.S. Secretary of State Marco Rubio said Quad countries made further progress on operationalizing their relationship on the areas that they can cooperate.
3: On the areas of cooperation. And it's also interesting that on the areas that we are working together on have become even more relevant and more important because of recent events around the world. And so today, I think we'll make even further progress on operationalizing our relationship on the areas that we can cooperate on. And by the way, the most interesting thing about the Quad is not simply that it is a gathering of four strategic allies in which we come together to sort of compare notes about areas of common interest, but also, and it's not only is it increasingly becoming a forum by which we begin to take action.
1: Directorate General of Civil Aviation DGCA has issued a standard operating procedure SOP for airlines after the WHO declared the Ebola disease outbreak as public health emergency of international concern in the Democratic Republic of Congo and Uganda. The DGCA said airlines operating connectivity with Uganda and Congo are required to ensure mandatory filing and collection of self-declaration forms before passengers disembark. Defence Minister Rajnath Singh has said the success

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
0: आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, आइए आपको सुनाते हैं एक लड़का एक लड़की फिल्म का ये गीत। इसे गाया है कुमार शानू और साधना सरगम ने।

0: इसी गीत के साथ आज फिल्म संगीत में बस इतना ही। 12:20 होने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और आकाशवाणी FM 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला का प्रसारण। अब प्रस्तुत है महिला सम्मेलन कार्यक्रम।

0: कार्यक्रम महिला सम्मेलन में आप सभी सखी सहेलियों का स्वागत अभिनंदन। आज मैं रहूंगी आपके साथ आपकी रेडियो सखी ब्रिजबाला,
1: और मैं रहूंगी कमलेश शर्मा।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार। तो कमलेश हाजिर हो चुके हैं हम बहनों के लिए उनका पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। तो आज कौन से विषय पर हम बात करने वाले हैं बहनों से?
1: जी हाँ बिल्कुल, देखिए बहनों, आज हम बात करेंगे कि जो आपके दिखावे की आदत है ना, वो उसको आप अच्छी नहीं होती है, और इसको आप अपने व्यवहार में ना लाएं।
0: जी,
1: यानी कि आदत ही ना बना डालें।
0: बिल्कुल,
1: आजकल आपने देखा होगा कि ये जो बात है ना दिखावे की, ये बहुत कुछ देखने को मिल रही है। और जो दिखावे की आदत यानी जो शो ऑफ है ना, ये कभी कभी तो अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा ही अच्छी बात भी नहीं रहती है।
0: बिल्कुल कमलेश, सही कहा आपने। देखिए, दिखावा करना शायद कुछ पल के लिए हमें दूसरों की नज़रों में बड़ा बना देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये आदत इंसान की असली पहचान को कमज़ोर कर देती है।
1: जी बिल्कुल, आजकल सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, लोग अपनी हर छोटी छोटी चीज़ों को दिखाने में लगे रहते हैं। महंगे कपड़े हुए, बड़ी गाड़ियाँ हुई, अलीशान घर, या घूमने फिरने जब जाते हैं तब भी वो तस्वीरें हैं तो निकालते हैं। तो कई बार क्या होता है ना कि ये सब सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है।
0: बिल्कुल, कहीं भी कमलेश वो घूमने जाते हैं या कोई गाड़ी खरीद रहे हैं तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे अपलोड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दूसरों को प्रभावित करने के लिए भी करते हैं लोग, है ना। लेकिन बहनों, यहाँ सवाल ये आता है कि क्या दिखावे से सच्ची खुशी मिलती है? क्या मिलती है कमलेश?
1: जी नहीं, हमें तो ऐसा नहीं लगता बहनों, आपको भी शायद ऐसा ही लगता होगा। बहनों, दिखावा केवल बाहरी चमक है, ये कुछ समय के लिए लोगों का ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन दिलों में जगह नहीं बना पाता।
0: बिल्कुल, जो सच्ची खुशी होती है ना, और जो सम्मान होता है, वो इंसान के व्यवहार और उसके संस्कार और उसके कर्मों से मिलता है। और कहते भी है ना कि खुशबू फूलों की पहचान तो बनाती है, और विनम्रता इंसान की।
1: बिल्कुल ब्रिजबाला, क्या होता है ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटते हैं।
0: जी,
1: और लोग अक्सर भीतर से असुरक्षित महसूस करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: उन्हें हमेशा यही डर लगा रहता है कि लोग उन्हें कम ना समझे, इसलिए वो दिखावे का सहारा लेते हैं।
0: और कमलेश, ये जो दिखावे का सहारा जो लिया जाता है ना, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। एक छोटी सी कहानी हम अपनी बहनों को सुनाना चाहेंगे कि देखिए बहनों, एक बार एक व्यक्ति बहुत ही महंगे कपड़े पहनकर सभा में आ जाता है। वो चाहता था कि सब उसकी तारीफ

0: करें। वहीं एक साधारण कपड़े पहने बुजुर्ग भी बैठे थे। सभा खत्म होने के बाद लोगों ने उन्हें घेर लिया, उनसे बातें की, उन्हें सम्मान भी दिया। तो व्यक्ति ने पूछा कि मैं इतने महंगे कपड़े पहनकर आया हूँ, फिर भी किसी ने मुझे देखा ही नहीं या मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, तो ऐसा क्यों हुआ? तो बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, कपड़े आपकी कीमत नहीं बताते, आपके विचार और आपका जो व्यवहार है वही बताते हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल बहनों, जीवन का सत्य भी यही है। दिखावे की चमक कुछ समय की होती है, लेकिन सादगी की रोशनी हमेशा रहती है।
0: बिल्कुल सही कहा कमलेश आपने, जो सादगी होती है यानी सिंप्लिसिटी होती है, उसकी जो रोशनी होती है ना, वो हमेशा बनी रहती है। तो बहनों, हमें ये समझना है यहाँ पे कि जो हमारे पास है वही पर्याप्त है। अगर हम संतुष्ट हैं तो दूसरों को प्रभावित करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर हमें ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल, अगर आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटिए, अगर आपके पास हुनर है तो उससे समाज को बेहतर बनाइए।
0: जी, और असली महानता बहनों यही है ना कि उसका जो प्रदर्शन है वो आपको करना है, जो आपके पास हुनर है या आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटना है, क्योंकि कहते भी हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो बहनों, हमेशा आपको ये याद रखना है, जो झुकता है वही ऊंचा उठता है।
1: बिल्कुल, और दिखावा जो करता है वो आखिरकार भीतर से कहीं खाली भी होता है।
0: बिल्कुल,
1: तो बहनों हमें तो सादगी को अपनाना है, अपने कामों अपने कर्मों को भूलने देना है, और दिखावा, जो दिखावे की आदत है, उससे दूर रहना है और इसे व्यवहार में भी बिल्कुल
0: नहीं कमलेश, जो आपकी सादगी है ना, वो खुद ब खुद, जो आपके कर्म है वो खुद ब खुद आपके काम को बोलने लगते हैं, और जो दिखावा है वो कहीं ना कहीं एक दिन जो है डूब जाता है और आपको भी ले डूबेगा। तो बहनों, दिखावा करते करते आप कहीं ऐसा ना हो थक जाएं, तो इसलिए हम आपसे यही कहेंगे कि सादगी को अपनाएं, साधारण रहें, और आपका जो व्यवहार है वो कहीं अच्छा सा बना के रखें, ताकि आपसे सब लोग जो है आपकी तरफ आकर्षित हों।
1: जी हाँ, बिल्कुल। और ब्रिजवाला, देखिए बातें तो हम बहनों से और भी करते रहेंगे, जानकारियां भी देते रहेंगे, साथ साथ आपको सुनवा देते हैं गीत।
0: जी,

0: जी हाँ बहनों, आंखें भी होती हैं दिल की जुबान, और आंखों से ही कई बार पता चलता है आपके गुस्से का। तो बहनों, आप सोचेंगे कि हम गुस्से की बात क्यों करने लगे। देखिए ना बहनों, हंसना, मुस्कुराना, रोना या कभी कभी गुस्सा या क्रोधित हो जाना, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये इंसान की प्रतिक्रियाएं हैं जो पल भर की होती हैं।
1: बिल्कुल कमलेश। और देखिए ना, मन में उठी किसी असहमति या असंतोष की लहर जैसे आती है ना, वैसे ही शांत भी हो जाती है। और आपने जैसे कहा कि आंखें भी होती हैं जुबां हमारे गुस्से की, तो देखिए कई बार आंखें दिखाना है ना, एक मुहावरा भी है कि
0: जी
1: मतलब सामने वाला समझ आता है कि वो उसकी आंखों की जो जुबान है वो समझ आता है कि वो क्या कहने वाला है, कि उसे गुस्सा है या प्यार है ना।
0: जी हाँ, सुकून देने वाली प्रतिक्रियाएं मन को शांत और शरीर को स्वस्थ बनाती हैं।
1: जी
0: लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो मन और शरीर को अंदर तक खोखला भी करती हैं, है ना।
1: बिल्कुल
0: मैंने हम बात कर रहे हैं बार बार आने वाले गुस्से की, क्रोध की, जो आपके व्यवहार को बदल कर रख देती हैं। कुछ समय के लिए जब आप गुस्से में होते हैं तो लगता है ना कि घर परिवार या आपके जो दोस्त मित्र हैं वो थोड़े समय के लिए आपको यूँ लगता है कि पहचानते ही नहीं,
1: जी
0: है ना। उन्हें ये लगता है कि क्या आप वही इंसान हैं जो थोड़े समय पहले अच्छी बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे।
1: बिल्कुल। गुस्सा असल में कमलेश शरीर और जो मस्तिष्क है ना, हमारा दिमाग है, उसमें पैदा होने वाली एक, उत्पन्न होने वाली एक प्रतिक्रिया है।
0: जी हाँ, जो बहुत जल्दी से आ जाता है। जैसे
1: जी
0: कि छोटी सी बात पे आप एकदम से रिएक्ट करते हैं ना।
1: बिल्कुल।
0: अगर वो छोटी सी बात आपको सही नहीं लगती है तो आप एकदम से रिएक्ट करते
1: बिल्कुल
0: हैं, है ना।
1: तो जो तब होती है जब कोई स्थिति हमारी उम्मीदों या सीमाओं के विपरीत होती है, यानी हमने सोचा कुछ है, हमने उम्मीद कुछ लगाई थी और हो कुछ गया। तो बहनों, अगर व्यक्ति अपनी भावनाओं को सही तरीके से समझ या व्यक्त नहीं कर पाता तो ये गुस्सा अंदर ही अंदर जमा हो जाता है और किसी छोटी सी बात पर अचानक से बाहर निकल आता है।
0: जी हाँ बिल्कुल बहनों, क्या होता है ना कि कई बार आपके बीते समय के अनुभव होते हैं, बचपन की कोई बात होती है, या यूँ कह लीजिए कि रिश्तों में कोई चोट अगर आपको लगी, तो तब भी जो आपका व्यवहार है वो थोड़े समय के लिए भी गुस्सैला सा हो जाता है। व्यक्ति अपने पुराने दर्द से बचने के लिए गुस्से वाला व्यवहार का सहारा भी लेता है।
1: जी बिल्कुल। तो बहनों, आपका लगातार नाखुश या चिड़चिड़ा रहने का जो असर है वो आपके परिवार और सहकर्मियों पर भी पड़ता है, और आपसे सभी जो है धीरे धीरे क्या करते हैं, दूरी बनाने लगते हैं। तो आपने देखा हो

0: कोई गुस्सा करेगा तो कौन उसके नज़दीक में जाएगा, है ना, दूरी
1: बिल्कुल
0: बनाने लगेंगे लोग और आप उससे और ज़्यादा चिड़चिड़े होने लगेंगे।
1: बिल्कुल। और बिजबाला, आपने ये भी देखा होगा कि वही गुस्सा भरा जो माहौल होता है ना, उसका
0: जी
1: असर सबसे पहले पड़ता है बच्चों पर।
0: बिल्कुल
1: बच्चे देखना शुरू कर देते हैं कि आप बहुत गुस्सा कर रहे हैं, है ना, आपसे बात कैसे करें, तो वो जो मन की बात होती है वो बोलते ही नहीं, आपसे डरे सहमे से रहते हैं।
0: बिल्कुल
1: तो इसलिए घर और जो कार्यस्थल है वो, उसका जो वातावरण है वो शांत होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, ताकि जो है मानसिक आपका संतुलन सही बना रहे।
0: हाँ कमलेश, जैसे आपने देखा होगा आजकल दोनों वर्किंग है पेरेंट्स, तो अगर उन्हें बाहर से वो काम करके आ रहे हैं और घर में उनका काम नहीं हो रहा है, या एक दूसरे को वो कह रहे हैं कि आप करो आप करो, तो ऐसे में क्या होता है, किसी एक को अगर गुस्सा आ गया तो इसके बीच में जैसे आपने कहा बच्चों पर असर पड़ता है, तो बच्चे
1: बिल्कुल
0: ही इसमें पिसते हैं, है ना।
1: बिल्कुल। और देखिए घर में बुजुर्ग भी होते हैं, वो भी
0: जी
1: नहीं चाहते कि आपका जो है स्वभाव है इस तरह से चिड़चिड़ा रहे, आप गुस्सा करें। ठीक है, आपके गुस्सा करने का भी कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा,
0: बिल्कुल
1: वैसे तो आपको गुस्सा आएगा नहीं, लेकिन

0: समय से रहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए घर और जो कार्यस्थल है वो उसका जो वातावरण है वो शांत होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, ताकि जो है मानसिक आपका संतुलन सही बना रहे।
1: हाँ कमलेश, जैसे आपने देखा होगा आजकल दोनों वर्किंग है पेरेंट्स, तो अगर उन्हें बाहर से वो काम करके आ रहे हैं और घर में उनका काम नहीं हो रहा है, या एक दूसरे को वो कह रहे हैं कि आप करो आप करो, तो ऐसे में क्या होता है, किसी एक को अगर गुस्सा आ गया तो इसके बीच में जैसे आपने कहा बच्चों पर असर पड़ता है, तो बच्चे ही इसमें पिसते हैं, है
0: बिल्कुल। और देखिए घर में बुजुर्ग भी होते हैं, वो भी नहीं चाहते कि आपका जो है स्वभाव है इस तरह से चिड़चिड़ा रहे, आप गुस्सा करें। ठीक है, आपके गुस्सा करने का भी कोई ना कोई कारण तो ज़रूर होगा,
1: बिल्कुल,
0: वैसे तो आपको गुस्सा आएगा नहीं, लेकिन अगर आप इस तरह से करती हैं और आपका व्यवहार इस तरह से हो रहा है, और उस व्यवहार का अगर आप ध्यान जो है वो दिलाते हैं आपके परिवार के सदस्य या सहकर्मी, तो आपको ये जो व्यवहार है समझना चाहिए कि इसको आप किस तरह से बदलें, और फिर क्या करना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, इसको समझने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है ना। तो सबसे पहले बहनों आपको देखिए करना ये है कि कोई भी प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ सेकंड आपको रुकना है, ये ना हो कि आप तुरंत रिएक्ट कर जाएं या तुरंत अपनी प्रतिक्रिया दे दें। इससे जो अनियंत्रित प्रतिक्रिया के बजाय सोच समझकर जवाब देना आपके लिए आसान होगा।
0: जी हाँ बिल्कुल। और बहनों क्या होता है ना कि थोड़े समय के लिए जब आप चुप भी हो जाती है ना, शांत हो जाती है, यूँ कह लीजिए कि वहाँ से आप थोड़ा सा टल लें, आगे की तरफ चल लें, घर में कहीं घूम लें, या कहीं कार्यस्थल पे हैं तो थोड़ा सा मतलब अपने मन को चेंज कर लें, तो आप देखेंगे जो गुस्सा आपको आ रहा है ना वो पलों में ही कहीं गायब भी हो जाता है।
1: जी, क्योंकि जैसे आपने कहा कि हम कह रहे हैं कि थोड़े सेकेंड रुकना है, तो उससे आपको ये इसका ये फ़ायदा आपको होगा कि आप उतनी देर में सोच लेंगे, आपको पता भी चल जाएगा कि आपका गुस्सा कई बार जो है बेवजह ही हो जाता है।
0: जी हाँ। तो बहनों क्या करना चाहिए, योग और ध्यान मन को स्थिर बनाते हैं, मेडिटेशन करने से गुस्सा और चिंता दोनों पर नियंत्रण मिलता है, तो सिर्फ आप 15 से 20 मिनट का ध्यान करने से भी आपका जो मानसिक संतुलन है वो बना रहता है।
1: जी, तो बहनों आपको साथ ही पर्याप्त नींद, पौष्टिक भोजन और नियमित दिनचर्या का पालन करना है, और ऊर्जा पर गहरा जो असर है वो इस पर डालते हैं, तो स्वस्थ जीवन शैली को आपने अपनाना है। कला संगीत, पेंटिंग या लेखन जैसी रचनात्मक जो गतिविधियाँ हैं इनको भी आप अपने जीवन में ढाल सकती हैं, कर सकती हैं, ताकि आपका जो मन है वो शांत रहे।
0: जी हाँ बिल्कुल। बहनों हम तो यही कहेंगे कि ये जो गुस्सा है ना, अगर ये थोड़े समय का है तो ये तो सभी को ही आता है, इसे आप कंट्रोल कर ही लेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान दीजिए, अगर ज़्यादा आ रहा है, दिन में कई बार आपको गुस्सा आ रहा है, छोटी छोटी बातों पे आ रहा है, तो आपको काउंसलिंग या साइकोथेरेपी की मदद आप ले सकते हैं, ताकि आपका जो व्यवहार है वो इस हिस्सा ना बन जाए, और हंसते मुस्कराते हुए जिंदगी में आप आगे बढ़ सकें।
1: जी।

0: तो कमलेश, अब कार्यक्रम को आगे ले जाते हुए बहनों से बात करते हैं। जैसे आजकल गर्मियों का मौसम चल रहा है और चारों तरफ बहुत तेज़ धूप हो रही है और लू का भी खतरा बना हुआ है, तो ऐसे में हम अपनी देखभाल तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारा जो वातावरण है, या हमारे जो खेतों में लगी पेड़ पौधे हैं, सब्जियां हैं, या हमारा जो किचन गार्डन है, उसमें हम उन पौधों की देखभाल कैसे करें? क्योंकि हमने इतनी मेहनत से अगर उन्हें लगा रखा है तो उसकी देखभाल करना भी ज़रूरी है। होता क्या है कि जब तेज़ धूप होती है तो वो पत्ते उसके सूखने लगते हैं।
1: बिल्कुल बहनों, देखिए अगर आपने बड़े पौधे बगीचे में ज़मीन पर लगे हुए हैं और या फिर भारी गमलों में लगे हुए पौधे हैं, तो उन्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय तो आपको करना ही होगा।
0: बिल्कुल।
1: छोटे छोटे पौधों को आप ढक सकती हैं आसानी से, लेकिन अगर बड़े पौधे हैं आपके पास हैं तो उनको ढकने के लिए बांस की आप चटाई भी टांग सकते हैं,
0: जी
1: या आप उनके लिए कोई इस तरह से मैट ले लें ताकि वो उसको छाया मिल सके, है
0: जी बिल्कुल।
1: ना?
0: आप यही कहना चाहती हैं कि जो आपके पौधे लगे हैं या जैसे आपके गमले हैं, उन्हें तो आप छाया में रख सकते हैं, लेकिन जो ज़मीन में लगे हैं उसको कैसे बचाएंगी? तो
1: जी
0: उसके लिए आपने जैसे बताया कि कोई चटाई टांग दे या कोई दुपट्टा लेके, पुराना लेके, उसके लिए मतलब छाया कर दे, ताकि जो आपका जो पौधा है उसमें लू ना लगे, गर्मी ना उसको लगे, ताकि उसके जो पत्ते हैं सूखने से बच जाए और पौधा भी आपका बच सके।
1: जी हाँ बिल्कुल ब्रिजवाला, क्या होता है ना, जो छोटे पौधे होते हैं वो कई बार गर्मी सहन नहीं कर पाते हैं या
0: जी
1: बहुत लू नहीं सहन कर पाते हैं, तो वो आपने बहुत मेहनत से लगाए हुए रहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास छाया वाली जगह है तो उन्हें वहाँ आप शिफ्ट कर सकती हैं।
0: बिल्कुल।
1: मतलब धूप भी ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा धूप अगर वहाँ पड़ रही है तो उनकी जगह आप चेंज कर लें।
0: ज़्यादातर क्या होता है कमलेश, की जो 11 बजे से 4 बजे का टाइम है ना, उस समय पे धूप बहुत तेज़ हो जाती है, तो उस समय के लिए आपको ये जो देखभाल है पौधों की करनी है। तो इस तरह से आप चटाई टांग सकते हैं या दुपट्टा, जो भी हम कह रहे हैं, उस तरह से आप उसके पौधे की जो देखभाल कर सकते हैं उसको बचा सकते हैं।
1: शाम के समय पौधों की पत्तियां और तनों पर पानी का छिड़काव आप ज़रूर करें, इससे पत्तियों पर जो जमी हुई धूल है वो साफ़ हो जाती है और उनका जो तापमान है वो तुरंत गिर जाता है।
0: हाँ, और एक बात और कमलेश, ये है कि सुबह के समय पौधों में पानी कभी नहीं डालना चाहिए। अगर सुबह आप पानी डालते हैं और दिन में जैसे धूप तेज़ हो जाती है, तो पत्ते जो है मुरझा जाते हैं, सूख
1: बिल्कुल
0: जाते हैं। तो अगर हो सके तो आप जो है पानी का छिड़काव या पानी जो आप सिंचाई करते हैं वो शाम के समय में ही
1: या फिर
0: करें।
1: सुबह आप कर रही हैं तो जो है वो काफ़ी समय पहले कर दें, है
0: जी,
1: ना?
0: 5 से 7 बजे के
1: हाँ
0: बीच में आप कर
1: सूर्य,
0: सकती हैं। जी
1: जी सूर्य उदय होने से पहले आप पानी डाल सकती हैं। वैसे तो अगर आप शाम को डालती हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता
0: बहुत
1: है,
0: अच्छा
1: क्योंकि
0: रहता है।
1: पानी
0: जी
1: जो है वो जड़ों तक जाता भी है और पूरी तरह से आप पानी दे पाती
0: बिल्कुल,
1: हैं।
0: पूरी रात जो है

0: बनी रहती है, इससे आपका पौधा जो है सर्वाइव कर जाएगा।
1: अच्छा, आप एक काम और भी कर सकती हैं, अगर पौधों को पानी मिलता रहे इसके लिए आप, या थोड़ा पौधा भी आपका बड़ा है और उसे पानी की ज़रूरत भी, ये तो आपको देखना होगा कि पानी की ज़रूरत है, तो आप क्या कर सकती हैं कि पौधे के पास एक घड़ा उसके नीचे छेद करके आप रख सकते हैं। ये बहुत पुरानी पद्धति है
0: जी
1: ना, इसको बहुत पहले किया जाता था, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे भी आजमा सकती हैं कि पौधों के पास एक घड़ा जिसके नीचे छेद कर लें और उसे पानी से भर लें, और उसका जो छेद है वो थोड़ा सा कम ही रखें ताकि बूंद बूंद करके पेड़ को पानी मिलता रहे, है
0: जी
1: ना, और रात को इसको भर देती हैं तो सुबह को वो पानी अच्छे से वो मिल जाता है।
0: बिल्कुल। जो घड़े की आपने बात की तो मुझे एक बात याद आ रही है कि पौधों को तो पानी मिल रहा है, लेकिन आजकल पशु पक्षियों को भी पानी की ज़रूरत होती है। तो बहनों, छोटे छोटे घड़े आप अपने जहाँ प्लांट्स आपके पौधे लगे हैं उसके साथ में ही अगर रख देती हैं तो जो पशु पक्षी है, जो पंछी है, वो भी उसमें से पानी पी लेंगे।
1: जी हाँ
0: और
1: बिल्कुल,
0: गर्मियों में देखिए, जो खाद हम पौधों में डालते हैं उसका बदलाव बहनों आपको ज़रूर करना है। देखिए, जो रासायनिक खाद होती है उसकी जगह अगर आप गोबर की सूखी खाद का इस्तेमाल करती है तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छी रहती है।
1: जी हाँ बिल्कुल बहनों, ये तो छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आप आजमा कर अपने जो ये पौधे हैं जो बहुत मेहनत से लगाए हैं आपको, उन्हें आप बचा सकती हैं। और देखिए सुबह सुबह जो है इन्हें देखना कितना अच्छा लगता है ना,
0: जी
1: चाहे मौसम गर्मियों का हो सर्दियों का, और जब इन पर फूल खिले हुए होते हैं तो वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं और हमें वो एक ताजगी देते हैं। तो हम तो
0: बिल्कुल
1: यही कहेंगे कि इनका ख्याल भी साथ साथ गर्मियों में करें आप।
0: जी
1: और अब सुनवाते हैं बहनों को गीत।
0: बिल्कुल।

0: मैनू गर्मियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में देखिए कई बार क्या होता है कि हीट वेव यानी लू चलनी शुरू हो जाती है।
1: जी
0: लेकिन बहनों कर भी कह सकते हैं कि हमें बाहर भी जाना है, काम पर भी निकलना है और बच्चों को स्कूल जाना है और बच्चों को वापस भी आना है, क्योंकि वो
1: बिल्कुल
0: समय ऐसा होता है कि उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है।
1: बिल्कुल
0: जब बच्चों की छुट्टी होती है तो उसमें गर्मी होती है और लू लगने का खतरा रहता है और बच्चों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो बहनों ऐसा कुछ ना हो, सुरक्षित रहें या खुद को भी किस तरह से आप बचा सकती है, इसके छोटे छोटे उपाय आपको कर लेने
1: बिल्कुल
0: चाहिए।
1: कमलेश, और आजकल का समय भी ऐसा ही है कि लू लगने का डर रहता है। और आपने देखा होगा पहाड़ी इलाकों के बजाय जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पे ये लू लगने का खतरा बहुत बना रहता है।
0: बिल्कुल
1: तो ऐसे में जो हम अपनी बहनों से कहेंगे कि आपको कुछ एक सावधानियां हैं जो बरतनी हैं, अगर आप उसका अनुसरण करती हैं तो आप खुद को भी सुरक्षित रख सकती हैं, या यूं कहें कि आप खुद को भी लू से बचा सकती हैं।
0: बिल्कुल बहनों, आपने देखा होगा कि 12 बजे से शाम 4 बजे तक जो धूप होती है वो बहुत तेज़ होती है,
1: जी
0: यानी कि यूँ कहें कि बाहर निकलने का मन ही नहीं करता,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्या करें, मजबूरी भी होती है, कई बार बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो
1: पर हम कमलेश बहनों से ये कहेंगे कि अगर हमारी बहनें वर्किंग है, ऑफिस में है, तो इस समय पे वो अंदर रहें, और अगर घर पे हैं तो भी वो अंदर के काम इस समय पे कर सकती हैं, यानी जो बाहर के काम है वो 4 बजे के बाद ही करें। तो इससे बचने के लिए अब अगर घर से बाहर निकलना ही पड़े तो क्या करना है कमलेश, वो भी बहनों को बता देते हैं कि देखिए बहनों, जब आप घर से बाहर निकल रही हैं तो समय पर, जब उस समय आपको अपना सिर ढककर घर से बाहर निकलना है और चेहरे को भी बिल्कुल ढक लेना है, ताकि जो आपको लू है वो ना लगे और उससे आप जो है बच सकें।
0: जी हाँ बिल्कुल, सूती जो कपड़ा होता है उसका इस्तेमाल कर सकती है, चुन्नी ले सकती हैं और उसे आप ढक सकती हैं, सिर ढक सकती
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: अगर आपका कोई रुमाल है तो गीला करके उसको आप अपने चेहरे पर बांध सकती हैं, उससे आप अपना जो चेहरा है ढक कर रख सकती हैं।
0: और साथ ही साथ आप छाते का इस्तेमाल ज़रूर करें, है ना,
1: जी
0: उससे भी आप जो है धूप से वो बच सकती हैं जब आप छाता लेकर चलती हैं। और साथ क्या करना चाहिए आपको, खूब सारा पानी भी पी लेना चाहिए और साथ में बॉटल, पानी की बॉटल आप साथ रख ले, है ना,
1: जी
0: क्योंकि जब बाहर निकलती हैं गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो प्यास तो बार बार लगती है।
1: बिल्कुल
0: तो ऐसे में आप चाहें तो सादा पानी, अगर आपको पसंद है तो आप सादा पानी रख सकती हैं। अगर सादा पानी आपको नहीं अच्छा लगता तो आप चाहें तो नींबू पानी बनाकर उस बॉटल में भरकर रख सकती हैं।
1: बिल्कुल, और यही जो काम है वो आप अपने बच्चों के साथ भी कर सकती हैं। अगर जैसे आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उन्हें भी आप नींबू पानी मिला करके पानी दे दें, या ORS का घोल भी आप साथ में दे सकती हैं, क्योंकि क्या होता है कमलेश की, जब धूप तेज़ होती है तो चक्कर आने का भी खतरा ज़्यादा हो जाता है, तो कई बार सिर घूमने लगता है। तो ऐसे में अगर आपके पास नींबू पानी होगा या ORS का घोल होगा तो वो पी करके आप जो है, आपका जो दिमाग है वो शांत रहेगा और आप गर्मी से बच सकते हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल, और देखिए क्या होता है ना, हल्के रंग और ढीले सूती कपड़े ही पहनने चाहिए, वो
1: जी
0: भी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। हल्के रंग के कपड़े आप पहनती हैं तो उससे गर्मी आपको कम
1: कम
0: लगती
1: लगती
0: है।
1: है। जी
0: और बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा हैवी जो कपड़े हैं वो ना पहनाएं। कई
1: जी
0: बार हमारी जो बहनें होती हैं उनकी आदत होती है, उन्हें लगता है कि नहीं बच्चों को कहीं ठंड ना लग जाए, छोटा बच्चा है, लेकिन मेरा मौसम गर्म चल रहा है तो उन्हें भी इस तरह से ढीले ढाले कपड़े पहनाएं ताकि जो है उन्हें गर्मी भी ना लगे, रैशेज भी ना हो,
1: जी
0: क्योंकि देखिए बच्चों की जो स्किन

0: बहुत सेंसिटिव होती हैं, रैशेस हो जाती हैं, आपको भी होती होंगी, बड़ों को भी हो जाती है, गर्मियों में घुमौरियाँ वगैरह बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, पसीना बहुत निकलता है और ऊपर से गर्मी है। तो इस तरह से आपको अपना पूरा ख्याल रखना है और ध्यान देना है अपने ऊपर
1: जी। और बहनों साथ ही आपको जो बासी और मसालेदार भोजन है वो करने से बचना है, ताज़ा फल और हल्का भोजन ही आपको करना है। अगर हल्का फुल्का भोजन आप गर्मियों में लेती हैं तो आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। और ज़्यादा गर्मी से अगर आपको चक्कर आ रहा है तो आप ये कर सकती हैं कि ठंडे जगह पर आप जा कर के जो आप अगर किसी को लग रहा है तो उसे लिटा दें, या आपको खुद को महसूस हो रहा है तो आप खुद जाके छांव में बैठ जाएं या लेट जाएं, उसके बाद आप ठंडा पानी पी लीजिए। अगर आपके पास नींबू पानी है तो आप वो ले लीजिए। और पानी की मात्रा को आपने बढ़ाना है, पानी समय समय पर थोड़ा थोड़ा करके पीते रहना है। और अगर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ज़्यादा समस्या सामने आती है, तो आप डॉक्टर से भी संपर्क कर सकती हैं।
0: जी हाँ बिल्कुल बहनों, ये इस बात को बिल्कुल भी आप लाइटली ना लें कि चलो गर्मी है, गर्मियों में ऐसा होता है। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आपको डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए और डॉक्टर को समय रहते दिखा लेना चाहिए ताकि आप स्वस्थ बनी रहें और गर्मियों का आनंद ले सकें।
1: तो बहनों हीट वेव से आपको खुद को बचाना है, कैसे बचाना है वो हमने अभी आपको बताया, और इन सभी बातों का आपने ध्यान रखना है ताकि आप खुद और बच्चों को गर्मी से या लू से बचा सकें।
0: जी हाँ बिल्कुल। और अब चलते चलते सुनवा लेते हैं गीत और
1: जी।

0: महिला सम्मेलन कार्यक्रम अभी आपने सुना, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। एक बजने को हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीरों पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा, फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: Economic resilience should be promoted.
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। संयुक्त प्रेस बयान में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर जोर दिया। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर एक बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि इस कठिन ऑपरेशन को जिस दक्षता और संकल्प के साथ पूरा किया गया उसके लिए सभी कर्मियों के प्रति राष्ट्र आभारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश को प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 162 अंक गिरकर 76,327 जबकि निफ्टी 19 अंक की गिरावट के साथ 24,013 पर था। ओस्लो में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा और डी गुकेश ने क्लासिकल मुकाबला ड्रॉ रहने के बाद बेहद रोमांचक टाई ब्रेकर में जीत दर्ज की। प्रतियोगिता में प्रज्ञानंद ने टाई ब्रेकर में वेस्ली सो को हराया। गुकेश ने विंसेंट कीमर को पराजित किया। आईपीएल क्रिकेट में आज क्लासिक क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। विभाग ने कहा कि इस साल मिजोरम, पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों और केरल में मानसून समय से 6 दिन पहले ही आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
2: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव, और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
2: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
3: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
4: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
3: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।
0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और अब आपको सुनवाएंगे कोई मिल गया। इस फिल्म का ये गीत इसे गाया है उदित नारायण और साथियों ने।

0: शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप, सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फिल्म संगीत या संगीत की बात की जाए तो ये हमारी रूह को सुकून देने वाली एक भाषा है। फिल्म संगीत ना सिर्फ मनोरंजन है, बल्कि ये हमारी जिंदगी के हर पल का साथी है। सुख दुख सफ़र में संगीत ही तो है जो सब कुछ आसान बना देता है। जी हाँ, अब आपको सुनवाएंगे चलते चलते फिल्म का ये गीत। इसे गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने, जावेद अख्तर के बोल हैं और जतिन ललित का संगीत।

फिल्म संगीत में आइए, अब आपको सुनवाते हैं न्यू डॉन फिल्म का ये गीत सुनिधि चौहान की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल, शंकर एहसान लॉय का संगीत।

0: आकाशवाणी फिल्म शिमला पर आप सुन रहे हैं फिल्म संकेत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: आपका गांव है आपका गर्व, इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
2: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
1: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: बेजान जिंदगी में कोई मनमीत होना चाहिए, बेजान जिंदगी में कोई मनमीत होना चाहिए। मन का मीत ना हो तो संगीत जरूर होना चाहिए। जी हाँ, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और अब आपको सुनवाएंगे बंटी और बबली फिल्म का ये गीत। इसे गाया है आलिशा चिनॉय और साथियों ने।

0: 103.7 MHz आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। अभी आपने शंकर महादेवन और आलिशा चेनॉय की आवाज़ में ये लोकगीत सुना फिल्म बंटी और बबली से। 103.7 MHz आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। आइए आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प ले, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
0: एक सौ 103.7 MHz आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब आपको सुनवाएंगे गुरु फिल्म का ये गीत। इसे गाया है श्रेया घोषाल और साथियों ने। गुलजार की बोल ए आर रहमान का संगीत।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान, आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
2: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
1: पंचायत चुनाव आ रहे हैं जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
2: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
1: राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, सुन रहे हैं फिल्म संगीत। जीवन में खुश और व्यस्त रहने के लिए गीत संगीत सबसे अच्छा तरीका है। गीतों के इस जादुई सफर में अब आपको सुनवाएंगे लगे रहो मुन्ना भाई फिल्म का ये गीत, इसे गाया है करुण्या ने।

0: स्टेडियम के पास।
1: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
3: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
2: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

इसी गीत के साथ आज फिल्म संगीत में बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 2 बज चुके हैं और एफएम शिमला पर ये समय रहता है गीतों के कुछ चुनिंदा रंग कार्यक्रम सब रंग का। जी हाँ, आगाज करेंगे इस कवाली के साथ। इसे गाया है ज़फ़र हुसैन खान, बदायूनी और साथियों ने।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं सबरंग कार्यक्रम। आइए आपको सुनवाते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी एफएम शिमला पर आप आनंद ले रहे हैं सबरंग कार्यक्रम का। अब आपको सुनवाएंगे ये पंजाबी गीत, इसे गाया है हरभजन मान ने।

इसी गीत के साथ आज सबरंग कार्यक्रम में बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। 2:15 होने को हैं। अब आपको ले चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र दोपहर हिंदी समाचार के लिए। कृपया रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने राजस्थान के सांचू में सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की अध्यक्षता में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सू मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। क्वाड समूह ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। सदस्य देशों ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी पहल और समुद्री क्षेत्र में गतिविधियों और स्थितियों की जानकारी के लिए साझा तस्वीर पर सहमति जताई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि क्वाड बंदरगाह बुनियादी ढांचे पर एक विशेषज्ञ पैनल बनाने पर विचार करेगा। फिजी में एक पायलट बंदरगाह परियोजना और समुद्र के नीचे बिछी केबलों पर भी सहयोग करेगा। उन्होंने कहा कि बैठक के मुख्य नतीजों में से क्वाड क्रिटिकल मिनरल फ्रेमवर्क को अंतिम रूप देना था। क्वाड देशों ने भारत अमेरिका क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क पर भी हस्ताक्षर किए। हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी प्रबंधन नीति, अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण और आपातकालीन प्रतिक्रिया अभ्यासों के क्षेत्र में क्वाड पहल की घोषणा भी की गई। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
1: Economic resilience should be promoted.
2: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। ऊर्जा और उर्वरक की वर्तमान उपलब्धता के साथ साथ महत्वपूर्ण खनिजों और संसाधनों की उपलब्धता पर भी बात हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
0: श्री जयशंकर ने कहा कि लोकतांत्रिक देशों के तौर पर आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी हमारा ध्यान केंद्रित है।
1: As democratic nations,
2: लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते हमने आतंकवाद के साझा खतरे का मुकाबला करने पर भी ध्यान दिया। हमारी आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। आतंकवादी हमलों से प्रभावित राष्ट्रों को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के कई आयाम और पहलू हैं। बैठक में इनमें से कई क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई, जबकि अन्य क्षेत्रों में खोज को प्रोत्साहित किया गया। आने वाले दिनों में चाहे वह आर्थिक गतिविधि हो, ऊर्जा व्यापार हो या समुद्री व्यापार, हिंद प्रशांत क्षेत्र विश्व के लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क क्वाड देशों को आर्थिक नीति के साधनों का लाभ उठाने और निवेश का समन्वय करने में मार्गदर्शन करेगा। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत ऊर्जा सुरक्षा पर क्वाड पहल संकट के दौरान देश क्षेत्र में ऊर्जा की आपूर्ति बनाए रखने में मदद करेगी। श्री रूबियो ने बताया कि अमरीका इस साल का और विस्तार करने के उद्देश्य से इस वर्ष के अंत में ईंधन सुरक्षा मंच के लिए क्वाड देशों की मेजबानी करेगा। श्री रूबियो ने कहा कि क्वाड देश मजबूत मूल्यों को साझा करते हैं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं।
3: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण

0: और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने होर्मुज जल डमरू मध्य में स्वतंत्र और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के साथ पश्चिम एशिया में स्थिरता लाने में कूटनीतिक प्रयासों के महत्व पर बल दिया। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि क्वाड ने आज सुरक्षा पहल और महत्वपूर्ण खनिजों जैसे क्षेत्रों में कई प्रयासों को आगे बढ़ाया है। भारत और अमेरिका ने आज महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ढांचे पर हस्ताक्षर किए। ये ऐतिहासिक समझौता विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुआ। आज दोपहर बाद जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री 37वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राजस्थान में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। उन्होंने इस क्षेत्र में तैनात सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों से बातचीत की और देश की सीमाओं की रक्षा के प्रति उनके समर्पण की सराहना की। इस दौरान गृहमंत्री ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के दूसरे चरण की शुरुआत की। श्री शाह बीकानेर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में सीमा सुरक्षा बल पर एक बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज आगरा लखनऊ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर दो अलग अलग सड़क हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना में उन्नाव जिले के पास आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस पलटने से 6 लोगों की जान चली गई और 10 से अधिक लोगों के घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया है कि बस दिल्ली से गोरखपुर जा रही थी, तभी औरास पुलिस थाना क्षेत्र के पास चालक ने नियंत्रण खो दिया जिससे बस पलट गई। एक अन्य घटना बाराबंकी जिले के पास पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर हुई जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई। ओडिशा के कालाहांडी जिले में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक में दम घुटने से 6 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह घटना मदनपुर रामपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गौड़ कालाखुंटा गांव में हुई। पुलिस के अनुसार मजदूर सेप्टिक टैंक से लकड़ी के ढांचे को हटा रहे थे, तभी जहरीली गैसों या ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका दम घुट गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने इस त्रासदी पर गहरा दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे के 65 कैबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफल बचाव अभियान की सराहना की है। सरकार देश में एक मजबूत, भरोसेमंद और टिकाऊ सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल कर रही है। सेमीकंडक्टर इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माण और पैकेजिंग की 12 परियोजनाओं के साथ साथ 24 सेमीकंडक्टर डिजाइन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी जा चुकी है। दूरसंचार विभाग ने नागरिकों के लिए इंटरनेट का उपयोग आसान बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी के अंतर्गत सुधारों की पहल की है। संचार मंत्रालय ने कहा है कि सभी पीएम वाणी हितधारकों को संशोधित दिशा निर्देशों को लागू करने और इस वर्ष जुलाई तक पूरे इकोसिस्टम में नई उपयोगकर्ता अनुकूल सुविधाओं को चालू करने का निर्देश दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने आज नई दिल्ली में अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव नामक पुस्तक का विमोचन किया। ये पुस्तक केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लिखी गई है। इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि सभी को, विशेषकर उभरते हुए राजनेताओं को, इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना चाहिए। श्री देवेगौड़ा ने कहा कि पुस्तक एक सामान्य राजनीतिक जीवन नहीं बल्कि ये दर्शाती है कि श्री मोदी और श्री शिवराज ने जनता के कल्याण के लिए कैसे मिलकर काम किया। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके दशकों के अनुभव पर आधारित है।

0: उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें बधाई दी।
1: आज 26 मई है, ये वो ऐतिहासिक दिन है जब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी। मैं भी उनको बधाई देता हूँ और आप सब भी उनका अभिनंदन करें। लेकिन मेरा और उनका साथ 35 साल पुराना है और इन 35 सालों में मैंने उनको हर क्षण देश के लिए जीते हुए देखा है। उनका हर कदम देश की प्रगति और विकास के लिए उठा है। मैंने उनके दिल को जनता के लिए धड़कते हुए देखा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के आज 12 साल पूरे होने पर इसे भारत की सभ्यता और विकास यात्रा का बदलाव लाने वाला दौर बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 26 मई 2014 को देश के प्रशासन, सोच, नेतृत्व और राष्ट्रीय संकल्प में एक निर्णायक बदलाव आया जब श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यभार संभालने के बाद से देश ने अभूतपूर्व आत्मविश्वास और नए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का ऐतिहासिक क्षण देखा है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार के सुशासन और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित पिछले 12 वर्ष के कार्यकाल को अभूतपूर्व बताया। बीजू जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के महासचिव अरुण सिंह और उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल किया गया। खाद्य ग्रामोद्योग आयोग ने स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की दिशा में नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में कारोबार 1,87,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खाद्य ग्रामोद्योग उद्योग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और लाखों ग्रामीण कारीगरों की मेहनत के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संविधि सूचकांक में दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 251 अंक गिरकर 76,238 जबकि निफ्टी 50 अंक की गिरावट के साथ 23,982 पर था। सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण दिन आज अराफात का दिन है। दुनिया भर से लाखों मुसलमान जुलहिजा की 9 तारीख को मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा हुए हैं ताकि वे हज की प्रमुख रस्म अदा कर सकें। जायरीन निमरा मस्जिद में खुतबाए हज या हज का उपदेश सुनेंगे और शाम को मुजदलिफा के लिए रवाना होने से पहले दोपहर और शाम की नमाज एक साथ अदा करेंगे। इस रस्म को हज पूरा करने के लिए अनिवार्य माना जाता है। मुजदलिफा से जायरीन कल सुबह कुर्बानी और शैतान को पत्थर मारने के लिए प्रतीकात्मक रस्म के लिए मीना लौटेंगे। इस साल के हज में 1,75,000 से भी ज़्यादा भारतीय जायरीन हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में नए हवाई हमले किए हैं। इन हमलों को वॉशिंगटन ने अपने सैनिकों की सुरक्षा के लिए आत्मरक्षा में की गई कार्रवाई बताया है। आईपीएल क्रिकेट में आज क्वालिफायर वन में मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटंस से होगा। ये मुकाबला धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। विजेता टीम फाइनल में पहुंचेगी जबकि हारने वाली टीम को क्वालिफायर टू में एक और मौका मिलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि मिजोरम में आज मानसून की शुरुआत हो गई है। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के कल तक पहुँचने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने केरलम के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और अल्लापुझा जिलों में आज अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा की आशंका को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई दक्षिणी क्षेत्रों में लगातार बारिश जारी है। कोच्चि, मुन्नार, कुमारकोम, निलाक्कल, कुमिली, सबरीमला, वर्कला और पोनमुडी सहित कई स्थानों पर आज सुबह 10 बजे से लगभग 5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। लक्षद्वीप के अमिनी, अगाती और कवरत्ती में भी 5 से 15 मिलीमीटर के बीच बारिश हुई है। अधिकारियों ने बताया है कि मौसम की स्थिति पर बारीकी से रखी जा रही है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
0: इस बीच विभाग ने आज दिल्ली में भी भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। राजधानी में कल तक लू की स्थिति की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिम राजस्थान में आज भी भीषण लू चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड ने स्थिर और सुरक्षित ऊर्जा बाजारों की प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत और अमेरिका ने महत्वपूर्ण खनिजों और दुर्लभ मृदा तत्वों की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित

0: ने राजस्थान के सांचू सीमा चौकी का दौरा किया। राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सऊदी अरब में लाखों जायरीन आज हज की मुख्य रस्म अदा कर रहे हैं और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में क्वालिफायर वन में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान।

0: श्रोताओं नमस्कार, ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम के साथ मैं हूँ सरोज ठाकुर। जब भी हम सूक्ष्म जीव शब्द सुनते हैं तो अक्सर हमारे मन में बीमारी और संक्रमण का विचार आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सूक्ष्म जीव केवल रोग फैलाने वाले नहीं होते, बल्कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में किसी न किसी रूप में सहायक भी होते हैं। दही जमाने से लेकर दवाइयाँ बनाने तक, खेतों की उर्वरता बढ़ाने से लेकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने तक, यहाँ तक कि हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में भी सूक्ष्म जीवों की अहम भूमिका होती है। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते हैं। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। बैक्टीरिया, वायरस, फफूंद और शैवाल जैसे जीव इसी श्रेणी में आते हैं। हमारे शरीर में करोड़ों की संख्या में सूक्ष्म जीव मौजूद हैं, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाने, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ बैक्टीरिया हानिकारक होते हैं, जो सूक्ष्म जीव बीमारियां भी फैलाते हैं। तो श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम विस्तार से जानेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे जीवन को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इनके क्या लाभ हैं, इनसे हमें कौन कौन से नुकसान होते हैं और विज्ञान ने इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए किस प्रकार किया है। इसी विषय पर हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वार्ता, मानव जीवन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। वार्ताकार हैं डॉक्टर सुशीला देवी।
1: आज हम बात करेंगे मानव जीवन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका के बारे में। मानव जीवन में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। सूक्ष्म जीव प्रकृति के ऐसे अत्यंत छोटे जीव हैं जिन्हें सामान्यतः नंगी आंखों से देख पाना संभव नहीं होता। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी अर्थात माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। जीवाणु, विषाणु, कवक, शैवाल तथा प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीवों के प्रमुख प्रकार है। यद्यपि इनका आकार अत्यंत सूक्ष्म होता है, फिर भी पृथ्वी पर जीवन के संचालन, संतुलन और विकास में इनकी भूमिका अत्यंत व्यापक और महत्वपूर्ण है। सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर जीवन के सबसे प्राचीन रूपों में से एक है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये अरबों वर्षों से पृथ्वी पर मौजूद है। सूक्ष्म जीवों को मुख्यतः पांच वर्गों में बांटा जाता है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, विषाणु, वायरसेस, कवक अर्थात फंजाई, प्रोटोजोआ और शैवाल। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः रोग उत्पन्न करने वाले जीवों के रूप में जाना जाता है, किंतु यह केवल एक पक्ष है। वास्तविकता यह है कि अधिकांश सूक्ष्म जीव मानव जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। वे भोजन, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और पर्यावरण जैसे सभी प्रमुख क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। भोजन एवं खाद्य उद्योग में भूमिका। मानव जीवन में सूक्ष्म जीवों का सबसे प्रत्यक्ष उपयोग खाद्य पदार्थों के निर्माण में देखा जाता है। कई पारंपरिक और आधुनिक खाद्य पदार्थ सूक्ष्म जीवों की सहायता से तैयार किए जाते हैं। दही का निर्माण लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया द्वारा दूध के फर्मेंटेशन से होता है। इसी प्रकार ब्रेड, केक और अन्य बेकरी उत्पाद ईस्ट की सहायता से बनाए जाते हैं, जो आटे में गैस

बनकर उसे फुलाते हैं। इसके अतिरिक्त अचार, सिरका, पनीर, इडली और डोसा जैसे अनेक खाद्य पदार्थ भी सूक्ष्म जीवों के बिना संभव नहीं होते। यह प्रक्रिया न केवल भोजन को स्वादिष्ट बनाती है बल्कि उसके पोषण मूल्य को भी बढ़ाती है। मानव स्वास्थ्य और पाचन तंत्र में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। मानव शरीर में भी सूक्ष्म जीवों का एक विशाल समुदाय विद्यमान होता है जिसे माइक्रोबायोम कहा जाता है। विशेषकर हमारी आंतों में पाए जाने वाले लाभकारी बैक्टीरिया भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सूक्ष्म जीव जटिल भोजन को सरल पदार्थों में बदलते हैं जिसमें शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही विटामिन बी और विटामिन के निर्माण में भी सहायता करते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में प्रोबायोटिक्स का उपयोग बढ़ रहा है।

क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। मानव शरीर में भी सूक्ष्म जीवों का एक विशाल समुदाय विद्यमान होता है जिसे माइक्रोबायोम कहा जाता है। विशेषकर हमारी आंतों में पाए जाने वाले लाभकारी बैक्टीरिया भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सूक्ष्म जीव जटिल भोजन को सरल पदार्थों में बदलते हैं जिसमें शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। इसके साथ ही विटामिन बी और विटामिन के निर्माण में भी सहायता करते हैं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में प्रोबायोटिक्स का उपयोग बढ़ रहा है जो आंतों में लाभकारी बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाकर पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। कृषि के क्षेत्र में भी सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र माने जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाकर भूमि की उर्वरता बनाए रखते हैं। इससे फसल उत्पादन में वृद्धि होती है और रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है। चिकित्सा विज्ञान में सूक्ष्म जीवों का योगदान बहुत बड़ा है। पेनिसिलिन जैसी एंटीबायोटिक दवाइयाँ फफूंद से प्राप्त की जाती है। वैक्सीन और कई जीवन रक्षक दवाइयों के निर्माण में भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग होता है। पर्यावरण संरक्षण में भी इनकी भूमिका अहम है। मृत पौधों और जीवों की विघटित करके ये पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखते हैं। यदि सूक्ष्म जीव ना हो तो पृथ्वी पर कचरे और मृत पदार्थों का ढेर लग जाए। हालांकि कुछ सूक्ष्म जीव हानिकारक भी होते हैं। हैजा, टाइफाइड, तपेदिक और कोविड-19 जैसी बीमारियों सूक्ष्म जीवों के कारण ही फैलती है। इसके लिए स्वच्छता, संतुलित आहार और नियमित टीकाकरण बहुत आवश्यक है। आज विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूक्ष्म जीवों का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, जैव ईंधन निर्माण और प्रदूषण नियंत्रण जैसे क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। इस प्रकार सूक्ष्म जीव मानव जीवन के अभिन्न अंग है। ये न केवल हमारे व्यवसाय और पर्यावरण की रक्षा करते हैं बल्कि मानव सभ्यता के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। चिकित्सा विज्ञान में सूक्ष्म जीवों का योगदान। सूक्ष्म जीवों का चिकित्सा विज्ञान में योगदान क्रांतिकारी रहा है। एंटीबायोटिक दवाओं की खोज ने मानव जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1928 में सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेंसिलिन की खोज ने चिकित्सा जगत में नई क्रांति ला दी। पेंसिलिन नामक इस एंटीबायोटिक की खोज एक सूक्ष्म जीव से ही हमें मिली है जो कि बैक्टीरिया और बहुत सारे दूसरे सूक्ष्म जीव की ग्रोथ को या तो रोकती है या उनको ख़त्म कर देती है। यह दवा बैक्टीरिया को नष्ट करने में भी अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई है। इसके अतिरिक्त कई टीके भी सूक्ष्म जीवों के निष्क्रिय या कमज़ोर रूपों से बनाए जाते हैं जो शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हैं। चेचक, पोलियो, टाइफाइड और कोविड-19 जैसी बीमारियों के नियंत्रण में टीकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कृषि क्षेत्र में भूमिका। कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म जीवों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने और फसलों की उत्पादकता सुधारने में सहायता करते हैं। राइजोबियम जैसे जीवाणु दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं और वातावरणीय नाइट्रोजन को पौधों के लिए उपयोगी रूप में बदलते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। इसके अलावा सूक्ष्म जीव जैविक खाद अर्थात ऑर्गेनिक मैन्योर के निर्माण में सहायक होते हैं जो रासायनिक उर्वरकों की तुलना में अधिक सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल होती है। पर्यावरण संरक्षण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। सूक्ष्म जीव प्रकृति के सफाई कर्मचारी कहलाते हैं। सूक्ष्म जीव पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये मृत पौधों, जानवरों और अन्य जैविक अवशिष्टों का अपघटन अर्थात डिकम्पोजिशन करते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से जटिल जैविक पदार्थ सरल पदार्थों में बदल जाते हैं और पुनः

0: मिट्टी में मिलकर पौधों के लिए पोषक तत्व प्रदान करते हैं। यदि सूक्ष्म जीव ना हो तो पृथ्वी मृत पदार्थों से भर जाएगी और जीवन चक्र बाधित हो जाएगा। इस प्रकार सूक्ष्म जीव प्रकृति के रीसाइक्लिंग एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। औद्योगिक उपयोग। सूक्ष्म जीवों का उपयोग कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में किया जाता है। शराब, सिरका, एंजाइम, एंटीबायोटिक्स और विभिन्न जैव रसायनों के उत्पादन में इनका व्यापक उपयोग होता है। बायोटेक्नोलॉजी के विकास के साथ सूक्ष्म जीवों का उपयोग और भी बढ़ गया है। आज इनके माध्यम से जैव ईंधन अर्थात बायोफ्यूल, औद्योगिक एंजाइम और औषधियां तैयार की जा रही है। हानिकारक सूक्ष्म जीव। जहां एक और सूक्ष्म जीव लाभकारी है, वहीं कुछ सूक्ष्म जीव मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं, मलेरिया, डेंगू, हैजा, टाइफॉइड, तपेदिक और COVID-19 जैसे सूक्ष्म जीवों के कारण ही फैलते हैं। वायरस और हानिकारक बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश कर गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर सकते हैं। इसलिए स्वच्छता, संतुलित आहार, टीकाकरण और जागरूकता आवश्यक है। सूक्ष्म जीवों को केवल मित्र या शत्रु के रूप में देखना उचित नहीं है। ये प्रकृति का एक अनिवार्य हिस्सा है। इनके बिना जीवन चक्र संभव नहीं है। आवश्यकता इस बात की है कि हम इनके लाभकारी उपयोग को बढ़ाए और हानिकारक प्रभावों से स्वयं को सुरक्षित रखें। सूक्ष्म जीवों के बारे में जागरूकता समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। विद्यार्थियों, किसानों, स्वास्थ्य कर्मियों तथा सामान्य नागरिकों को इसके लाभ और हानियों दोनों की जानकारी होनी चाहिए। सूक्ष्म जीव विज्ञान क्षेत्र में निरंतर शोध हो रहे हैं। भविष्य में ऊर्जा उत्पादन, कचरा प्रबंधन तथा रोग नियंत्रण में सूक्ष्म जीवों की और भी बड़ी भूमिका हो सकती है। युवाओं को जैव प्रौद्योगिकी और सूक्ष्म जीव विज्ञान जैसे विषयों की ओर प्रेरित करना समय की आवश्यकता है। अंततः यह कहा जा सकता है कि सूक्ष्म जीव मानव जीवन के अदृश्य किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण सहायक है। भोजन, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और पर्यावरण हर क्षेत्र में इनका योगदान अमूल्य है। इनके बिना पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना असंभव है। इसलिए सूक्ष्म जीवों को समझना और उनके महत्व को स्वीकार करना आधुनिक विज्ञान और मानव सभ्यता के लिए अत्यंत आवश्यक। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये तो सुनी आपने वार्ता और जाना कि सूक्ष्म जीव भले ही आकार में अत्यंत छोटे हों, लेकिन मानव जीवन में उनका योगदान अत्यंत विशाल है। ये हमारे भोजन, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण और उद्योग हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जहां एक ओर सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं, वहीं दूसरी ओर अधिकांश सूक्ष्म जीव मानव जीवन को बेहतर और संतुलित बनाने में सहायक होते हैं। जरूरत है इनके प्रति सही जानकारी और जागरूकता की। विज्ञान ने ये सिद्ध कर दिया है कि प्रकृति का हर जीव किसी न किसी रूप में उपयोगी होता है और सूक्ष्म जीव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। श्रोताओं, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं विज्ञान से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। और अब बात करते हैं जैविक और रासायनिक खेती की। भारत कृषि प्रधान देश है और खेती हमारे जीवन का आधार है। समय के साथ खेती के तरीकों में भी बदलाव आया है। पहले किसान प्राकृतिक तरीके से खेती किया करते थे, लेकिन बढ़ती जनसंख्या और अधिक उत्पादन की आवश्यकता के कारण रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग बढ़ने लगा है। इससे उत्पादन तो बढ़ा, लेकिन मिट्टी की उर्वरता, जल, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर इसका दुष्प्रभाव भी दिखाई देने लगा। इसी कारण आज फिर से जैविक खेती की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है। जैविक खेती न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि ये स्वास्थ्यवर्धक और टिकाऊ कृषि पद्धति भी मानी जाती है। तो आज हम भी आपसे बात करने जा रहे हैं कि जैविक खेती और रासायनिक खेती में क्या

क्या अंतर है, इसके लाभ और हानियां क्या हैं, और भविष्य के लिए कौन कौन सी खेती अधिक उपयोगी साबित हो सकती है। सबसे पहले बात करते हैं जैविक खेती की। जैविक खेती वो पद्धति है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। इसमें गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, वर्मी कंपोस्ट और जैविक कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है। इस खेती में मिट्टी और उर्वरता को प्राकृतिक रूप से बनाए रखने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जैविक खेती कृषि की वो विधि है जो उर्वरकों और कीटनाशकों के अप्रयोग का कम प्रयोग पर आधारित है, और जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए फसल चक्र, हरी खाद, कंपोस्ट का उपयोग करती है। सन 1990 के बाद से विश्व में जैविक उत्पादों का बाजार काफी बढ़ गया है। संपूर्ण विश्व में बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ भोजन की आपूर्ति के लिए मानव द्वारा खाद्य उत्पादन की होड़ में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए तरह तरह की रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों का उपयोग, पारिस्थितिकी तंत्र, प्रकृति के जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान के चक्र को प्रभावित करता है, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति खराब हो जाती है। साथ ही वातावरण प्रदूषित होता है और मनुष्य के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। शहरीकरण और औद्योगिकरण के साथ जनसंख्या में तेजी से वृद्धि एक बड़ी चिंता बन गई है। कई बार खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए फसल उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए हानिकारक खेती के तरीकों का इस्तेमाल किया गया है। इन तरीकों में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और अन्य रसायनों का उपयोग शामिल है, जो हमारे भोजन और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। इस समस्या से बचने और मानव सभ्यता की रक्षा करने के लिए जैविक खेती सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। जैविक खेती एक ऐसी विधि है जिसमें हवा, पानी और मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके फसलों को संधारणीय यानी भविष्य में पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता किए बिना वर्तमान की जरूरतों को पूरा किया जाता है और खेती को इन तरीकों से उगाया जाता है। वास्तव में कुछ जैविक खेती के तरीकों में मानव निर्मित उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, लेकिन इन कीटनाशकों का उपयोग फसल के उत्पादन को बढ़ाने के बजाय मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। रसायन मिट्टी में जाते हैं और उसे उपजाऊ बनाते हैं। जैविक और अकार्बनिक खेती के बीच मुख्य अंतर ये भी है कि जैविक खेती में रसायन फसलों को प्रभावित किए बिना मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार करते हैं। रासायनिक खेती में रसायन समय के साथ मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे भोजन में पहुंच जाते हैं, जिससे स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं। कीटनाशकों में जिंक, लेड और मैग्नीज जैसे हानिकारक रसायन हमारे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करने पर हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जैविक खेती के कुछ ऐसे खंड हैं जहां जैविक खेती के मुख्य पहलुओं को सरल तरीके से समझा जाता है। जैविक खाद प्राकृतिक तरीके से पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करती है। किसान फसलों के लिए खेतों के कचरे, खली, वर्मी कंपोस्ट जैसे कई प्रकार के जैविक खाद का उपयोग करते हैं। जैविक कीट प्रबंधन में रासायनिक कीटनाशकों से बचने के लिए जैविक खेती कीटों को नियंत्रित करने के लिए प्राकृतिक तरीकों का उपयोग करती है। इसमें नीम और तंबाकू जैसे जैविक कीटनाशकों और वेसिलस थुरिंजियंसिस जैसे विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करना शामिल है। ये दृष्टिकोण मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखने और कीटों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने में मदद करता है। गैर रासायनिक खरपतवार नियंत्रण में किसान रसायनों के बिना खरपतवारों को प्रतिबंधित करने के लिए यांत्रिक तरीकों जैसे कि हाथ से निराई या औजारों का उपयोग करते हैं। खरपतवार नियंत्रण के लिए जैविक तरीकों को बढ़ावा देने से खरपतवारों की आबादी को प्राकृतिक रूप से कम करने में मदद मिलती है। फसल चक्र, मिश्रित फसल और हरी खाद जैसी तकनीकें मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाती हैं। इन पद्धतियों में फलीदार फसलों को शामिल

करने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। एली क्रॉपिंग में स्थायी पौधे आमतौर पर फलीदार पौधों को खेती प्रणालियों में एकीकृत करना शामिल होता है। ये मिट्टी की संरचना और उर्वरता को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। जैविक खेती कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। रासायनिक उर्वरक का उपयोग ना करना। प्रकृति में पौधे और जानवरों से कार्बनिक पदार्थ, सूक्ष्म जीवों और कवक की मदद से किसान रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर हुए बिना अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। शाकनाशियों का उपयोग ना करके कई खेतों में पुआल की गीली घास और अस्थाई बाड़ का उपयोग करके खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। इससे उन्हें शाकनाशियों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती। कीटनाशकों का उपयोग अगर ना किया जाए तो जैविक खेती प्राकृतिक कीट शाकारियों की रक्षा करके इनके बजाय जैविक कीटनाशकों का उपयोग करके रासायनिक कीटनाशकों से बच सकती है। स्वस्थ मिट्टी और रखरखाव को ध्यान में रखते हुए सब्जियां उगाने, हरी खाद का उपयोग करने, फसलों को बदलने के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखा जाता है। एक ही प्रकार की फसल को लंबे समय तक उगाने से मिट्टी का उपजाऊपन और पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। उपजाऊ भूमि रखने के लिए फसल में समय समय पर बदलाव की जरूरत होती है। जैविक खेती में कई चुनौतियां होती हैं। इनमें पारंपरिक तरीके की तुलना में अधिक लागत और काम की तीव्रता शामिल है। उनके लिए सिंथेटिक संसाधनों के बिना कीट और खरपतवार नियंत्रण अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं जटिल और महंगी होती हैं। इसके अतिरिक्त अक्सर जैविक इनपुट और बाजारों तक सीमित पहुंच होती है, जो लाभप्रदता को प्रभावित करती हैं। जलवायु परिवर्तन और नए मौसम पैटर्न भी जैविक खेती के लिए जोखिम पैदा करते हैं। इन सभी चुनौतियों के बावजूद जैविक खेती मिट्टी के स्वास्थ्य, जैव विविधता और टिकाऊ कृषि के लिए दीर्घकालिक लाभ प्रदान करती है। जैविक खेती मिट्टी की भौतिक और खनिज गुणवत्ता में सुधार करके उसकी उर्वरता को बढ़ाती है। इससे मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार होता है और जैविक खेती को अन्य तरीकों से अधिक पसंद किया जाता है। प्राचीन काल में मानव स्वास्थ्य के अनुकूल और प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खेती की जाती थी, जिससे जैविक और अजैविक पदार्थों के बीच आदान प्रदान का चक्र निरंतर चलता रहता था, जिसके परिणाम स्वरूप जल, भूमि, वायु और वातावरण प्रदूषित नहीं होता था। भारतवर्ष में प्राचीन काल से कृषि के साथ गौ पालन किया जाता था, जिसके प्रमाण हमारे ग्रंथों में भी मिलते हैं, जो कि प्राणी मात्र और वातावरण के लिए अत्यंत उपयोगी था। लेकिन बदलते परिवेश में गौ का पालन धीरे धीरे कम हो गया और कृषि में तरह तरह की रासायनिक खादों और कीटनाशकों का प्रयोग होने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप जैविक और अजैविक पदार्थों के चक्र का संतुलन बिगड़ता जा रहा है और वातावरण प्रदूषित होकर मानव जाति के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। अब हम रासायनिक खादों, जहरीले कीटनाशकों के उपयोग के स्थान पर जैविक खादों और दवाइयों का उपयोग कर अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भूमि, जल और वातावरण शुद्ध होगा और मनुष्य और प्रत्येक जीवधारी स्वस्थ रहेंगे। इसके विपरीत रासायनिक खेती में उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का उपयोग किया जाता है। इससे फसल जल्दी तैयार होती है और उत्पादन अधिक मिलता है। और अब बात कर लेते हैं जैविक और रासायनिक खेती में अंतर की। जैविक खेती में रासायनिक खादों का उपयोग होता है और रासायनिक खेती में रासायनिक उर्वरकों का। पर्यावरण जैविक खेती से सुरक्षित होता है, वहीं रासायनिक खेती से मिट्टी और जल प्रदूषण बढ़ जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो जैविक खेती स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है, वहीं रासायनिक खेती में उपयोग किए गए रसायन स्वास्थ्य पर बुरा असर डालते हैं। मिट्टी की उर्वरता जैविक खेती से लंबे समय तक बनी रहती है, वहीं रसायनों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे कम हो जाती है। उत्पादन की अगर हम बात करें तो जैविक खेती में उत्पादन कम हो सकता है, लेकिन रासायनिक खेती में उत्पादन अधिक और जल्दी मिलता है। हरित क्रांति के बाद से

0: रासायनिक खेती का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ा है। इस पद्धति में फसल की पैदावार को जल्दी और कई गुना बढ़ाने के लिए कृत्रिम उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों का उपयोग किया जाता है। रासायनिक खेती में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश जैसे रासायनिक उर्वरक तुरंत पौधों का पोषण करते हैं, जिससे फसल तेजी से बढ़ती है। रासायनिक कीटनाशक कई प्रकार के रोगों और कीटों को मारने के लिए रसायनों का छिड़काव किया जाता है। जैविक खेती से हमें कई प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। इससे भूमि की उपजाऊ क्षमता में वृद्धि हो जाती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि, बाजार में जैविक उत्पादों की मांग बढ़ने से किसानों की आय में भी वृद्धि होती है। अगर मिट्टी के दृष्टिकोण से जैविक खेती को देखा जाए तो जैविक खाद के उपयोग करने से भूमि की गुणवत्ता में सुधार आता है, भूमि की जल धारण क्षमता बढ़ जाती है और भूमि से पानी का वाष्पीकरण कम होता है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भूमि के जल स्तर में वृद्धि क्रियाशील होती है। मिट्टी, खाद्य पदार्थ और जमीन में पानी के माध्यम से होने वाले प्रदूषण में कमी आती है। कचरे का उपयोग खाद बनाने में होने से बीमारियों में काफी कमी आती है। जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में बराबर उत्पादन देती है, अर्थात जैविक खेती मृदा की उर्वरता और कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक होती है। वर्षा आधारित क्षेत्रों में जैविक खेती की विधि और भी अधिक लाभदायक है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती है, इसके साथ ही कृषक भाइयों को आय अधिक प्राप्त होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे उतरते हैं। आधुनिक समय में निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या, पर्यावरण प्रदूषण, भूमि उर्वरा शक्ति का संरक्षण और मानव स्वास्थ्य के लिए जैविक खेती की राह अत्यंत लाभदायक है। मानव जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए नितांत जरूरत है कि प्राकृतिक संसाधन प्रदूषित ना हो, शुद्ध वातावरण रहे और पौष्टिक आहार मिलता रहे। इसके लिए हमें जैविक खेती की कृषि पद्धति को अपनाना होगा, जो कि हमारे नैसर्गिक संसाधनों और मानवीय पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना समस्त जनमानस को खाद्य सामग्री उपलब्ध करा सकेगी और हमें खुशहाल जीने की राह दिख सकेगी। तो श्रोताओं, ये तो हमने जाना कि जैविक और रासायनिक खेती क्या है और इसके क्या क्या लाभ हमें मिल रहे हैं और रसायनों का ज़्यादा उपयोग करने से हमें किस तरह के नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। और इसी के साथ घड़ी की सुइयां भी इशारा कर रही हैं कि कार्यक्रम का समय भी हो चला है। तो इस वादे के साथ कि कार्यक्रम के अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी आपने सुना ज्ञान विज्ञान कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। आइए सुनते हैं ये संदेश।
2: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
3: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
2: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
3: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
4: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से,
5: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
4: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं,
5: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
6: मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पहले चरण के तहत प्रदेश की 1293 पंचायतों के लिए सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जो दोपहर बाद 3 बजे तक चला। कुछ पंचायतों में अभी भी मतदान जारी है। ये वो पंचायतें हैं जहां लोग वोट डालने के लिए कतारों में लगे हैं। पंचायत प्रधान, उप प्रधान व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी और शाम तक सभी नतीजे घोषित कर दिए जाने की उम्मीद है। इस बार आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए मत पेटियों में स्कैनर की सुविधा शुरू की है, जो मतों की गणना तक निगरानी में सहायक सिद्ध होगी। मतगणना में कोई भी गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने 100% मतदान केंद्रों को CCTV कवरेज से जोड़ा है। इस बीच आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लेकर उम्रदराज मतदाताओं तक ने लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हमीरपुर जिला की टिक्करी मिन्हासा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में समलोग गांव से 100 वर्षीय रेशमो देवी भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। अधिकांश मतदान केंद्रों पर गर्मी के चलते सुबह के वक्त मतदाताओं की जोरदार भीड़ उमड़ी और लोग कतारों में खड़े होकर मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। इस बीच कुल्लू जिला में दोपहर बाद 2 बजे तक 60.2% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। इस दौरान आनी विकास खंड में लगभग 56%, बंजार में 58%, भुंतर और कुल्लू विकास खंडों में 61%, नग्गर में 60% और निरमंड में 59% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मंडी और हमीरपुर जिलों में 1 बजे तक 50% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। शिमला जिला की अधिकांश पंचायतों में भी भारी मतदान की सूचना है। रोहडू और कसुमटी विधानसभा क्षेत्र की कई पंचायतों के मतदान केंद्रों पर अभी भी मतदाता कतारों में वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आज हुए पंचायत चुनावों में महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान में हिस्सा लिया। ऊना जिला में 1 बजे तक 69.13% महिलाओं और 62.14% पुरुष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। ज़िले में भीषण गर्मी के बावजूद भारी संख्या में मतदाता लोकतंत्र के इस उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। लाहौल स्पीति ज़िला में भी भारी मतदान की सूचना है। यहां 11 बजे तक लगभग 32% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया था। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता को इस पद पर नियमित नियुक्ति दे दी है। संजय गुप्ता को मुख्य सचिव के पद पर ये नियमित नियुक्ति उनकी सेवानिवृत्ति से 5 दिन पूर्व दी गई है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनकी पदोन्नति संबंधी अधिसूचना आज कार्मिक विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। लेह लद्दाख को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाले देश के सबसे लंबे बस रूट पर हिमाचल पथ परिवहन निगम की दिल्ली केलंग लेह बस सेवा आज से एक बार फिर शुरू हो गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक केलंग अंशित शर्मा ने कहा कि 990 किलोमीटर लंबा ये रूट स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र रहता है। ये बस लाहौल स्पीति के प्रमुख पर्यटन स्थलों जिस्पा, दारचा, बारालाचा और सरचू से होती हुई लेह तक पहुँचेगी।
1: HRTC केलोंग अपना सबसे लंबा रूट दिल्ली केलोंग ले इसको रिज्यूम करने जा रहा है। ये रूट हमारा दिल्ली से स्टार्ट होगा, दिल्ली से 12:20 का समय रहेगा और ये केलोंग पहुंचेगा 5 बजे सुबह। केलोंग से मॉर्निंग 5:30 गाड़ी निकलेगी और वो बालालाचा पास, नकीला पास, तांगलंगला पास होते हुए लेह पहुंचेगी। ये जो पूरा सफर रहेगा दिल्ली से 990 किलोमीटर का रहेगा और इसका किराया जो है वो 1840 रुपये रहेगा। टूरिस्ट काफी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, ये पब्लिक के लिए, टूरिस्ट के लिए एक बहुत अच्छा अवसर रहेगा कि वो इस रूट का आनंद लें।
0: लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला लोसर ग्रामफू चंद्रताल सड़क मार्ग हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया है। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन की ओर से जारी विज्ञप्ति में

0: कहा गया है कि फिलहाल इस मार्ग को 4x4 हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए खोला गया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचारों के बाद प्रस्तुत है सिरमौर जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक है सतीश शर्मा, वाचक स्वर पूनम शर्मा का।
0: प्रदेश सहित सिरमौर जिले में भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की हलचल जारी है। जिले में आज पहले चरण का मतदान हुआ। इस बार पंचायत चुनावों के बीच 28 पंचायतों ने अनोखी मिसाल कायम की है। जिले की कुल 273 पंचायतों में से 28 पंचायतें ऐसी हैं जहां प्रधान, उप प्रधान और वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। इन पंचायतों में केवल एक एक प्रत्याशी के नामांकन होने के चलते चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इन पंचायतों को प्रदेश सरकार की ओर से विकास कार्यों के लिए 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। वहीं जिन पंचायतों में बीडीसी सदस्य भी निर्विरोध चुने गए हैं उन्हें 30 लाख रुपए तक की राशि मिलेगी। ऐसे में सिरमौर जिले को कुल मिलाकर करीब 7 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलने जा रही है। जिला सिरमौर के अंतर्गत शिलाई विधानसभा क्षेत्र के शाटी पाशी का चौंतरा और ग्राम पंचायत टटियाना में एक अनोखी और ऐतिहासिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए पंचायत प्रतिनिधियों का चयन सर्वसम्मति से पर्ची डालकर लक्की ड्रॉ के माध्यम से किया गया। ये पूरी प्रक्रिया महासू महाराज मंदिर टटियाना के प्रांगण में आयोजित की गई, जहाँ ग्रामीणों की मौजूदगी में महासू महाराज को साक्षी मानकर चयन सम्पन्न हुआ। गांव में ये अनूठी व्यवस्था वर्ष 2020 में शुरू की गई थी, जिसके तहत गांव के 4 बेड़ों यानी परिवार समूहों से नामित प्रतिनिधियों के नाम पर्चियों में डालकर लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाता है। ये लगातार दूसरी बार है जब इसी प्रक्रिया के तहत पंचायत प्रतिनिधियों का चुनाव हुआ है। बीते दिनों श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र की पहली थोक फल व सब्जी मंडी का संचालन नौराधार में शुरू हो गया है। मंडी में सब्जियों की खरीद फरोख्त शुरू हो गई है, जिससे क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को बड़ी राहत मिली है। अब किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए सोलन, दिल्ली और अन्य दूरदराज की मंडियों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे उनके परिवहन खर्च में कमी आएगी और समय की भी बचत होगी। हिमाचल पथ परिवहन निगम के नाहन बस स्टैंड परिसर में छोटे बच्चों के साथ यात्रा करने वाली महिलाओं को एकांत और सुविधा प्रदान करने के लिए एक ब्रेस्ट फीडिंग रूम खोला गया है। ये सुविधा प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहेगी। ये सुविधा लगभग एक महीने पहले जारी सरकारी निर्देशों के बाद प्रदान की गई है। इस पहल का उद्देश्य उन माताओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करना है जिन्हें छोटे बच्चों को यात्रा के दौरान स्तनपान करवाना होता है। ज़िला सिरमौर के मुख्यालय नाहन की प्रमुख मुस्लिम संस्था अंजुमन इस्लामिया ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। संस्था ने इस संबंध में उपमंडलाधिकारी नाहन के माध्यम से सरकार को एक मांग पत्र भेजा है। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वे गाय को राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखते हैं और इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। अंजुमन इस्लामिया के प्रधान गुल मनव्वर अहमद की ओर से सौंपे गए इस पत्र में मांग की गई है कि देशभर में चल रहे बूचड़खानों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाना चाहिए। सिरमौर जिला के नौराधार तहसील के दूरदराज गांव नानड़ी के वैज्ञानिक डॉक्टर जयपाल शर्मा को डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय में वृक्ष सुधार व आनुवंशिक संसाधन विभाग का विभागाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। डॉक्टर जयपाल शर्मा पिछले 17 वर्षों से वानिकी व कृषि वानिकी के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। उन्हें अल्पावधि वृक्ष प्रजातियों, विशेष रूप से स्थानीय भाषा में बेस और ब्यूंस कहलाने वाले विलो हाइब्रिड के सुधार, मूल्यांकन और विकास में विशेष विशेषज्ञता प्राप्त है। हिमाचल के निचले इलाकों में लगातार बढ़ते तापमान के साथ ही घुमंतू भेड़पालकों ने एक बार फिर पहाड़ों की ओर अपना पारंपरिक सफर शुरू कर दिया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी गद्दी समुदाय के चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों के साथ मैदानी क्षेत्रों से ऊंचे पहाड़ी इलाकों की ओर पलायन कर रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी, बारिश और कड़ाके की ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे जीवन बिताने वाले ये भेड़

0: पालक आज भी अपनी सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। गर्मियों के मौसम में अधिकांश चरवाहे नारकंडा, किन्नौर और डोडरा क्वार के जंगलों और ऊंची पहाड़ियों में डेरा डालते हैं।
1: पूनम शर्मा से आप सुन रहे थे सिरमौर जिला की चिट्ठी, जिसके लेखक थे सतीश शर्मा। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 3:10 हुए हैं। FM शिमला पर यह समय रहता है ओल्ड हिट्स पर आधारित फिल्म संगीत का। तो आगाज़ करेंगे प्रेम नगर फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है किशोर कुमार और आशा भोंसले ने। आनंद बख्शी के बोल हैं और ST वर्मन का संगीत।

0: आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप, आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है, आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
3: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आपकी कसम। इस फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, आर डी वर्मन का संगीत।

0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
2: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
1: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
2: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ में पेइंग गेस्ट फिल्म का ये गीत।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला, कार्यक्रम युवाणी। और आज इस कार्यक्रम में मैं अक्षत आंगिरस आपके साथ। युवा साथियों, बचपन से लेकर अब तक हर साल सिर्फ हमारी उम्र ही नहीं बढ़ती, परंतु इसके साथ ही साथ हमारी ज़िंदगी में बढ़ती है स्ट्रेस और एन्जाइटी। और इससे बचने के लिए एक चीज़ जो हम सभी के दिमाग में होती है वो होती है घूमना, यानी कि ट्रैवल करना। और जब भी हम ट्रैवल या यात्रा शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में पहाड़, समुद्र, ट्रेन की खिड़की या किसी एक नई जगह की तस्वीर आती है। लेकिन दोस्तों, यात्रा सिर्फ खूबसूरत दृश्य देखना ही नहीं होती, असल में यात्रा होती है खुद को समझने की। एक युवा जब अपने शहर से बाहर निकलता है, नई जगहों को देखता है, अलग लोगों से मिलता है, तो उसके सोचने का तरीका बदलने लगता है। यात्राएँ हमें हमारी ही सोच से बाहर जाने के लिए मजबूर करती हैं, और इसी का अनुभव हमें इस दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखने का मौका देता है। तो आइए इसी के साथ सुनवाते हैं आपको आज के कार्यक्रम का पहला गीत।

0: युवा साथियों, ट्रैवलिंग हमें सिर्फ रिलैक्समेंट ही प्रदान नहीं करती, बल्कि यात्राएं हमारी आंखों के द्वारा दिखते सीमित दायरे को और विस्तृत करती है। यह हमें जोड़ती है प्रकृति के साथ। यात्राएं हमें दिखाती है कि कैसे ईश्वर ने प्रकृति के हर एक अंग में कैसे कुछ गहरे राज छोड़े हैं, जो एक मनुष्य को हर पल कुछ सीख देते हैं। जैसे कि खूबसूरत पहाड़, जो जितने ऊंचे वो उतने ही शांत, उतने ही मौन।
1: मिलेंगे हम पहला मिलेंगे।
0: युवा साथियों, ट्रैवलिंग हमें सिर्फ रिलैक्समेंट ही प्रदान नहीं करती, बल्कि यात्राएं हमारी आंखों के द्वारा दिखते सीमित दायरे को और विस्तृत करती है। यह हमें जोड़ती है प्रकृति के साथ। यात्राएं हमें दिखाती है कि कैसे ईश्वर ने प्रकृति के हर एक अंग में कैसे कुछ गहरे राज छोड़े हैं, जो एक मनुष्य को हर पल कुछ सीख देते हैं। जैसे कि खूबसूरत पहाड़, जो जितने ऊंचे वो उतने ही शांत, उतने ही मौन। जैसे कि समुद्र, जो जितने गहरे उनकी लहरों की गर्जना भी उतनी ही। जैसे कि सूरज, जिसकी रोशनी सवेरे जितनी तेज़ होती है, वो शाम आते आते उतनी ही धीमी और मध्यम हो जाती है। लेकिन इन सभी संकेत को एक व्यक्ति सिर्फ तभी देख सकता है अगर उस व्यक्ति की आंखें एक यात्री की हो। तो लीजिए इसी के बीच ये अगला गाना।

युवा साथियों, आज का समय तेज़ी और तकनीक का है, परंतु यही तेज़ी तनाव अपने साथ लेकर आती है। इस बढ़ते तनाव का कारण खोजना बहुत ही आसान है, और वो है कि हम खुद को, हमारी प्रॉब्लम्स को और हमारी सोसाइटी के रूल्स को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। ट्रैवलिंग इसी केंद्रीयता को ख़त्म करता है। यात्रा हमें सीख देता है कि समय और दूरी के बढ़ते बढ़ते समाज की रीत और समाज खुद दोनों बदलने लगते हैं। यात्रा हमारे अंदर बसे उस मैं को ख़त्म करने में एक कारगर हथियार बनती है।

को आसान किया है, परंतु टेक्नोलॉजी के कारण ही ट्रैवलिंग युवाओं के बीच एक दिखावा बनकर भी रह गई है। ट्रैवलिंग आज के समय में सोशल मीडिया के अंदर लाइक्स और रीच बढ़ाने का एक साधन बन गई है, और यही कारण भी है कि एक व्यक्ति ट्रैवलिंग की मदद से ना ही खुद से और ना ही प्रकृति से जुड़ पाता है।

दोस्तों, युवावस्था की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इस उम्र में की गई यात्राएं ज़िंदगी भर याद रहती हैं। दोस्तों के साथ अचानक बना ट्रिप का प्लान, ट्रेन की रातें, सड़क किनारे चाय और अनजान रास्तों पर मिली छोटी खुशियां, ये सब जीवन के सबसे अनमोल हिस्से बन जाते हैं। यात्राएं हमें सिर्फ तस्वीर नहीं देती, बल्कि अनुभव देती हैं, और वही एक व्यक्ति की पूंजी होती है। तो इसी बीच सुनिए ये प्यारा सा गीत।

युवा साथियों, जीवन का सबसे बड़ा सौंदर्य ही यही है कि इसमें खोजने की भूख है। नई जगहें, नए लोग, नई संस्कृतियाँ, ये सब हमें जीवन को अलग नज़रिए से देखना सिखाती हैं। यात्राएं हमें सिखाती हैं कि मंजिल से ज़्यादा ज़रूरी है रास्ते में किया गया प्रयत्न, क्योंकि पहाड़ की ऊंचाई नहीं, उसे चढ़ने का साहस ही इंसान को बड़ा बनाता है।

युवा दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में यात्रा केवल घूमना ही नहीं रही, बल्कि ये मानसिक शांति और खुद को जोड़ने का माध्यम भी बन चुकी है। इसी आशा की डगर के साथ कि आप भी अपनी ज़िंदगी से समय निकालकर ट्रैवलिंग को देंगे और नई जगह देखेंगे, मैं अक्षत आंगिरस आज के युवाणी कार्यक्रम से लेता हूँ इजाज़त। सुनते रहे, मुस्कुराते रहे 103.7 MHz FM शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में 4 बज चुके हैं और एफएम शिमला पर यह समय रहता है फिल्म संगीत का। आगाज करेंगे लुटेरा फिल्म के इस गीत के साथ। इसे गाया है मोनाली ठाकुर ने।

आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप और सुन रहे हैं फिल्म संगीत। फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि गर्मियों में जो है वो अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं। आइए आज बात करते हैं ऐसे खाद्य पदार्थों की जिनका सेवन कर आप जो है वो अपने आप को चुस्त दुरुस्त बना सकते हैं। गर्मी के महीनों में ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अधिक हो, जो शरीर को ठंडक पहुँचाते हों, आवश्यक विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में मौजूद हों। जी हाँ, आप अपने खाने में जो है वो मौसमी फल और सब्जियां शामिल कर सकते हैं ताकि पोषक तत्वों से भरपूर रहें आप। ऐसे ही कुछ एक खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन आनंद आप जो है वो गर्मियों के दौरान ले सकते हैं और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रख सकते हैं। बात की जाए, साधारण दही एक शक्तिशाली प्रोबायोटिक है और पाचन में सहायता करता है। जी हाँ, गर्मियों के समय में दही चावल भी आप मिक्स करके खा सकते हैं और उसका सेवन कर सकते हैं। नारियल पानी की बात की जाए तो कच्चे नारियल का पानी एक स्वादिष्ट प्राकृतिक स्वास्थ्यवर्धक पेय है। ये शरीर में इलेक्ट्रोलाइट स्तर को बढ़ाए रखने के लिए आवश्यक विटामिन और खनिजों से भरपूर है। आप कच्चे नारियल के जो अंदर का जो गुद्दा है उसका भी आनंद ले सकते हैं। आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म का ये गीत सुनिधि चौहान

आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं, आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कि किन खाद्य पदार्थों का सेवन कर आप अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं। गर्मी में छाछ पीने से आपको ठंडक और हाइड्रेट रहने में मदद मिलती है और इससे जो है हीट स्ट्रोक का खतरा

भी कम हो जाता है। आम की बात की जाए तो स्वाद के अलावा आम रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। आयरन और मैग्नीशियम के जो है वो एक बढ़िया सोर्स हैं आम। तरबूज और खीरे की बात की जाए तो दोनों में जो है वो पानी की मात्रा अधिक होती है जो शरीर को ठंडा रखने में मदद करती है। इसे जो है वो आप सलाद या इसका जूस स्मूदी बनाकर भी इसका सेवन कर सकते हैं। ब्लूबेरी और रसबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं। इसका भी जो है आप स्नैक के रूप में या आप स्मूदी के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जी हाँ, बात की जाए नींबू पानी की तो नींबू पानी जो है वो अपने नाम से ही जाना जाता है। जी हाँ, नींबू पानी बहुत ताज़ा कर देता है आपको, बहुत तरोताज़ा रखने में मदद करता है। इसे लोग पीकर अपनी जो है वो प्यास भी बुझा सकते हैं, हाइड्रेट भी रह सकते हैं। तो आप इन खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल ज़रूर करें गर्मी में। आइए अब आपको सुनवाते हैं चश्मे बहादुर फिल्म का ये गीत अली जफ़र और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। नीलेश मिश्रा के बोल हैं और साजिद वाजिद का संगीत।

क्रिश 3 फिल्म के इस गीत के साथ ही आज फिल्म संगीत में बस इतना ही। इसे गाया आरिशा चेनॉय और जुबीन गर्ग ने। आज का ये सफ़र आपने तय किया अपनी रेडियो दोस्त रुचि ठाकुर के साथ। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी फिल्म शिमला के साथ हैं आप। 4:20 होने को हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ और आकाशवाणी एफएम 103.7 मीटर अर्थात ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। प्रस्तुत है हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में आइए सबसे पहले सुनते हैं सिरमौरी कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

तुआ सभी सिरमरी कार्यक्रम सुनने वालों के मेरी राम राम। तुआ लिया सुनी इस समय आकाशवाणी केंद्र शिमला दा सिरमरी कार्यक्रम। हाँ मनीषा, तुआ रिगुली अब बात करूँगी हावन घाटी एक पर्यटक स्थल और बाल श्रम रे बारे दे। इंद्रे साथ साथ में लोकगीत रा भरपूर आनंद लोगे। तो सबसे पहले बात कर दी हावन घाटी एक पर्यटक स्थल रे बारे दे। हावन घाटी एक पर्यटक स्थल है। हावन घाटी हिमाचल प्रदेश रे जिला सिरमौर स्थित एक सुंदर और शांत पर्वत वाले क्षेत्र ओसो। ये घाटी प्राकृतिक सुंदरता, देवदारे जंगलों, सेवरे बगीचे और शांत वातावरण के जाने जाओ। ये जगह भीड़ भाड़ शोर शराबे से दूर के होने के कारण प्रकृति के जाने जाओ सो। हावन घाटी बहुत ज़्यादा सुंदर और शांत वातावरण वाले पर्यटक स्थल ओसो। जो स्थानीय लोग ओसो सीयो घाटी के अपनी भाषा दो हवन घाटी बोल दियो सो। ये घाटी देवदार रे घने जंगल, हरे भरे घास रे मैदान और शांत वातावरण और ट्रैकिंग तथा धार्मिक स्थल के माने जाओ सो। हावन घाटी 6,770 फीट री ऊंचाई गए स्थित ओसो। हावन घाटी रे चारों तरफ से देवदार पाइन ओकरे घने जंगल से घिरी होंदी ओसो। ये घाटी विशेष रूप से अपने विशाल आड़ू नाशपति सेवरे बगीचे के जाने जाओ। इंदेरी वजह से इंदेरे पास राजगढ़ क्षेत्र रू नाव आड़ू घाटी पड़ो। जो प्रकृति से प्रेम कर दी तेनक ए घाटी रे शांत जंगल दो तुओ मोर हिरण भालू इंद्र अलावा कई प्रकार रे पहाड़ी पक्षी देखने के मिटले। प्राकृतिक सुंदरता के ए घाटे सबसे प्रसिद्ध और सुंदर माने जाओ सो। यो घाटी रे चारों तरफ ऊंचे पहाड़, देवदार रे पेड़ पौधे ओसो और ये चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पर्वत से घिरे होंगे सो। ऐसे तो ये शांत और प्रदूषण मुक्त वातावरण दो घूमे फिर सुख दी और मानसिक शांति के बहुत बढ़िया सो। एडवेंचर रे शौकीनों के ये घाटी बहुत ज़्यादा खास ओसो। हावन घाटी से चूड़धार के जो सिरमौरी सबसे ऊंची चोटी माने जाओ सो तथे के ट्रैकिंग रूट जाओ सो। इस घाटी के आसपास कई स्थानीय मंदिर मौजूद ओसो, जैसे काली माँ मंदिर और भूतनाथ देवता मंदिर, जो स्थानीय लोगों के आस्था केंद्र ओसो। यो घाटी दे सेव और आड़ू रे बहुत सुंदर बगीचे ओसो जो देखने के मिटले तू। ए बात कर दी हवन घाटी रे प्रमुख पर्यटक स्थल और कुछ दर्शनीय स्थल रे गतिविधि रे बारे दी। जैसे हवन घाटी से लगभग 10 किलोमीटर दूर छाया गांव ओसो जत श्रीगुरु देवतारा मंदिर ओसो, जो बहुत पुराना और पूजने मंदिर माना जाओ सो। श्रीगुरु देवता इस पुराने क्षेत्र रा मुख्य लोक देवता माना जाओ सो। स्थानीय मंदिर हावन घाटी रे मुख्य केंद्र जो घाटी ओसो तीन देरे पास दे तू काली माता रा मंदिर और भूतनाथ मंदिर मिटले, जो अपने स्थानीय मान्यताओं के और शांति के जाने जाते ओसो। हावन घाटी दी ट्रेकिंग री सुविधा मिटली तू। सबसे पहली बानली धार ट्रैक, ये हावन घाटी से शुरू होने वाला एक आसान 7 किलोमीटर का ट्रैक ओसो, जो बहुत खूबसूरत और घास रे मैदान सा घिरा होता ओसो। ये बहुत सुंदर ओसो देखने के। ए तरह आस पास जायो बहुत बढ़िया लागो और अच्छी ऊर्जा मिटो सोमो। ओ का ट्रैक मिटला चूड़धारा ट्रैक एडवेंचर शौकीन के। एथे शो 15 किलोमीटर रा एक प्रसिद्ध और कठिन ट्रैक चूड़धार चोटिक जाओ ओसो। हावन घाटी व्यवसाय और पर्यटन से दूर की ओसो, तब एथ भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं होती। एथे सेवरे बगीचे मिटले और इंदी तुम आराम से घूम सुख दी

और पहाड़ों के बीच शांति मिटली तू, और ऐसे तुम आराम से फोटो खींच सूख दी। ध्यान और योगा तुम आराम से तो बैसे कर सूख दी ओसो। ए बात जो हावण घाटी ओसो जो तथा यात्री आंदी तेनों ठहरनों के स्थानीय लोगों द्वारा होम स्टे ओसो, जैसे तू पहाड़ी संस्कृति या स्थानीय भोजन रा अनुभव और स्वाद मिटला। हावण घाटी हिमाचल टूरिज्म फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रा एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रो एक फॉरेस्ट रिजॉर्ट हाउस ओसो, जैसे तू ये ऑनलाइन स्थानीय अधिकारी और जो रही हो तू इतके बुकिंग कर सक दी। इंदिरे अलावा एथरे पास राजगढ़ क्षेत्र ओसो, जैसे तू अच्छे रिजॉर्ट और होटल दी जायो, बढ़िया बढ़िया खाना खाई सक दी। हावण घाटी जो स्थानीय लोग ओसो से तो खेती बाड़ी कर दी, बागवानी और पशुपालक गाय निर्भर ओसा। हावण घाटी गर्मी होता है तेरा मौसम से बहुत शड़ा हो सो, जाड़ है तो बहुत ज़्यादा जाड़ हो सो, कई बार तो जाड़े मौसम तो बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ जाओ सो, और जब बरसात रहा टाइम आओ तो यह तो बहुत ज़्यादा हरियाली छाओ सो। ये बात करो मैं हवन घाटी रे बारे दे, एब सुन दिए एक लोकगीत, तीन के बाद चर्चा जारी रोले।

लागी बोलो घूमे गुए ना ये लोग ही सुनो मैं ब्रह्मदत्त जी रा और तेनाली साथी रा ए बात कर दी बाल श्रम रे से कैसे बचाव करें इंदेरे बारे दे। बाल श्रम मतलब जब किसी बच्चे री उम्र 14 सालों से कम हो और तेसी बच्चे नाई काम या मजदूरी कुरान दी तो बाल श्रम हो सो से। 14 साल तोड़ी रे से कम बच्चे नाई जे कोई मजदूरी कराओ तो से गैर कानूनी माने जाओ सो। बाल श्रम बच्चों रा पूरा भविष्य खराब करो। जब कोसी छोटू री तिथरी आयु और क्षमता सा अधिक काम कराया जाओ ऐस नाई छोटू री शिक्षा स्वास्थ्य और बचपन प्रभावित हो सो इंदे को ओमे बाल श्रम बोल दियो सो। 14 सालों से कम छोटू नाई मजदूरी कराने कानूनी अपराध माने जाओ। भारत दी कोई छोटू गरीबी अशिक्षा और मजबूरी रे कारण होटलों ढाबे दुकानों दी कारखाने दी खेचो दी घर रे निर्माण के जो काम कर दियो सो कोई छोटू सो तो सी बाल श्रम कर दियो सो। बाल श्रम केवल सामाजिक समस्या ना थी ए एक आर्थिक और नैतिक समस्या ओसो। छोटू देश का भविष्य हो सो जैसे नारा बचपन मजदूरी दा बितला तो अच्छी शिक्षा और विकास से वंचित रोली। बाल श्रम कानूनी अपराध माना जाओ सरकार इनके बहुत अधिनियम बनाए थे जैसे बाल श्रम अधिनियम 1986 इंदु कानून रहते हैं 14 सालों से कम उम्र रे छोटू के काम करण के रोकना दंडनीय अपराध माने जाओ सो। तेनों सजा रा प्रावधान हो सो जैसे उल्लंघन कर ले तो मालिक के कम से कम चेन से 1 साल तोड़ी री सजा या 10,000 से 20,000 तोड़ी रा जुर्माना या दुन्ने मिट सुख दियो सो। शिक्षा रा अधिकार संविधान रे अनुसार 6 से 14 साल तोड़ी रे छूट मुक्त और अनिवार्य शिक्षा पाणु रा कानूनी अधिकार ओसो। ए बात कर दी बाल शिक्षा श्रम रे प्रकार रे बारे दी। बाल श्रम रे कई प्रकार हों दे ओसो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और भारतीय सर्वेक्षण रे अनुसार बाल श्रम मुख्य रूप सा एनो क्षेत्र दा सबसे ज्यादा देखा जाओ। पहला घरेलू बाल श्रम अमीर और मध्यवर्ग के घरों दी जो छोटू झाड़ू पोछा बर्तन मांजन और खाना बनाने के काम गोए थोई थोंदी जू। दूजा सो खतरनाक उद्योग आ जैसी ईंट भट्ट और पटाखा फैक्ट्री कांच उद्योग कोयले खदानों और रासायनिक कारखानों गए छोटू नाई काम कराना ये बाल श्रम रा मुख्य एक प्रकार हो सो। चीज आसो होटलों और ढाबे दी जिस चाय री दुकान गए होटलों रेस्टोरेंट दी बर्तन धोनी सफाई करने टेबल साफ करने छोटू नाई काम कराना ये बाल मजदूरी रा सबसे ज्यादा देखी जाओ सो। बाल श्रम नाई छोटू रा बहुत ज्यादा नुकसान हो सो। छोटू कुपोषण का शिकार होंदियो सो सांस री कोई बीमारी होंदियो सो। छोटू शिक्षा से दूर होंदी जिंदे नाई से बहुत बड़े हुए हो बाद में तेनो अच्छी शिक्षा मिल दिया थी और हमेशा से बेरोजगार और गरीब री जाल दी फूस दियो सो। ए बात को दी बाल श्रम रुकनु रे उपाय रे बारे दी तुरंत रिपोर्ट करनो चाहिए जे कोसी दुकान होटलो या कारखाने या कोसी रे घरों दी छोटू मजदूरी कर दे दिखियो तो तुरंत चाइल्ड लाइन नंबर का है कॉल करनी चाहिए 1098 का कॉल करनी चाहिए। ये सेवा 24 घंटे थोड़ी फ्री काम करो सो। दूजा पोर्टल गाय शिकायत कर सकती तुम्हें भारत सरकार रे पैनल पोर्टल गाय वे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकती सो। चीज दे शिक्षा रे बच्चा शिक्षा के बढ़ावा देना चाहिए। गरीब और जरूरतमंद बच्चों के सरकारी योजना रे बारे दी जानकारी देनी चाहिए कि सरकारी 6 साल

कि 14 सालों थोड़ी शिक्षा फ्री करते और स्कूल लग जाना चाहिए, तो शिक्षा प्राप्त कर ले से। चौथा, जागरूकता फैलाने चाहिए, अपने आस पास के लोग और दुकानदारों समझाने चाहिए, छोटे रे हाथों के औजार रे जगह किताबों देनी चाहिए, जब तो हो सको छोटू स्कूल लो के भेजनी चाहिए, ताकि से बढ़िया अच्छी शिक्षा प्राप्त कर ली और अपना अच्छा भविष्य बना ली। बाल मजदूरी ना छोटूरी जिंदगी खराब हो, सो छोटूरा भविष्य पूरा खराब हो, सो ओमो छोटू तो अत्यकॉल होने जे का सोई का गलत, तो ओमो इंद के आगे बढ़ना चाहिए रो, तेनारे बारे तो सोचना चाहिए जे का एनार भविष्य सही हो सो, का एनार भविष्य गलत हो सो। तो ये बात करूँ मैं बाल श्रम रे बारे दे। एब सुन दिए एक लोकगीत।

बाल मजदूरी ना छोटूरी जिंदगी खराब हो सो, छोटूरा भविष्य पूरा खराब हो सो। ओमो छोटूरी तो अत्याकोल होने जे का सोई का गलत, तो ओमो इनके आगे बढ़ना चाहिए रो तेनारे बारे तो सोचना चाहिए जे का एनार भविष्य सही हो सो का एनार भविष्य गलत हो सो। तो यही बात करूँ मैं बाल श्रम रे बारे दे। अब सुन दिए एक लोकगीत।

ए लोक गीत सुनाओ मैं दलवीर सिंह धांटा जीरा। अब सुन दीजिए समाचार। हिमाचल प्रदेश दे पंचायती राज संस्थाओं रे पहले चरण रे आज मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है। पहले चरण रे तहत हिमाचल रे 1293 पंचायतों के आज जिसो 7 बजे से मतदान शुरू हुए, जो दोपहरिया 3 बजे तुड़ी चल रहे थे। कुछ पंचायतों दे ए बी में मतदान जारी ओसो। ए ऐसी पंचायतों ओसो जैसे वोट डालने के लाइनों लग रही। पंचायत प्रधान उप प्रधान और वार्ड सदस्यों के ए वोट डाले जाने लगे और वोटरी गिनती के ये भी कुछ समय बाद शुरू होले। ब्योर के तुड़ी के इंदिरा नतीजा घोषित करने की उम्मीद ओसो। इस बार चुनाव प्रक्रिया के निष्पक्ष व पारदर्शिता बनाए थोड़ो के मत पेटियों दी स्कैनर री सुविधा शुरू करते, जो वोट गिन तुड़ी निगरानी के सहायता मिटली और मतदान गणना दी कोई गड़बड़ी न ली और पारदर्शिता बनाए रखने के चुनाव आयोग 100% मतदान केंद्र दे सीसीटीवी कैमरे में लाए तो है। इस बीच आज पंचायत चुनाव रे पहले चरण रे मतदान के लोगों के खास उत्साह देखा गया। पहली बार मतदान के लोगों के खास उत्साह देखा गया। पहली बार मतदान करने वाले नौजवानों से बूढ़े तुड़ी लोकतंत्र रे इस पर्व का उत्साह देखा गया। हमीरपुर जिले री टिकरी मिन्हासा पंचायत रे बोर्ड वार्ड नंबर 1 दे समालो गांव दे 100 सालों रे रेशमो देवी वे वोट डालने मतदान केंद्र दी पहुँचे। अधिकतर क्षेत्रों दी गर्मी रे कारण जिसो रे टाइम ज़्यादा मतदान दे लिए थे लोग, जो भीड़ थी सी सुबह से ज़्यादा जिसो रे टाइम होती और लोग लाइन होती खड़े अपने बारी रा इंतजार को लिया, अपने बारी रा वोट डालने का इंतजार को लिया था। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार जो ईद उल जुहा के अवकाश का बदलाव किया। आज अधिसूचना जारी हुई कि जो 27 बजाय 28 मई के ईद उल जहा गाय सार्वजनिक अवकाश रोला। अब सुन दिए एक लोकगीत।

ई लोक गीत सुनाओ मैं जयप्रकाश शर्मा जी रा। तो अब टाइम होए रा सिरमौरी कार्यक्रम रे समाप्ति रा, तो गिरी मिटी होंगे। तुम सौंप थो अपना ध्यान, गिरी मिटी होंगे अगले शुक्र। मुख देव इजाजत, तुओ सोबी के मेरी राम राम।

जी तो सांझ के 4:50 हुई गए तो सुनो तुसे अपना महासुई कार्यक्रम सभी महासुई कार्यक्रम सुनने वाले है भारती ठाकुरारी नमस्कार। तो जी आज आसा अपने कार्यक्रम दे तुसा साथे गलबात लगानी संयुक्त टबरों रे बारे दे और कुछ गलबात लगानी जलवायु परिवर्तनों रे जो कारण है ते तेरे बारे दे कुछ लोक गीत भी सुनाने खास खास खबर भी सुनानी है। तो सभी तो पहले तुसा खे सुनाऊ है आज की खास खास खबर। तो जी पहली खबर है प्रदेशों दे आज पंचायती राज

संस्थाओं रे पहले चरणों रे लिए जो है मतदान शांतिपूर्ण ढंगों ते जो है संपन्न हुआ। पहले चरणों रे तहत प्रदेशों री 1293 पंचायतों रे लिए प्यागा 7 बजे ते मतदान शुरू हुआ, जो दिनों रे बाद 3 बजे तक चलिया। अगली खबर है, लाहौल स्पीति के जोड़ने वाला लौसर ग्राम्फू चंद्रताल सड़क मार्ग हल्के गड्डिया खातर जो है आवाजाही रे लिए बहाल करीता था। लाहौल स्पीति जिला प्रशासन और सीमा सड़क संगठन और जारी विज्ञप्ति दे बोलिया भई जो चार पहिए वाली हल्की गड्डिया है तीन तई जो है ये मार्ग खोली रखा। तो जी तुसे सुनो पहले एक वे लोकगीत

जी, तो अमरनाथ शर्मा री आवाज़ा दे सुने तुसी लोक गीत। ए भी ऐसा गलबात करनी संयुक्त टबरों रे बारे दे। तो जी, संयुक्त टबर ओ क्या, सभी ते पहले तो ये भी पता होना चाहिए हो। देखो जी, एक ही करो पितरे, एक ही छता इठे, दादा दादी, चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन, सब मिली जुली के कट्ठे रहो, तो तेसके बोलो संयुक्त टब्बर। मतलब एक ही चूल्हा, सभी एक ही चूल्हे पांदे रोटी बनाओ, कट्ठे मिली के खाओ, एक ही कमरे, मतलब एक ही घरों दे रहो, तो ये संयुक्त टब्बर इतने खे बोला जावा। अच्छा, संयुक्त टब्बरों री जो है बड़ी खासियत हो गया, जड़ा जे मतलब जो कई बार ऐसे एक टब्बरों दे रहूँ तो एड़ा हो भी बांडी जावा, जेड़ा कोई खर्चा पानी करना तो से कई माणु है कमाने आया तो सभी बीचे बांडी जावा। जेड़े कि मतलब एक ही गैस होनी है ना, एक ही बिजली है रा बिल लाउना, और दूध सब्जी जो भी होनी से थोको दे आउनी, और जब सामान कोई ऐसे थोको दे कट्ठा सामान लगू है तो से केड़ा हुआ सस्ता पड़वा है ना। और बेचारी भाई मौज रोई, क्योंकि बुजुर्ग घरे होने, दादा दादी घरे होने, तो तिना दादा दादी के साथ रहना, संस्कार सीखने, तिना ते अपनियाँ संस्कृतियाँ दिया कविता कहानियाँ सुननियाँ है ना। और दादे जो है तिना के बड़े अच्छे अच्छे अपने टाइम रिया गल्ला बातें सुनानियाँ, और जड़े चचेरे भाई बहन उन्हें साथे तिना साथे बच्चा मिली जुली के खेलना है ना। केलापन बच्चे जान देनी टबरों बिच्चे, कल्लापन लगना ही नहीं, क्योंकि इतने माणु है कोई ना कोई तो साथ रहना ही है। और जड़े माता पिता हो तो कामों पांदे जे चली भी जाओ तो घरों दे कोई ना कोई घर संभालने वाला रो ही आया। तो जड़े कोई मुसीबत ही पड़ी जाओ तो मुसीबतों दे क्या हुआ भाई, मान लो किसी री तबीयत ही खराब हुईगी है ना, किसी रा मान लो ब्याह आए, और कहती कोई लड़ाई झगड़ा ही हुई जाओ, कुछ भी हुई जाओ, तो एकदम 10 माणु इकट्ठे हो जाओ है ना, कैसी के बोलने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, आई जाओ एड़ा होगा कि तेड़ा होगा। तो काम हो रहा जो है झगड़दा नहीं है, काम कुछ करना हो टबरों बिचे, मरीज जरा बीमार होगा कोई घर तो अपने टबर बथेरा आओ भी, आधे घर संभालो, आधे हॉस्पिटल चली जाओ अपने मतलब मरीजों के लेके, और अपने जो भी काम है तेस पूरा निपटाओ है ना। तो एड़ा हुआ भाई, मतलब मुसीबतों दे भी साथ रोआ बड़े संयुक्त टबरों दे। और समस्या क्या आई भाई, जड़े एकांतोरी कमी हो जाओ, कई बार एड़ा हुआ समस्या भी हुई, अब इकट्ठा टबर होना तो बोलो है ना भाई, जे फायदा है तो नुकसान भी है। अच्छा, नुकसान क्या है भाई, जड़े जो माणु कल्ला रहना चाहो कई बार ना, जड़ा अजकल है देखो, अजकल केड़ा समा बनेगा था, कितना शोरगुल है ना, माणु सोचा भी कि कल्ले दे रहेंदे है ना, तो तेते ते क्या हुआ बड़े टबरों बिच्चे एकांतोरी थोड़ी जी कमी महसूस हुई। माणु सोचा भी चल अपना कमरा होंदा, अपनी मर्जी ते रहेंदे, अपनी मर्जी ते टीवी चलांदे, अपनी मर्जी ते मतलब अपना हिसाब रख दे, तो ते तेरी थोड़ी कमियां हुई, क्योंकि बड़े टबरों बिच्चे जब रहना तो ऐसा के बुजुर्गारी हिसाबे चलना पड़ना, बुजुर्गारी सुननी पड़नी, जियां से वो बोलो तियां करना पड़ना है ना। और जड़ा कि थी कई बार लड़ाई झगड़े होने की संभावना भी बढ़ी जाओगी, जड़े भाई सासा बहू है तो अजकल कितना क्या क्या नहीं सुनने लगी रहा पढ़ने है ना, कि क्या क्या नहीं लगी रहा उन्हें, पाइए पाइए बिच्चे भी कई बार लड़ाई झगड़े हो जाओ भाई, ते भे कहीं कुछ हो है ना, जेती दो भांडे होने तो भांडे आवाज़ा तो होनी ही है ना। तो कई बार जड़े कोई कहते गलारे बारे दे कोई निर्णय फैसला लेना हो तो तेते के भी लेट हो जाओ है, हर गल्ला के सबीरी आशा के राय लेनी पड़ो। कोई भी काम करना, मान लो माँ कोई काम करना, तो मेरे घर जब मेरे बुजुर्ग बैठे दे तो माँ काम से अपनी मर्जी नहीं करना, पहले माँ से बुजुर्ग पूछना है, पहले माँ अपने सासू सहरे पूछना है कि एड़ा काम करना था माँ, आऊँ कर लूँ, जे तेती मेरे सासू सहरे साथे मेरे जेठ जेठानी भी रहो,

और भी कोई मारे बुजुर्ग रो चाचू ताए कुछ भी रो तो तीन के ब्यासा पूछना पड़ना भाई एड़ा जैसा काम करना था। मान लो माँ घर ही पाना या मैं चार कमरे ही पाने तो पहले पूरे टबरोरी राय मशूरा ले के ते ब्यासे दे इस काम के करी सकूँ है। ए भी तो खैर माणू शहरों ते चली गए दे अपने बाल बच्चे पढ़ाने नौकरियां लगी दे करने तो एकल टब्बर है कल्ले कल्ले रो है ना शहर दे कल्ले रहना कल्ले खानियां कल्ले पीना ए भी से गल रही नहीं आ। तो अच्छा संस्कार बिना पैसे मिल जावे जब ऐसे बड़े टबरों बिच रहूँ हैं तो क्या दादा दादी यारा मतलब आशा खे जो बच्चे मारे तीना खे जो कहानियाँ सुनांदे रहो रामायण रिया महाभारत रिया आशा साथे क्या क्या भी जो मारे चलो गीत भजन ही बच्चे खे सुनांदे सुनांदे गाया करो है तो ते साथे बच्चे रे पितरे संस्कार पढ़ो है ना। और तीज त्यौहार मनांदे रहो पूरा पूरा टब्बर एडा इकट्ठा होना तो तेड़े तेड़े पकवान भी बनने तीज त्यौहार मनाना मिली जुली के भजन कीर्तन करना नाच गाना करना तो बड़ेरी इज्जत करना ये सब घरों पितरे सीखो है भी चीज बांडी के खानी मतलब आ मेरा मेरा नहीं करना जो भी लड़ा से मिली बांडी के खाना तो ये सब टबरों बिचे माणू सीखी सको आ। जे माणू कल्ला रहो जे माणू एक कल टबरों दे रहो तो ते ते ते ये सब माणू नहीं सीख सकता। दूजी गल सुरक्षित रहो माणू घरों दे हमेशा कोई ना कोई रोआ तो चोरी चकारी का कोई खतरा नहीं रहता कोई डर नहीं रहता बच्चा खे कल्ले छड़ने री आशा खे कोई परेशानी नहीं रहती क्योंकि कई बार जो मारे माए बाओ से वो कमाने चली जाओ बारे है ना मान लो छोटे बच्चे तिनारे माता पिता बारे कमाने चली गए तो फिर जब मारे घरे बुजुर्ग है दादा दादी है तो चाहे नाना नानी है जो भी है तो तीना बच्चे संभाल लें तो आशा के बच्चा भी कोई परेशानी नहीं होनी कि कोई थी बच्चे की रूढ़ी पड़ी जाओ या बच्चा के भूख लगो तो किन्ने रोटी देनी तो तेड़े आशे बच्चे सुरक्षित रहो है ना। और मुश्किल जे टाइम समय हुई जाओ तो ते तेरा भी जुगाड़ हो जावा अस्पतालों दे जाना है ना और किसी का मुँह नहीं ताकना पड़ता तो जब अपने टबरों दे माणू हो तो आशा तीना के बोलना भाई एड़ी गल हुई गई तो ए चलो तो किसी आशा के पड़ोसी का मुँह नहीं देखना पड़ना किसी रिश्तेदार का मुँह नहीं देखना पड़ना पर ये सब कुछ तेबे सफल हुई सकुआ जेबे बुजुर्ग सभी के मिली जुली के रहना दसो संस्कार अच्छे दो लड़ाई झगड़ा मतलब एड़ी चीज़ा टबरों दे नहीं होनी चाहिए हो। और मर्द जवान से जो है मिली जुली के काम करो एड़ा नहीं होना चाहिए बड़े टबरों दे कि भाई जे 10 माणु है टबरों बिच्चे वो कल्ली जवान सी आई बाकी सारे मर्द पाओ ही आए वो कल्ली जवान से लगी रहो पूरे टबरों के रोटियां बनाने है ना और भाई पाऊआ तो कोई काम नहीं कराना तो बड़े टबरों दे एड़ा कोई से नहीं होना चाहिए हो माठा है चाहे बेटी है सब मिली जुली के काम करो मर्द है चाहे जवान से सब मिली जुली के रोटियां बनाओ मिली जुली के काम बांटो है ना एड़ा ने भी जवान सारे मुंडे काम पाए रखा तो मर्द भी बराबरी का काम करो और करो है ऐसे तो देख ही रखा है गाँव दे ना तो अजकल जो डोरू वाला काम पड़ी रहा तो छुट्टियां लेके आई जाओ है मर्द नौकरियां करो यहीं पर छुट्टियां लेके आई जाओ है तो वे ना मतलब प्यागा 5 बजे उठी के मर्द जो सा मिली के जो है पहले रोटियां बनानियां है ना टुकड़ा अपने जो भी खाना टुकड़ा आते तो बाद सब धूप लगने ते पहले पहले से डोरू जाए कि तिना अपने फसल कटने का काम करना और धूप तपदे ही से वो अपने घर आई जाने ते फिर दिने रोटियां बनाइया खाइया मिली जुली के मतलब गाँव दे ज़्यादातर एड़ा हुआ कि मर्द सारा काम बराबरी रहा करो जवान सा साथे तीन आखे एड़ा कोई लेना देना नहीं कि आऊँ नौकरी तक कमाई के आया माँ घरें नहीं करना तो बड़ा अच्छा हो अब एड़ा नहीं आऊँ एड़ा नहीं बोलते भी शहरों दे नहीं होंगे शहर दे भी बड़े अच्छे माणू हैं बड़े अच्छे मिली जुली के रो है और मिली बांडी के काम करो है जवान से मर्द मिली जुली के काम करो है पर कैथी कैथी मैं देखी रखा भाई कैथी कैथी एड़ा हुआ भाई मर्द चाहे मतलब से कमाओ भी नहीं पर पूरा दिन चाहे दिन फोन ही चलाना और जवान सा लगी दिया करने टब्बर बच्चे भी लगी दिया पालने है ना वो घरों रे काम भी लग रिया करने ढोरों रे काम भी लग रिया करने कैथी कदूरती हो एड़ा बाकी इं ज़्यादातर मिली जुली के ही काम करो और करना भी चाहिए हूँ बोलूँ ते भी तो टब्बर और इकट्ठे रहने का फायदा है तो फायदा क्या हो जे टब्बर होने के बावजूद भी जे कल ही कमाना पड़ो जान सा जे कल ही रहना पड़ो और कल ही सारी जिम्मेवारियां संभाल ले पड़ो जान सा के तो उसे अच्छी गल नहीं होंगी क्योंकि बड़ी भारी जिम्मेवारियां हो गई बोलने के तो भी जान से घरे रोई तो तेसा काम ही क्या है पता लगो आज भी घरे रहना भी क्या काम हो क्या नहीं होंगे और जान सा तो नौकरी भी करो ही ते तो बाद भी तीन आके घरे जाए कि सारा काम करना पड़ो आ तो मिली जुली के काम करना संयुक्त टबरों का बड़ा भारी फायदा रहो आ। तो सुनो तुसे एक लोकगीत।

जी तो जयश्री शर्मा और चंपा शर्मा अरे गाय दे लोगी तो साथे चलने रा वक्त लगी रहा उन्हें महास्वी कार्यक्रम और प्रस्तुत करता थे दीपक कुमार सभी के भारती ठाकुरारी राम राम।

महाशवी कार्यक्रम अभी आपने सुना, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। प्रस्तुत है स्पीति कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

ता इलुन्यंपो के गब लातन थेरिंग के लेरिम निपा दे तने दुक्षन रंगरिक रेवा के कोल अशना हिन तने रंगरिक पिटी युल तोले नेलो तने ngal युल छेशो जी किंदो सिया तने वती फिल तने रंगरिक ला रिरिक कर्म पांडा सिया सिया तने रिरिक ला तने रंगरिक ला तने रिरिक सिया सिया तने रिरिक ची फिल सिया पास ना तने रि सन ठाग चे रिक सन तने मिरिक मांगबो देखा ना सिया सिया वती फिल रंगरिक युल मिलर तने रिरिक सिया सिया तने युल तोले भी तने रंग रंग से युल की तने शून डारे छे तने होते ने लो तंडा डारे रंग होते के योगासिया होते नांगजीन उजी पिती ना तने शून मिनांग योगासिया जो अंगल उजी रिपिती रु चून देखन छे यंग वागी इवी मेमे गेशे पेन रंग होते सुबा मिनांग योगासिया तने जो तक्षण की तुई ले यंग केल रो ना छे तें यंग दांग थरिंग की टू गया छे जंदा गया रा हलमे यंग गुई में ता छे गुई में ता लून रेन रा दूसरे योगासिया तने वाते ने लो तने शून चिचिक तने दुक्षण रंगरिक से वा वाई दूसरा तने थरिंग वो दुक्षण रंगरिक से वा की कॉल शना इन तने ngal riri yul tu tene ani sering do ma se yogasia tene khong chukun senelo tene chomo chani yogasia tene ting la tene khong chomo chaji ga ba tene khong garja phawa jal du pugen indusia tene garja phawa jal jilo log chi yong sene tene khong lam ju dong al se wasia sene wader khong la minglam minang ma de zangbo ji mi wasia tene minglam no khong la tene yan lam sa chi mo ji khong ne thung si du du se khong minglam mi wen indusia ting la tene khong phawa ne log chi yong ji ga ba tene khong la tu khang sa se tene ting la yuli mi ge ha kho che ani chomo ji lu tu du se ha kho chi lo tene khong la yul ne lo ton da sia tene khong riri yul ne tene rong thong ki ta la tene phu ji ga se tene wateru de ga yin du sia tene wateru ote phu ru tene dagsang ote phu la min sum yo ga se tene dukchen rangrik re ba phu che tene yang mi ge yin ama chomo phu sia sia tene khong ki nam thal la tene shigyu ri phu si du sia tene yang mi ge la shigyu ri phu si ju gyu me ga sia tene nam thal la tene ama chomo phu mi la shigyu ri phu si du sia tene khong chugun jin lu minang ma ti go po che tene shuk chen mo yo ga sia tene khong chukun sene yuli riri ki yuli tu gi nyambo thapa minang siya siya tene khong izam shuk che mo yoga siya sene tene khong amo chomo phu chukun duk se tene khong ri lapi zu sumgo nero tene phu la yela takan yin du siya tene taksang yang wage phu odegi jaldo phu song tene khong gi zu ki je che kangbi je rang odegi tene taksang an jalna yoga siya tene khong izam khewa wa yoga si ki khong khong ri lakpi ki zu ne ro tene chodden chemu chi chi ki nang du tene chodden ge dan ge ran ge wa zeben yin du si ya tene gote wa tan taksan jal

Ta ilu nyampu ke gabla ten tiring ke khas lon daring e nai hin. Tene le Ladakh la last year rajdhani Delhi wi nyampu jode zon gelkhap ki tene ringshaw bus route la Himachal ke HRTC Delhi Kelang le la le le la doin bus tiring ne logo sukasya regional manager Kelong wi Anshit Sharma sena gubgyo gubchu kilometer ringbo route yokon local mi ge chete khor tu yongon chigel gi philamina mati demo yokasia i bus lawol spiti ki khorsa jaga jaspa che tharcha che barala cha che tene sarchu shujilo le la dasia lawol spiti la tu chukan losal grampur chandartar lamta gadi yangmo yokon gi philape pasia lawol spiti ki zila prashasan che sima sadak sangathan ki jari zepen issue la taksang ilam 4x4 yokon gali gelamani pe mekasya lam pura tayar puchi gabla tene shama gachin da dechilo tene gali jema gi pila pyasya zila prashasan se ne yela mala doin gela prashasan ki khane lo jari zepin advisory gela palin choro jisya tene ngem bola manali le ki jung du tene muling pul du nganma bus khalen yong lam tik de kan batasang pe pasya प्रशासन स्कूल शिक्षा बोर्ड जमा ठुपा ने चुंगी रूपा कक्षा की पाठ्यक्रम की न्यूबोल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाचु पासिया तेने दांग धर्मशाला रू बोर्ड की सचिव विशाल शर्मा सेना लोपटू गेला दांग थ्रिंग आधुनिक टेक्निक चेचलो डिजिटल लोपजुंग की न्यूबो डेलवा चुना व मिना मत खाच मो युगासिया तेने वोटी पिल खोंबे गेले व पेतेसिया खोंग सेने ताक्सन योंगन की ट्वीले तेने AI की लोपजुंग मिना मत खाच मो युगासिया तेने वोटी पिल स्कूल शिक्षा बोर्ड AI ले स्कूल की पाठ्यक्रम की न्यूबो शामिल जोना की फिला डिसाइड चुविंसिया तेने इक गपला अनिदिकी डोमा की लुन्यबो शिंगे नाइन

स्पीति कार्यक्रम अभी आपने आकाशवाणी के शिमला केंद्र से सुना। आइए सुनते हैं लोकगीत। लोकगीत में आइए सबसे पहले सुनते हैं भुवनेश कुमार की आवाज़ में गाया ये लोकगीत।

0: बिमला देवी की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोकगीत। इसी के साथ लोकगीत अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुरा धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पहले चरण के तहत आज प्रदेश की 1293 पंचायतों और जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिए सुबह 7 बजे से दोपहर बाद 3 बजे तक मतदान हुआ। मतदान संपन्न होने के बाद पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है और कई स्थानों पर नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। इस बार निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए मत पेटियों में स्कैनर की सुविधा शुरू की है। मतगणना में कोई भी गड़बड़ी रोकने और इसमें पारदर्शिता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग ने 100% मतदान केंद्रों को CCTV कैमरों से जोड़ा है। इस बीच आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लेकर उम्र दराज मतदाताओं तक ने लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बिलासपुर जिला की घुमारवीं विकास खंड की सेऊ ग्राम पंचायत के पिंक बूथ पर प्रदेश की सबसे उम्र दराज मतदाता 113 वर्षीय मंगलू देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी तरह शिमला जिला की ननखड़ी तहसील की ग्राम पंचायत खमाड़ी के करौली गाँव की 100 वर्षीय रामपति और हमीरपुर जिला की टिक्करी मिनहासा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में समलोक

0: गांव की 100 वर्षीय रेशमो देवी भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। अधिकांश मतदान केंद्रों पर गर्मी के चलते सुबह के वक्त मतदाताओं की जोरदार भीड़ उमड़ी और लोग कतारों में खड़े होकर मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कई ग्राम पंचायतों में मतदान की समय सीमा खत्म होने के बाद भी मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। इस बीच कुल्लू ज़िला में 80% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। ज़िला के नग्गर विकास खंड में 85.18% और आनी विकास खंड में 82% मतदाताओं ने वोट डाले। सिरमौर ज़िला में 75.52% जबकि सोलन ज़िला में लगभग 75% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऊना ज़िला में 76.28% और बिलासपुर ज़िला में 75.61% मतदान हुआ। बिलासपुर जिला के झंडुता उपमंडल की भड़ोली कलां पंचायत के वार्ड नंबर 1 भड़ोली खुर्द के ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया। आज हुए पंचायत चुनावों में महिलाओं ने भारी संख्या में मतदान किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीद पर बागवानों को भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की संभावनाएं तलाशी जाएं। मुख्यमंत्री शिमला में बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा भुगतान प्रणाली में बागवानों को मंडी मध्यस्थता योजना के तहत की गई खरीद पर नकद राशि के स्थान पर विभाग द्वारा अन्य सामग्री प्रदान कर भुगतान किया जाता है। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से छोटे और सीमांत सेब उत्पादकों की आर्थिकी में सुधार होगा। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने वन विभाग से बांध प्रभावित क्षेत्र में निष्पक्ष तरीके से पेड़ों की गिनती करवाने की मांग की है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर ने आज नाहन में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि यदि इस कार्य में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो समिति मामले को न्यायालय में ले जाएगी। समिति ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने और प्रभावित लोगों की आवाज बुलंद करने की मांग की है ताकि विस्थापितों को न्याय मिल सके।
1: जब वो काउंटिंग वहाँ पे कर रहे थे, वो वहाँ पे काउंटिंग कर रहे थे जहाँ पे पेड़ कम थे। उसका मतलब ये हुआ कि वो एक रिपोर्ट बना चाहते हैं कि जिसमें कम से कम पेड़ आए। तो विस्थापित जो हमारे भाई लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है जो भी कार्य हो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। उन्होंने जो उतना बड़ा पहाड़ बिना किसी परमिशन के काटा है, वहाँ जो जेसीबी लगी है, ना तो उसके ऊपर कोई FIR हुई है। और मैं जो सिरमौर के अंदर जो हमारे प्रभावशाली नेता है, मेरा इन सभी नेताओं से भी एक निवेदन है कि इसमें आप जो है थोड़ा अपना भी भागीदारी जरूर रखें ताकि विस्थापित भाइयों को जो है कम से कम जो है उनका जो एक हक है वो मिल सके।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगले उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और आकाशवाणी FM 103.7 MHz पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आइए अब सुनते हैं कांगड़ी कार्यक्रम। हमारे कार्यक्रम मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।

आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। देखा टाइम होया है 6:06, कने समा है कांगड़ी कार्यक्रम का। कांगड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोत्यायों दीपिका दी राम राम। श्रोत्यो दिखा तो उनकी बड़ी तपी हो अजकल, तो ऐसी मौसम तपदी तो आँदी अच जड़ा है उम्मीद करते हैं कि अहाँ जड़े अहाँ के श्रोता हैं से सारे राजीवाजी होंगे, सेहत तिना की खरी होंगी, कने सुख शांति होंगे। तो दिखा बड़ी भारी तौंदी जी है पवा दी है, कने इस मौसम जड़ा है से अहाँ सारे जो ही बड़ा खास ख्याल रखने की जरूरत होंगी है, क्योंकि दिखा बाहर तो सारे निकलना ही पौंदा है, कम काज करना है, नौकरी पेशा लोग तिना चो भी जाना पौंदा है, स्कूल कॉलेज।

जुले नमस्ते गीस तंजन आंगमो इनी हिंची पत साई दो आकाशवाणी शिमला ची थे गर्जे पई प्रोग्राम दो होश में आदर नांगयंपो स्वागत लिखत थन हिंग जी हिर ऐसे विषय यार तो चर्चा लिखते जो इरी युल गी युवा छाई टवर छाई नांग समाज की मीच छाई यंपो जुड़ाई के येश थजु फ्यस बढ़ती बेरोजगारी और युवाओं की भूमिका हैश थे फ्यस खा भूठे हैश लो नांग इरी युल रो लिन लिखचुम गी छुई अवसर गी बोंठे नंग युल गी बेते जी युवा जी बोंठे ऐश युवा लो नंग बेते शर्बा नचुंग मजी ताल जी इरी युल गी छाई बसल तेजी ताकत हेंचो हिना लुची इंचो कि सुई युल गी युवा जी मजबूत नंग जागरूक ते येश थजु युल गी रमिन सु टाइम एपो नंग उज्ज्वल की अमेश इरी भारत युल जम्बुलिंग गी छाई बसल तेजी युवा युल हेश इरी युल रो करोड़ों युवा ते येश सुई कचांग ऊर्जा

अपना नंखमोटी तेजी लेन लिख चुंगी जज्बा तेज। लेकिन थन एरी कचांग होश में तेजी चुनौती तिनीश, थजु चुनौती खा हेज लो नंग बेरोजगारी। थन लोकचा खूम जी खो चिरे एरी बेते जो नचुंग म शरबा जोरो युवा जो लेन खुक्षा होशित मई कई कईश, कई नांग खुक्षुम मई कईश। सुसुजी नौकरी की बोंठे सालो साल तैयारी लिख चीन छो। सुसुजो राय रुचि ते चु लेन खुक्षुम मई हेश, राय थस रही चु लेन खुक्षुम मई दरुंग। सुजी अवसर तिक मखुक्ष नंग निराश के थे चुश। थन हिंग जी थे बेरोजगारी नोई बसल नोई खरो के येश, दरुंग थे रोकची समाज की मी जो खना असर के येश। नांग छाए बसल ग्यून शिफ्यस थे समस्या रो एरी युवाई खा भूमिका नीयश, थे छाए की बोंठे फेंके। छाए बसल दूरे बेरोजगारी खा हेज लो नंग, लोई शब्द रो लो नंग सु मी जी खर लेन तिलिक।

rokchi samaj gi mi jo khana asar ki yej nang chai basil gyun shi phes the samasya ro eri yuwai kha bhumika ni yej the chai gi bun the phyake chai basil dure berozgari kha hej lo nang loi shabd lo nang su mi ji kha len ti likcha thup chi ni ya len likchum gi thas ni pathe chai kho chi re ta ju len khukshum mai ki yej थे स्थिति रो बेरोजगारी लोचुश क्युक्ची क्युक्ची लेस लेक्स जी या तेजी तेजी युल क्या नंग लोकची क्या नंग तकनीकी शिक्षा तेई पजी क्या नंग गुई क्या नंग थे बेरोजगारी छाई जगत छेर गी फैस की बेरोजगारी नोई बढ़ाई क्या मेन गी मुख्य कारण खा हेज लो नंग जनसंख्या नोई बसल नोई के येश एरी भारत युल गी आबादी यू न ग्योकपा ग्योकपा बढ़ाई के येश लोजुंग लाखों युवा जी नौकरी की लेन की तलाश रो एलमेन छो तेजी तेजी युल रो एलमेन छो ओ थजु खो चिरे ताल जो लेन छोलचा नंग खुक्षा होशित में कई कीश पेचा लोकचा नंग असल रो लिखचा स्किल की बला कुंग तेजी अंतर नीश थनसुंग रे कई जगह रो शिक्षा सिर्फ डिग्री बोंठे लोकची एन छो बेतेजी दत्पंग डिग्री ती केस दिग्युन शीश पास केरी केस दिग्युन शीश थे ना चक्षिन छो व युवा जी कचंग डिग्री की शुगु केस दीते येश व खोची नौकरी बगतंग तेजी कंपनी रोखा प्रकार के कौशल गुन शी के नंग थजु मई के जी लेन मखुक्षिन छो थे रोकची हिंग जो थे हा गुशा हेश कि पेचा केस दी लोकची लो नंग खर खुक्षुमेश बल्कि मी जो राई स्किल प्रैक्टिकल लेन लिखचा ररे गुनशीज थनगी थनगी बक्तंग पेचाई ज्ञान नंग प्रैक्टिकल ज्ञान गी बला कुंग होशित में तेजी अंतर के येश ग्रामीण जगह रो नोई अवसर गी कोनी तेयेश क्युक्ची क्युक्ची लेक्स जो उद्योग नंग रोजगार गी अवसर छुई तेयेन छो वनु नंग युवा जी राई क्यूम राई लेक्स बुझ जी शहर की तरफ लेन रोजगार की बुंठे रही है छो पर थे शहर जो रो रेछाई दो लेन खुक्षा बार दो तिलेनेश नुमांग नोई मी के जी लो लो खुक्षा नामुमकिन ठोपा के लिश सरकारी नंग निजी क्षेत्र जो रो छुई अवसर तेज छाई बसल बार दो तर सरकारी लेन की खुक्षाश सरकारी लेन की संख्या रे सीमित रमेश व थजू लेन की बोंठे कंपटीशन नोई 20,000 सीट की बोंठे लाखों लाखों मीज इम्तिहान दे चीन छो दरुंग निजी लेन रो रे लेन खुक्षा लोई मेश एपो अनुभव ते पर जो लेन खुक्षा चो न लोई के ईश थे ना तो था लोई मेश बेरोजगारी की समाज की अर तो खा असर के ईश थजू बोंठे फेंके छाई बसल दूरे तब बेते युवा जी सेम दो निराश नंग छेर रज थिचुश राय यार तो विश्वास छुई के थिचुम आत्मविश्वास छुई के थिचुम टबर जो रो लेन मखुक्षी ताल जो बोझ ठोपा के थिचुम नंग ताल जीरे टेंशन थिन चैन छो खची बार एपो चु तो न चु अमची बुझी गलत लेन नंग गलत अमची रो एलमेन गी गियर तेयेश समाज रो असंतोष नंग असुरक्षा की भावना रे फैलाई के मेश जब युल की युवा से नाना नीज व युल की तरक्की रो रे असर के येश थन थे तुस दो छाई बसल तेजी नंग गुनशी फैस युवा जी थे छाई की बोंठे खा भूमिका हेश हिंग छाई दो थे हा गुशे गुनशी येश की सरकार नंग व्यवस्था रुकेश दी दोष दे जी थे समस्या की हल वांग्समेश युवा जो रो रे थे लिखशी चु टाइम रो नंग यंपो इंजी रो तैयार लिखच गुन शीश कौशल विकास यर तो नोई ध्यान दच गुन शीश थन गी वक्ता डिग्री शुगु केस दी काफी मेश पेचे ज्ञान केस दी काफी मेश नुई नुई तकनीक कंप्यूटर डिजिटल स्किल नंग बंती बंती फेस की ज्ञान नंग होश मई अनुभव ररे गुन शीश बेते जो नुई नुई लेन लेचा ऑनलाइन कोर्स थिंचा नंग राई यर तो राई एपोई बुंठे तरक्की लिखचा बुंठे लेन लिखचा थे छाई चा अन्ना लेचा गुनशीज सब रोजगार।

दुबड़ा हुआ धनी छाई हुआ जी लक्ष्य सरकारी लेन थिंचा के जिग्यू शिमिश थन्नुई नुई स्टार्टअप ऑनलाइन बिजनेस रिदांग लेन लिखचा पर्यटन ला लेन फ्रीलांसिंग थे छाई चोकसे बंती बंती अवसर तेयेश लेन दोक्युक्सी तेजी ते में मेंशो शुरू लिखचा ग्यूनशीश सुजी राय बोंठे रोजगार शुरू लिशीश ताजी हितिक शोरे रोजगार दचियन शो आत्मनिर्भर कैरी गुनशीश थनगी समस्या थनगी समेरो आत्मनिर्भर क्या मेंगी हेश अगर युवा जोरो राय हुनर नंग मेहनत यार तो भरोसा ता नंग खर कई लेन ती क्या नंग लिखचा ठुपचियन शो थन कई नोई बसल नोई युवा जी सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग यूट्यूब ऐप डेवलपमेंट नंग युक्ति छोंग शुरू लिखी इंचो थे साई लेन लीजी सफल भी के इंचो दरुंग राई मिजिस एपो लिखचा गुंशीश बेरोजगारी भक्तांग हिंग जो एपो नंग थिप न किया जी लेन लिखचा गुंशीश असफलता जी निराश किया रे बुजी थजोक जी लब्जा थिंचा गुंशीश युवा जो चाना मेहनत लिखचा गुंशीश थे बेरोजगारी की समस्या की समाधान युवा जो के जीवन चुंगी जिम्मेवारी में बल्कि सरकार नंग समाज जो यम पो लिखचुंगीश रोजगार की नुई नुई अवसर वंचुज कौशल विकास की बोंटे प्रोग्राम लिखचुज क्योंकि लेन जो रोरे प्रोत्साहन लिखचुज जब सरकार समाज नंग युवा जी यम पो लेन लिखचुज वनवा एरी युलगी स्थिति एपो क्यमेश चा न बेरोजगारी बढ़ाई करे होश में छेरगी फैसेश पर थे समाधान वंच नामुमकिन मेश दक्षम फेई चु फैस जी लब्ज जी हिंसाएं दोहित बुच नंग थजु बोंठे लेन लिखच होश में गुनशीश दसुकताज की ललती हिंकते तिंदा शिशु।

कुंठे यतो रेयेश। ऑनलाइन बैंक डिजिटल भुगतान नंगमी जी सेवा रो थे एआई की इस्तेमाल लिख चीन छो। मोबाइल रो रे एरी थस रई चू वीडियो लल जी यू न रेयेश थजू रो रे एआई जी लिख चीश। एआई की ख ख फायदा नी एज लो नंग लेन सा यूज तिको नंग लोई यम पुकेश। एआई जी खची सेकेंड रो लेन लिखते चीश ख लेन ती गोर ची केश थजू लेन द एआई जी यतोई चू न टाइम रो रे क्या थी चीश। ऑनलाइन की सुविधा खुशी लेन साई क्यों माग ची डूब चीश थे एआई जी समय की बचत रे लिख शीश। एआई जी विज्ञान मनखांग नंग तकनीक की क्षेत्र रो रे नुई नुई खोज लिख चीश। पर थे नुई नुई तकनीक जो फायदा रे नीश नंग खची नुकसान रे तेयेश। खची लेन ती दुरे मी जी लिख ची एंशो द एआई रजी खोची एआई मशीन जी लिख चीश। थे ना खची क्षेत्र जो रो मी जो रोजगार रो असर केयेश खची लेन मई केयेश। एआई रुक ची नकली वीडियो फोटो नांग किसका समाचार रे लिख चुप चीश। उन्हों नांग फोन द खती रहती नांग थजू रो यू न विश्वास लिख चुमेश। अगर मी छाई लेन लिख लेखचा एआई के जी निर्भर के थी नंग वराई मीजा सोचा लिखचुंगी क्षमता खूब जेल थी चुश। एआई सिस्टम जी होशित में डेटा इस्तेमाल लिखचीश थे डेटा छाई एआई का चांगते येश थे गलत इस्तेमाल ली नंग मीजी निजी जानकारी रोरे खतरा ते येश। थे छाई रोकची थनगी युवा जोरो थे समस्या की गियर जी मई थे एआई रोखना एपोई बोन थे कोलचूज थजू छटक्यून शीश। एआई मी जी एपोई बोन थे कई नंग बार दो रही चुलेन लोई लिखचा बोन थे ऋषिश। एरी भारत युल रो एआई की क्षेत्र रो दूरे बढ़ाई क्यार मुदरसांग मनखांग रिदांग नंग सरकारी लेन गी बोन थे एआई की इस्तेमाल लिख चीन छो। अगर एआई एरी एपोई बोंठे इस्तेमाल ली नंग थे एरी भारत युल की विकास की बोंठे छाई बसल तेजी भूमिका तेयेश। थन कृत्रिम बुद्धिमता छाई बसल तेजी सच्चाई तीयेश थे एरी मीचे रो लिख शीश नंग रमेन सु टाइम रो थे प्रवाह नोई बसल नोई क्यमेश। हिंग जो एपो ली जी मी जी यतो बोंठे थे एआई की इस्तेमाल लिख चूश। द ललती हेन कते ललई मीन सिला बिलो दुइन साथी रामदेव कपूर की थिरची ललती।

दथनगी समाचार हिंकते प्रदेश रो पंचायत राज संस्था जिछाई बसल दुरे चरण गी थन गी मतदान थन इपोनंग शांति यंपो पूरा किए यश। पहले चरण गी तहत प्रदेश की 1293 पंचायत की बुंठे नरो 7 बजा ची मतदान शुरू किए यश, नीरा 3 बजा अस्तो चलाई किए यश। थे बलाकुंग पंचायत चुनाव की पहले चरण की मतदान की बोंठे मीजी बलाकुंग उत्साह कंचा रुक खुशियश नचुंग मशरबा रुक ची शांगटे शांगजी जी रई लोक राई लोकतंत्र की बोंठे महापर्व रो बोट तच ग्वांगछो। हमीरपुर जिला की टिकरी मिनहासा पंचायत की वार्ड नंबर तिकीरो समलोक लिक्स की लोगिया लिप्सी रेशमो देवी जी वोट दचा मतदान केंद्र रो रेयेश। ले लद्दाख रो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली यंपू जुड़ाई लिखची युल गी छाई बसल क्यूई बस रूट तो हिमाचल पथ परिवहन निगम गी दिल्ली केलांग ले बस सेवा थन रोकची हिर शुरू केयेश। क्षेत्र प्रबंधक केलांग अंशित शर्मा जी लोशियेश की 990 किलोमीटर क्यूई रूट जगह जगह गी मी छाई गी बोंठे आकर्षण केंद्र तिहेश। थे बस लाहौल स्पीति की प्रमुख पर्यटन स्थल जिस्पा दारचा बारालाचा नंग सिरचू रोकची एल जी ले रोलेपचुश। दथे प्रोग्राम गी आखिर लला हिनकते।

0: स्वागत है आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 7:10 हो चुके हैं। लीजिए पेश है किसान और बागवान भाइयों के लिए कार्यक्रम कृषि जगत।
1: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान श्रोताओं को हमारा नमस्कार। इस अंक में मैं हूं राजेंद्र
2: और मैं हूं शिवरंजन।
1: शिवरंजन जी, क्या हालचाल है?
2: राजेंद्र जी, मेरे हालचाल एकदम बढ़िया हैं और उम्मीद करते हैं हमारे किसान और बागवान भाई बहन भी स्वस्थ होंगे। तो देखिए राजेंद्र जी, आजकल जो है काफी धूप पड़ रही है और ऐसे में हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। ज्यादातर कार्य किसान भाइयों आपको सुबह और शाम को ही करने चाहिए और साथ ही साथ किसान भाइयों अपने स्वास्थ्य के साथ साथ पशुधन का भी आपने विशेष ध्यान भी रखना है।
1: जी, बढ़ते हैं शिवरंजन जी आगे और कार्यक्रम में हम बात करेंगे पौध संरक्षण रसायनों का उचित प्रयोग और देखभाल के बारे में।
2: जी,
1: साथ ही करवाएंगे मनोरंजन पहाड़ी लोक गीतों से
2: और किसान भाइयों सुनवाएंगे आपको एक जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण भी। विषय रहेगा प्राकृतिक खेती में स्वदेशी गाय का महत्व। बातचीत में भाग लेंगी रीना देवी और उनसे जानकारी हासिल करेंगी हेमलता। और किसान भाइयों, कार्यक्रम के अंत में देंगे जानकारी आपको कल के आकर्षण की भी। तो राजेंद्र जी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं काम की बातों के अंतर्गत लिए गए विषय को लेकर के, जो है पौध संरक्षण रसायनों का उचित प्रयोग व उनकी देखभाल किस तरह से कर सकते हैं।
1: जी शिवरंजन जी, कृषि रसायनों का पौध संरक्षण में विशेष महत्व है, परंतु इनका अंधाधुंध अनुचित और अत्यधिक प्रयोग मनुष्य, पालतू जानवरों और पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। इनके जहरीले असर के मामले अक्सर आते रहते हैं। जिन किसानों ने पौध संरक्षण रसायनों के सुरक्षित प्रयोग पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, वे आमतौर पर इनका छिड़काव नहीं करते हैं। छिड़काव करने वाले मजदूरों, कामगारों को इनसे होने वाले खतरों का पता नहीं होता। ये मजदूर किसी भी तरह का सुरक्षा आवरण नहीं लगाते। दो या दो से अधिक घातक कृषि रसायन एक के बाद एक मिलाकर छिड़काए जाते हैं, जिससे इसकी घातकता और बढ़ जाती है।
2: जी किसान भाइयों, ऊंची फसलों जैसे कि कपास,

0: और अरहर पर यह ध्यान दिए बिना छिड़काव किया जाता है कि पौधे संरक्षण रसायन शरीर पर गिर सकते हैं। डॉक्टरों के पास इन रसायनों की चिकित्सा हेतु आवश्यक साहित्य व विस्मारक नहीं होते हैं। किसान भाइयों, पौधे संरक्षण विशेषकर फफूंद नाशक अवशेष से पैदा विषाक्तता बहुत हानिकारक होती है। इससे कई भयंकर रोग जैसे कि कैंसर हो सकता है, दिल दिमाग गुर्दे को नुकसान पहुंचता है। अधिकांश लोग इसके जहरीलेपन से परिचित नहीं होते हैं। सब्जियों में उपज आने के समय बहुत अधिक कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और कीटनाशकों के प्रयोग व सब्जियों के तोड़ने में बहुत कम समय का अंतराल होता है। इस कारण सब्जियों के नमूनों में बहुत अधिक स्तर तक कीटनाशक अवशेष पाए गए हैं।
1: जी शिवरंजन जी, पौध संरक्षण रसायनों के अवशेष पाए जाने के अगर कारणों की बात करें तो पौध संरक्षण रसायनों का किसान भाई अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, निर्धारित प्रतीक्षा अवधि का पालन वे नहीं करते हैं, घटिया स्तर के पौध संरक्षण रसायनों का प्रयोग किया जा रहा है, पौध संरक्षण रसायनों के विक्रेताओं द्वारा किसानों को अधूरी सलाह दी जाती है और सिफारिशों के अनुसार पौध संरक्षण रसायन नहीं दिया जाता, पौध संरक्षण रसायनों का निर्माण इकाइयों से बाहर बहना और बहते पानी में मिलना, बचे हुए पौध संरक्षण रसायनों का गलत ढंग से निपटारा और छिड़काव यंत्रों की ढंग से सफाई न करना होता है, फल और सब्जियों को बाजार लाने से पहले पौध संरक्षण रसायनों से उन्हें उपचारित करना होता है, इस कारण पौध संरक्षण के अवशेष हमारे सब्जियों पर पाए जा रहे हैं।
0: जी किसान भाइयों, इनके जहरीलेपन को देखते हुए ये आवश्यक है कि इनके उपयोग के समय अधिक से अधिक सावधानियां प्रयोग में लाई जाएं। पौध संरक्षण रसायनों का खरीदने से लेकर छिड़काव तक का पूर्ण कार्य व्यवसक और जानकार व्यक्ति द्वारा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार किया जाना बहुत जरूरी हो जाता है। इन रसायनों के प्रयोग के बारे में विभागीय प्रशिक्षण या विशेषज्ञों की सलाह उन किसानों या छिड़काव करने वाले व्यक्तियों को लेनी आवश्यक है जो वास्तव में इन रसायनों का प्रयोग और छिड़काव करते हैं। साथ साथ ये भी आवश्यक है कि इन रसायनों के प्रयोग के बाद सब्जियों के तोड़ने का अंतराल, जिसे प्रतीक्षा अवधि भी कहा जाता है, उसका ध्यान रखा जाना जरूरी होता है ताकि इनके अवशेषों को दूर किया जा सके। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि पौध संरक्षण रसायनों के चयन में आपने सावधानियां क्या क्या रखनी होती है।
1: जी शिवरंजन जी, पौध संरक्षण रसायनों के मानव, पशु, पर्यावरण और समस्त प्राणी जगत पर विपरीत प्रभाव को देखते हुए उनका प्रयोग केवल उन्हीं परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जब पौध संरक्षण के अन्य तरीकों से कीट, बीमारी और खरपतवारों का नियंत्रण संभव न हो। कृषि विशेषज्ञों की सलाह के बाद ही पौध संरक्षण रसायन खरीदने चाहिए। रसायनों के प्रयोग से पौधों को हानि पहुँचाने वाले कीटों, बीमारियों और खरपतवार की संख्या को केवल आर्थिक हानि के स्तर तक ही कम करना चाहिए।
0: जी किसान भाइयों, बात करते हैं खरीदने व परिवहन के समय आपने किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है। किसान भाइयों, आपने विशेषज्ञों द्वारा ही की गई सिफारिशों के अनुसार ही रसायनों का चयन करना है। ये रसायन केवल पंजीकृत कीटनाशक विक्रेता से आपने खरीदना है जिसके पास वैध लाइसेंस हो। ये सुनिश्चित करें कि रसायन का पैकेट या डिब्बा कहीं से खुला या फटा तो नहीं है, बोतल की सील कहीं से टूटी ना हो और कहीं से रिसाव भी नहीं हो रहा हो। डिब्बे पर लिखी इस्तेमाल की आखिरी तारीख को ध्यान से आपने पढ़ लेना है। आखिरी तारीख खत्म होने के बाद उन्हें आपने नहीं खरीदना है। डिब्बे, बोतल या शीशी पर लिखे या उनके साथ दी गई पुस्तिका में दिए गए दिशा निर्देशों को आपने ध्यान पूर्वक पढ़ना है और उनका पालन आपने करना है।
1: जी हाँ शिवरंजन जी, इन रसायनों के जहरीलेपन को बताने के लिए डिब्बे, बोतल और शीशी पर डायमंड के आकार का चित्र बना होता है। यदि लाल रंग का है तो इसका मतलब है कि रसायन अत्यधिक जहरीला है। पीला रंग ये दर्शाता है कि रसायन जहरीला है लेकिन लाल रंग के मुकाबले में कम जहरीला है। नीला रंग पीले रंग से कम जहरीलेपन का सूचक है। हरा रंग सबसे कम जहरीलेपन का सूचक है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस रसायन पर हरे रंग का डायमंड है वो जहरीला नहीं है।
0: जी
1: शिवरंजन जी, खरीदने के बाद इन रसायनों को अलग पैकिंग में ले जाना चाहिए। दूसरी वस्तुओं के साथ पैक बिल्कुल भी ना करें और परिवहन के दौरान रसायनों को यात्रियों और खाद्य पदार्थों से दूर रखना चाहिए। रसायनों को लादने से पहले उनकी अच्छी तरह पैकिंग करें। कभी भी अधिक मात्रा में इन रसायनों को अपने सिर, कंधे और पीठ पर रखकर ना ले जाएं। एक क्षेत्र में एक बार के छिड़काव के लिए जितनी आवश्यकता हो उतना ही रसायन खरीदना चाहिए। अगर रसायन गिर गया हो तो मनुष्य, पशुओं को इससे दूर रखें और इस पर मिट्टी या लकड़ी का बूरा डाल देना चाहिए।

0: वाहन के प्रदूषित भाग को भी पानी से धो लेना चाहिए। दूषित खाद्य पदार्थों को जला दें या जमीन में दबा देना चाहिए।
1: जी राजेंद्र जी, अब बात करते हैं कि हमारे किसान और बागवान भाई बहनों को भंडारण के समय में क्या सावधानियां रखनी होती है, इस बारे में भी। इन रसायनों को घर से दूर सुरक्षित स्थान पर ताले के अंदर आपने किसान भाइयों रखना होता है। भंडारण ऐसे स्थान पर आपने करना है जहां पर बच्चों और पशुओं की पहुंच ना हो। भंडारण उस कमरे में आपने नहीं करना है जिसका प्रयोग रात को सोने के लिए किया जाता हो। रसायन कभी भी खाने पीने और दैनिक प्रयोग की वस्तुओं के साथ आपने नहीं रखना है। रसायनों को उन्हीं के डिब्बे, बोतल या शीशी में आपने रहने देना है। पेय पदार्थों की बोतलों में आपने रसायनों को नहीं डालना है। अब बात करते हैं कि घोल बनाते समय आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है।
0: जी हाँ शिवरंजन जी, डिब्बे के साथ दिए गए दिशा निर्देशों सावधानियों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना चाहिए। रसायनों का घोल खुले स्थान पर गहरे बर्तन में बनाना चाहिए। घोल बनाने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। बताई गई मात्रा को कम पानी में डालकर किसी लकड़ी के डंडे से घोलना चाहिए। फिर बताई गई पूरी पानी की मात्रा डालनी चाहिए। डंडे को धोने के बाद सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। रसायनों को मिलाने के लिए विशेष बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए और हमेशा उन्हीं बर्तनों में रसायन को मिलाना चाहिए। रसायन के पैकेट शीशी को फाड़ कर दांतों से खोलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। हमेशा पैकेट को कैंची या चाकू की मदद से खोलना चाहिए। शिवरंजन जी, रसायनों को खोलते, नापते, मिलाते समय हाथों में दस्ताने, मुंह पर मास्क का प्रयोग करना चाहिए। नंगे हाथों से ना तो रसायन निकालें और ना ही उन्हें मिलाएं।
1: जी
0: रसायनों को उड़ेलते समय ध्यान दें कि ना तो इधर उधर फैले या गिरे और ना ही इनके छींटे अपने ऊपर पड़े। जिन रसायनों की धातुओं के साथ प्रतिक्रिया होती हो उनका घोल धातु के बर्तन में बिल्कुल भी न बनाएं। एक समय में उतना ही घोल बनाएं जितना कि छिड़काव के लिए आवश्यक हो। स्प्रेयर के टैंक को बिल्कुल भी ना सूंघें और घोल बनाते समय बच्चों या अन्य आदमी और पशुओं को पास में न रहने दें।
1: जी किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि छिड़काव करते समय आपने किन बातों का ध्यान रखना है। किसान भाइयों, छिड़काव सुबह और शाम को ही आपने करना है। किसान भाइयों, ये रसायन चमड़ी से, मुंह से, नाक और आंखों से शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए छिड़काव करते समय जितना ज्यादा हो सके अपने शरीर को आपने ढक कर रखना है। चेहरे पर मास्क, आंखों पर ऐनक, हाथों में दस्ताने, शरीर पर सुरक्षात्मक कपड़े और पाँव में गम्बूट आपने पहनने हैं ताकि जहरीला रसायन शरीर के किसी भी भाग को ना छू पाए। खाने पीने की वस्तुओं को छिड़काव के स्थान से किसान भाइयों आपने दूर रखना है। साथ ही किसान भाइयों, छिड़काव करते समय आपने खान पान नहीं करना है। रसायनों से जल आदि प्राकृतिक साधनों को आपने दूषित नहीं करना है। छिड़काव करते समय बच्चों, अन्य व्यक्तियों और पालतू पशुओं को छिड़काव क्षेत्र से दूर रखना है। और साथ ही किसान भाइयों, इस बात का भी ध्यान रखना है कि बंद नोजल को मुंह से फूंक मारकर आपने साफ नहीं करना है। इसे पानी या तार या टूथब्रश से आपने किसान भाइयों साफ कर देना है।
0: शिवरंजन जी, बात करते हैं छिड़काव के बाद कुछ एक सावधानियों की। तो किसान भाइयों, छिड़काव के बाद हाथों को साबुन से 2-3 बार धोएं और पहने हुए कपड़ों को धो लें। साबुन के साथ नहाने के बाद ही कुछ खाना चाहिए। यदि किसान भाइयों साबुन ना हो तो आप मिट्टी या फिर राख से भी अपने हाथों को अच्छी तरह से धो सकते हैं।
1: जी
0: बचे हुए घोल को बंजर और निर्जन भूमि जैसे स्थानों पर दबा देना चाहिए। छिड़काव यंत्रों और बर्तनों को साफ करने के बाद बचे हुए पानी को गहरे गड्ढे में डाल देना चाहिए। छिड़काव के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तनों को साफ करने के बाद घरेलू कार्य के लिए उपयोग बिल्कुल भी ना करें। पशुओं को पानी पिलाने के लिए भी उनका उपयोग बिल्कुल भी ना करें।
1: जी
0: कृषि रसायनों की खाली बोतलों या डिब्बों को दैनिक प्रयोग और खाने पीने की वस्तुएं, तेल, घी, दाल आदि के रखने के लिए प्रयोग में ना लाएं। खाली पैकेट, डिब्बों, बोतलों को नष्ट कर दें या फिर जमीन में गहरा दबा दें। शिवरंजन जी, इन रसायनों का प्रयोग अपनी इच्छा से पशुओं में पड़े पिस्सू और अन्य कीटों को मारने के लिए बिल्कुल भी ना करें। इसके लिए हमेशा पशु चिकित्सक की सलाह लें। छिड़काव करने के बाद कम से कम 1 सप्ताह तक छिड़काव की गई सब्जियों और फलों का इस्तेमाल खाने के लिए और तुड़ाई बिल्कुल भी ना करें। दवाई के जहरीलेपन के अनुसार ये अवधि लंबी भी हो सकती है। तो देखिए किसान भाइयों, ये तो बात हुई पौध संरक्षण रसायनों का उचित प्रयोग और देखभाल आप किस प्रकार कर सकते हैं। तो अब कार्यक्रम में समय हो चला है मनोरंजन का।
1: तो किसान भाइयों, लीजिए आइए सुनते हैं अतुल शर्मा की आवाज में ये लोकगीत।

0: अभी आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत। अब कार्यक्रम में समय हो चला है जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुनने का, जिसका विषय है प्राकृतिक खेती में स्वदेशी गाय का महत्व। रीना देवी से बातचीत करेंगी हेमलता।
1: आज हमारे स्टूडियो में आई है रीना देवी जी, जो कि एक सफल किसान के रूप में कार्य करती हैं। रीना देवी जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आप पहले तो अपना परिचय दें कि हमारे किसान भाई जानना चाहते हैं कि आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं।
2: मेरा नाम रीना है, मेरे गांव का नाम हलोट है, ग्राम पंचायत घैणी, जिला शिमला की मैं रहने वाली हूँ।
1: जी, तो आप क्या क्या खेतीबाड़ी में क्या क्या काम करते हैं?
2: खेतीबाड़ी में हम सब्जियां भी उगाते हैं और गेहूं भी उगाते हैं।
1: जी, और किसान भाइयों, आप जानते हैं कि पशुधन हमारा एक रीढ़ की हड्डी होता है, जिससे हमें गोबर, दूध, दही, घी सब कुछ प्राप्त होता है। तो आज इसी विषय से

0: संबंधित रीना देवी जी हमारे को जानकारी देंगी और इनका विषय है प्राकृतिक खेती में स्वदेशी गाय का क्या महत्व होता है। तो पहले तो आप ये बताएं रीना देवी जी, प्राकृतिक खेती होती क्या है?
1: प्राकृतिक खेती वह खेती है जो गोबर और गौमूत्र से की जाती है, जिसमें कि रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें गाय के गोबर का ही उपयोग किया जाता है। गाय के गोबर और गौमूत्र से बीजामृत, जीवामृत, घन जीवामृत, नीमास्त्र जैसे संसाधनों का उपयोग करके करते हैं।
0: जी, ये आपने बहुत बढ़िया बात बोली और हमारा किसान भी जानता ही होगा, हम भी जानकारी अपने किसान भाइयों को देते ही रहते हैं कि जीवामृत और घन जीवामृत एक ऐसा अमृत है, यदि आप अपने खेतों में डालें तो आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं, क्योंकि हमारे खेतों में मित्र कीट होते हैं जो कि हमारे खेतों की बढ़वार को भी बढ़ाते हैं। यदि हम दूसरी स्प्रे करेंगे तो हमारे जो मित्र कीट है वो भी मर जाते हैं। ये तो बात हुई प्राकृतिक खेती की, अब बात करें हैं प्राकृतिक खेती में देसी गाय का क्या महत्व होता है?
1: प्राकृतिक खेती में देसी गाय का बहुत महत्व है। यदि हमारे पास गाय है तो हमारे गोबर गौमूत्र भरपूर मात्रा में हमारे पास होता है और इसी से गाय के गौमूत्र और गोबर से ही जो अगर हम अपनी भूमि में इसको डालेंगे तो हमारी भूमि की उर्वरता शक्ति बढ़ती है, क्योंकि गाय के गोबर और गौमूत्र में बहुत से जीवाणु पाए जाते हैं।
0: जी, आपने बहुत बढ़िया बात बोली। किसान भाई देखो कितनी बढ़िया बात है, यदि आप गाय पालते हैं तो जो काला गोबर होता है, आजकल देखो गोबर फेंका जा रहा है खेतों में, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जो काला गोबर होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है, वो खाद का काम करता है और वो मानव जीवन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। देखो कई बार हम स्प्रे करते हैं आप खेतों में तो हम कहते हैं कि एक सप्ताह तक आप पत्ते ना तोड़ें, लेकिन जो ये वाली खाद होती है ना किसान भाई, यदि आप ये खेतों में डालें तो आप उसी वक्त भी ला सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है कोई केमिकल नहीं होता है, वो एक साधारण खाद होती है। किसान भाइयों, अब आपको जानकारी देंगी प्राकृतिक खेती के मुख्य जो घटक है वो क्या क्या है।
1: हेमलता जी, जो आपने प्राकृतिक खेती के घटकों की बात की है, मैं अपने किसान भाइयों और बहनों को बताना चाहती हूँ, जो गाय का गोबर और गौमूत्र से है घटक जो बनाए जाते हैं वो जीवामृत है, घन जीवामृत है। जीवामृत एक तरल पदार्थ है जिसमें गौमूत्र जितना पुराना होगा और गोबर ताजा होना चाहिए तो वो बहुत अच्छा बनता है। और जो हमारा घन जीवामृत है वो एक सूखा पदार्थ है जो गोबर और गौमूत्र से बनाया जाता है।
0: जी रीना देवी जी, पहले आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि ये जीवामृत और धन जीवामृत किन किन फसलों पर प्रयोग करते हैं और इसे कैसे बनाते हैं?
1: जो आपने जीवामृत की बात की है वो सभी फसलों पे उपयोग किया जा सकता है और इसी तरह से घन जीवामृत भी उपयोग किया जा सकता है। जीवामृत बनाने की मैं आपको विधि बताती हूँ। 200 लीटर पानी का हमने ड्रम लेना है, जिसमें कि 100 लीटर आपने पानी भर देना है पहले, तो उसमें आपने 10 किलोग्राम गाय का ताजा गोबर मसल कर हाथ से मतलब उसको गोबर को अच्छी तरह से मसल लेना है और फिर उस गोबर को ड्रम में डालना है। उसके बाद 10 लीटर गौमूत्र लेना है और 1 से 1.5 किलो गुड़ लेना है और 1 से 1.5 किलो ही आपने बेसन लेना है और 1 मुट्ठी मिट्टी लेनी है हमने, जो बड़ा पेड़ हो उस पेड़ के नीचे की हमें बिल्कुल जहाँ पे कोई रसायन ना हो, उर्वरक ना हो, ऐसी
0: पत्थर ना हो।
1: हाँ जी, ऐसी हमें मिट्टी लेनी है और इस मिट्टी को भी हमने उस ड्रम में ही डाल देना है।
0: जी,
1: जब ये सब चीजें हम कर लेंगे, इन सब के बाद हमने उस पानी के ड्रम को, जैसे 200 लीटर का पानी का ड्रम है, पानी से भर लेना है और जब ये हमारा सब कुछ तैयार हो गया है तो अब हमने हर रोज प्रतिदिन इसको एक लकड़ी की छड़ से घुमाना है,
0: हिलाते रहना है।
1: पर जो हमें हिलाना है वो हमें ऐसे हिलाना है जिस दिशा में घड़ी की सुई चलती है ना, जैसे बिल्कुल उसी दिशा में हमने इसको हिलाते रहना है। और जब 7 से 8 दिनों में ये तैयार हो जाएगा,
0: कितनी देर तक हिलाते रहना इसको?
1: ये आप अपनी सुविधा के अनुसार, जितना आपके पास 10 मिनट हिला लो,
0: यानी कि वो दोनों इकट्ठा मिलना चाहिए।
1: हाँ जी, और उसको विपरीत दिशा में नहीं हिलाना है, क्योंकि उसमें जो जीवाणु होते हैं अगर हम विपरीत दिशा में हिलाएंगे तो वो जीवाणु मर जाते हैं।
0: अच्छा,
1: और जब ये हमारा अच्छी तरह से तैयार हो जाता है उसके बाद हम इसको हिलाने के बाद इसको जूट की बोरी से ढक देंगे। आपने यही जो प्रक्रिया है वो 7 से 8 दिनों तक करनी है और उसके बाद जब 7 से 8 दिनों के बाद आपको देखेंगे कि जो हमारा जीवामृत है उसे एक विशेष तरह की सुगंध आती है।
0: जी,
1: जब ये तैयार होगा, जब वो सुगंध आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि अब हमारा जीवामृत जो है वो तैयार हो चुका है।
0: जी,
1: और अब आप इसके लिए जो 1 बीघा के लिए है 80 लीटर से 100 लीटर का उपयोग जीवामृत का कर सकते हैं। इसका उपयोग हम अपने खाली खेतों में भी कर सकते हैं और यदि हमारे पास फसल है लगी हुई या सब्जी है लगी हुई या हमारे बगीचे हैं तो हम उसमें भी कर सकते हैं। पर फसलों में हमें अपना ये ध्यान रखना है कि हमें फसलों में अगर जीवामृत का छिड़काव करना है तो

0: 10 लीटर हम पानी लेंगे और सिर्फ 2 लीटर जीवामृत हम उसमें डालेंगे, उसको अच्छी तरह से हिलाएंगे और फिर हम अपनी फसलों में, जैसे लाइनों में लगी होती है तो
1: करता
0: खाली
1: है।
0: लाइनों में हम उसका छिड़काव कर सकते हैं, और ये प्रक्रिया हम 15 दिनों के बाद और दोबारा भी दोहरा सकते हैं।
1: अब बात आती है घन जीवामृत की, तो घन जीवामृत क्या चीज है ये?
0: जो हमारा घन जीवामृत है वो भी हमारा जीवामृत से ही तैयार किया जाता है। इसमें भी हम 10 किलो गोबर लेंगे, उसको अच्छी तरह से हाथ से मसल लेंगे और फिर हम इसमें अपना जीवामृत मिला देंगे। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह से मिला के फिर हम इसे किसी छायादार क्षेत्र में रखेंगे ताकि वो सूख जाए। फिर ये जब सूख जाएगा, बिल्कुल अच्छी तरह से सुखाना है, 4-5 दिनों तक इसे हमें अच्छी तरह से सुखाना है। जब ये सूख जाएगा तब फिर आप इसको अच्छी तरह से हाथ से फिर से मसल कर या फिर किसी डंडे की सहायता से आप इसको अच्छी तरह से बारीक कर ले और फिर आप इसको जूट की बोरी में भर दे। और फिर जूट की बोरी को भी हमें भरकर ऐसे स्थान पे रखना है जहाँ पे कि हमारी सीलन ना हो। जब हमें खेती में हमें लगेगा कि हमें इसका उपयोग करना है तो हम उसको वहाँ पे उपयोग कर सकते हैं।
1: रीना देवी जी, आप ये बताएं कि जैसे कीट लग जाते हैं तो हमारे किसान भाई किन चीजों का प्रयोग करें कि वो कीटों से अपना जो आपने घन जीवामृत बनाया है उससे बचाव कर सके?
0: अगर हमारे प्राकृतिक खेती में कीट की समस्या आती है तो इसके लिए नीमस्त्र, द्रेकस्त्र, ब्रह्मास्त्र, दसपर्णी अर्क, अग्नियस्त्र बनाए जाते हैं जो प्राकृतिक कृषि में कीट नियंत्रण के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुए हैं।
1: तो इसके लिए हमारे किसान भाई क्या कर सकते हैं, और कोई उपाय है इसका?
0: अगर हमारे पास प्राकृतिक कृषि में कोई रोग लग जाए तो उसके लिए हम 90 से 100 दिनों की खट्टी लस्सी का छिड़काव भी कर सकते हैं। 3 लीटर हमें खट्टी लस्सी लेनी है और 100 लीटर पानी में इसको मिला के अच्छी तरह से अपनी फसल पर छिड़काव करना है। इसके अतिरिक्त एक और जो है वो सूखी गंडी, जो कि जैसे जंगलों में जब हमारे पशु चरने जाते हैं तो वहां पे वो गोबर करते हैं, जब ये गोबर सूख जाएगा उसको आपने इकट्ठा करना है और एक 100 लीटर पानी का ड्रम लेना है और कम से कम 5 किलो आपने ये सूखी गंडी लेनी है और इसको एक जूट की बोरी में भरना है सूखी गंडी को, और एक रात के लिए उस ड्रम में आपने इसको डाल देना है। सुबह जब आप देखेंगे कि जो हमारे ये सूखी गंडी है ये बिल्कुल नरम हो चुकी है, का जो रस है वो उस ड्रम में निकल गया है, पानी में चला गया है, तो उस जूट की बोरी को आप बाहर निकाल दो और उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं जिससे हमारे जो रोग है वो खत्म हो सकते हैं।
1: देखो किसान भाइयों, कितनी बढ़िया बात है कि यदि आप गोबर जंगलों से या कहीं भी रास्ते में, पशु आजकल देखो लोगों ने बहुत आवारा भी छोड़े हैं, वहां से भी आप गोबर इकट्ठा करके एक ड्रम में पानी रख के और बोरी उसमें डाल देनी है गोबर की, और उसको एक दिन के लिए रखना है आपने। एक दिन के लिए रख के उसको फिर आप उसको निकाल दें तो आप जानती हैं कि वो नरम हो जाएंगे। नरम होने के बाद आपने क्या करना है, उसको बिल्कुल बारीक कर देना है, बारीक पीस के, और फिर आपका वो तैयार हो जाएगा। कितनी बढ़िया बात है किसान भाइयों, ये आप जो है गमलों में भी, पौधों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, रीना देवी से हम ये जानना चाहते हैं कि स्वदेशी गाय के गोबर से हमारा किसान अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे कर सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर आदमी गाय नहीं पाल सकता, तो आपको गोबर तो चाहिए, लेकिन उस गोबर से हमारी आर्थिक स्थिति कैसे सुधरेगी? जो गाय पालता है वो अपने गोबर को जो है किसी दूसरे व्यक्ति को बेचकर आर्थिक स्थिति में अपने सुधार कर सकता है, तो ये बताएंगे आपको रीना देवी जी कि हमारी स्वदेशी गाय का गोबर कैसे, जो कि गाय नहीं पालते हैं, उन तक पहुंच कैसे सकता है?
0: स्वदेशी गाय की जो आपने बात की है, प्राकृतिक खेती में स्वदेशी गाय का होना बहुत ही आवश्यक है। और
1: जी
0: अब आपने मुझसे पूछा है कि किसानों की आर्थिकी को हम कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं। अगर हमारे पास गाय है तो ही हम प्राकृतिक कृषि कर सकते हैं, और जब प्राकृतिक कृषि करेंगे तो ही हमें अपनी जो है फल सब्जियों का उत्पादन अच्छा मिलेगा, और जब फल सब्जियां अच्छी होगी तभी हम उसे अपनी सब्जी मंडी में बेच सकते हैं और तभी हमें उसकी अच्छे दाम मिल सकते हैं। जब हम अपनी फसलों को या सब्जियों को अच्छे दाम हमें मिलेंगे तो किसान की आर्थिकी तो तभी सुदृढ़ होगी और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, क्योंकि वो जहर मुक्त सब्जियां उत्पादन कर रहा है और उनका सेवन कर रहा है। तो स्वदेशी गाय का हमारे किसान भाइयों के जीवन में बहुत अधिक महत्व है।
1: किसान भाई, यदि आप जहर मुक्त खेती उगाना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा गाय पालें, और उसके गोबर से जो आपको रीना देवी ने विधियां बताई हैं उस विधि द्वारा इसको बनाकर अपनी खेती और बागवानी के कार्यों में सुधार करें, तभी आपकी खेती बढ़िया होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो रीना देवी जी, स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी है जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण। विषय था प्राकृतिक खेती में स्वदेशी गाय का महत्व। बातचीत में भाग ले रही थी रीना देवी और उनसे जानकारी हासिल कर रही थी हेमलता।

0: जानकारीपूर्ण बातचीत भी।
1: तो राजेंद्र जी, देखिए अब तो कार्यक्रम का समय भी हो चला है, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कार्यक्रम समाप्ति की ओर। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी FM शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

अभी आपने सुना ये प्यारा सा लोकगीत। अब कार्यक्रम में बात करते हैं कल के आकर्षण की। शिवरंजन जी, कल के आकर्षण में हम काम की बातों में बात करेंगे, गुठलीदार फलों के रोग, कीट और उपचारों की, साथ ही करवाएंगे मनोरंजन पहाड़ी लोकगीतों से, और सुनवाई जाएगी एक

0: तासीर 6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आकाशवाणी एफएम शिमला पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DTS सेवा पर भी उपलब्ध हैं।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को 3 चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न, रिकॉर्ड 78% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अधिकारियों को MIS के तहत खरीदे फलों का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से करने के निर्देश। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवास और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति। प्रदेश सरकार ने संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद पर दी नियमित नियुक्ति। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, 28 मई से झमाझम बरसेंगे बादल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण के लिए आज चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। पहले चरण के तहत आज प्रदेश की 1293 पंचायतों और जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्य के लिए वोट डाले गए। पहले चरण में रिकॉर्ड 78% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। पिछले पंचायती राज चुनावों में प्रदेश में 77% मतदान हुआ था। मतदान संपन्न होने के बाद पंचायत प्रधानों, उप प्रधानों व वार्ड सदस्यों के लिए डाले गए वोटों की गिनती जारी है और कई स्थानों पर नतीजे भी घोषित कर दिए गए हैं। इस बीच आज पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा गया। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं से लेकर उम्र दराज मतदाताओं तक ने लोकतंत्र के इस महापर्व में उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बिलासपुर जिला के घुमारवीं विकास खंड की सेव ग्राम पंचायत के पिंक बूथ पर प्रदेश की सबसे उम्रदराज मतदाता 113 वर्षीय मंगलू देवी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इसी तरह शिमला जिला की ननखड़ी तहसील की ग्राम पंचायत खमाड़ी के करोली गांव की 100 वर्षीय रामपति और हमीरपुर जिला की टिक्करी मिनहासा पंचायत के वार्ड नंबर 1 में समलोग गांव की 100 वर्षीय रेशमो देवी भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पहुंची। अधिकांश मतदान केंद्रों पर गर्मी के चलते सुबह के वक्त मतदाताओं की जोरदार भीड़ उमड़ी और लोग कतारों में खड़े होकर मतदान के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कई ग्राम पंचायतों में मतदान की समय सीमा खत्म होने के बाद भी मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। इस बीच कुल्लू जिला में 80% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। सिरमौर जिला में 75.52%, जबकि सोलन जिला

0: लगभग 80.90% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऊना जिला में 78.25% और बिलासपुर जिला में 75.61% मतदान हुआ। हमीरपुर जिला में 72.17% मतदान दर्ज किया गया। इस बीच 28 मई को होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के दूसरे चरण के लिए सक्रिय चुनाव प्रचार आज दोपहर 3 बजे समाप्त हो गया। दूसरे चरण में 1274 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने निर्देश दिए हैं कि मंडी मध्यस्थता योजना के तहत खरीद पर बागवानों को भुगतान के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की संभावनाएं तलाशी जाएं। मुख्यमंत्री शिमला में बागवानी विभाग की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मौजूदा भुगतान प्रणाली में बागवानों को मंडी मध्यस्थता योजना के तहत की गई खरीद पर नकद राशि के स्थान पर विभाग द्वारा अन्य सामग्री प्रदान कर भुगतान किया जाता है। उन्होंने भी निर्देश दिए कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कदम से छोटे और सीमांत सेब उत्पादकों की आर्थिकी में सुधार होगा। भारत सरकार ने अवैध अप्रवास और अन्य असामान्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने और जनसांख्यिकीय परिवर्तनों से निपटने के उपायों पर सुझाव देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस कार्य के लिए हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 सितंबर 2025 को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। समिति के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नावलेकर होंगे। जनगणना आयुक्त के अलावा 3 प्रतिष्ठित विशेषज्ञ दुर्गाशंकर मिश्रा, बालाजी श्रीवास्तव और डॉक्टर शमिका रवि इस समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव गृह को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। ये समिति 1 वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के राजनीतिक सलाहकार सुनील बिट्टू ने कहा है कि हमीरपुर शहर के व्यापारियों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। सुनील बिट्टू ने आज उनसे मिलने आए हमीरपुर व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के सामने रखकर उनका समाधान निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार हमीरपुर शहर के व्यापारियों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देगी। प्रतिनिधिमंडल ने सुनील बिट्टू को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि हमीरपुर बाजार में स्थित मुख्य बस अड्डे को निर्माणाधीन बस अड्डे में स्थानांतरित करते समय हमीरपुर के लोकल रूट नए बस अड्डे को स्थानांतरित न किए जाएं। व्यापारियों ने अपने अन्य मुद्दे भी सुनील बिट्टू के समक्ष रखे। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_Shimla और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कार्यवाहक मुख्य सचिव संजय गुप्ता को इस पद पर नियमित नियुक्ति दे दी है। संजय गुप्ता को मुख्य सचिव के पद पर ये नियमित नियुक्ति उनकी सेवानिवृत्ति से 5 दिन पूर्व दी गई है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। उनकी पदोन्नति संबंधी अधिसूचना आज कार्मिक विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अधिकारियों के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं और पूरी तरह कंप्रोमाइज्ड हैं। जयराम ठाकुर ने आज सरकार द्वारा वर्तमान कार्यवाहक मुख्य सचिव को स्थायी नियुक्ति दिए जाने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मौजूदा मुख्य सचिव की नियुक्ति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। ऐसे में उन्हें स्थायी मुख्य सचिव बनाना सरकार की नीयत पर कई सवाल खड़े करता है। उन्होंने पंचायत चुनाव के पहले चरण में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को भारी जनसमर्थन मिलने का दावा भी किया। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव इस बार नए तेवर, व्यापक स्वरूप और जनभागीदारी के बड़े विजन के साथ नजर आएगा। ग्रीष्मोत्सव कमेटी के अध्यक्ष व उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने आज एक पत्रकार वार्ता में कहा कि अब तक रिज मैदान की सांस्कृतिक संध्याओं तक सीमित रहने वाला प्रतिष्ठित उत्सव इस बार स्कूलों, खेल मैदानों, साहित्यिक मंचों और शहर के अलग अलग हिस्सों तक अपनी पहुँच बनाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव की तिथियों में इस बार बदलाव किया गया है और इसका आयोजन 8 से 12 जून तक होगा।
1: तो एक बड़े ब्रॉड लेवल पर जो हमारा

0: जल्दी कॉम्प्लेक्स। उसके ऊपर हमने ये तय किया है कि डिफरेंट कॉलेजेस, फाइन आर्ट्स कॉलेजेस, आम पब्लिक पेंटिंग और डिफरेंट क्रिएटिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगी। उसके लिए हमने टाई अप किया है कि वहां पर डिफरेंट एक्टिविटीज कराई जाए ताकि एक आम आदमी का कनेक्ट जो है वो किसी एक्टिविटी में बना रहे और रोड सेफ्टी की जो और भी जितनी भी चीजें हैं उसमें डायरेक्ट इंटरवेंशन बच्चों की बनी रहे। ये एक ऑब्जेक्टिव है कि किस तरीके से हम एक साथ में मिला करके उनका इंटरेस्ट बना के उनको एक मैसेज भी फेस्टिवल के तरफ से दे और ताकि वो एंजॉय भी कर सके कि एक फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करें।
1: प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। राज्य के ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, सोलन और सिरमौर जिला के कई हिस्सों में आज लू जैसे हालात बने रहे। ऊना में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। इसके चलते लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने कल 27 मई को राज्य के 8 जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर में अलग अलग स्थानों पर लू चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई से हिमालय क्षेत्र में ताजा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके प्रभाव से 28 मई को राज्य के 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में मौसम विभाग ने ओलावृष्टि, अंधड़, आसमानी बिजली गिरने और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी तूफान चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति ने वन विभाग से बांध प्रभावित क्षेत्र में निष्पक्ष तरीके से पेड़ों की गिनती करवाने की मांग की है। रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति के प्रेस सचिव योगी ठाकुर ने आज नाहन में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि यदि इस कार्य में पारदर्शिता नहीं बरती गई तो समिति मामले को न्यायालय में ले जाएगी। समिति ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों से भी इस मुद्दे को गंभीरता से उठाने और प्रभावित लोगों की आवाज बुलंद करने की मांग की है ताकि विस्थापितों को न्याय मिल सके।
2: जब वो काउंटिंग वहाँ पे कर रहे थे, वो वहाँ पे काउंटिंग कर रहे थे जहाँ पे पेड़ कम थे। उसका मतलब ये हुआ कि वो एक रिपोर्ट बना चाहते हैं कि जिसमें कम से कम पेड़ आए। तो विस्थापित जो हमारे भाई लोग हैं, वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे जो है जो भी कार्य हो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ हो। उन्होंने जो उतना बड़ा पहाड़ बिना किसी परमिशन के काटा है, वहाँ जो जेसीबी लगी है, ना तो उसके ऊपर कोई FIR हुई है। और मैं जो सिरमौर के अंदर जो हमारे प्रभावशाली नेता है, मेरा इन सभी नेताओं से भी एक निवेदन है कि इसमें आप जो है थोड़ा अपना भी भागीदारी जरूर रखें ताकि विस्थापित भाइयों को जो है कम से कम उनका जो एक हक है वो मिल सके।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न। रिकॉर्ड 78% से अधिक मतदाताओं ने डाले वोट। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अधिकारियों को MIS के तहत खरीदे फलों का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से करने के निर्देश। केंद्र सरकार ने अवैध अप्रवास और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए गठित की उच्च स्तरीय समिति। प्रदेश सरकार ने संजय गुप्ता को मुख्य सचिव पद पर दी नियमित नियुक्ति। और प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी, 28 मई से झमाझम बरसेंगे बादल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:30 पर। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं देशगान।

दिन भर की तपती धूप के बाद तपती गर्मी के बाद शायद अब चैन की सांस ले पाए होंगे आप। जी हाँ, आजकल का मौसम शिमला में तो है बेहद ही सुहाना, लेकिन अगर हम बात करें किसी और जगह की तो जानते हैं हम कि तपती गर्मी से बेहाल है हाल आपका। लेकिन दोस्तों क्या करें, मौसम ही ऐसा है, गर्मी का मौसम है, जून का महीना आने को है, तो भला गर्मी ना होगी तो क्या होगा। लेकिन जनाब ऐसे में ज़रूरत है आपको अपना ख्याल रखने की, खूब सारा पानी पीने की, खूब सारे फल खाने की और दिन के वक्त आराम करने की। अब आप सोच रहे होंगे हम दिन में के वक्त आपको आराम करने को कह रहे हैं तो काम कब करेंगे। जी बिल्कुल, दिन में काम भी करना है लेकिन धूप के संपर्क में आने से थोड़ा सा बचना है। अब तपती धूप किस गर्मी को तो हम खाम जो है वो कम कर नहीं सकते हैं, लेकिन आपको जो है वो ठंडे ठंडे गीतों की महक से शायद थोड़ी राहत दे ही सकते हैं। तो अब इस वक्त जो ठंडी ठंडी हवाएं शिमला की तरफ से आपकी तरफ को आए उनका आनंद लीजिए और साथ ही गीतों की इस महक से भी शायद आप थोड़ी ताजगी का एहसास ज़रूर करेंगे। गीत संगीत की इस दुनिया में हाजिर हैं हम आप सभी के लिए 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला पर। तो जनाब मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो।

हमसफर रेखा ठाकुर। अब से लेकर रात्रि 11:10 तक हम और आप मिलकर रहेंगे साथ साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के संग। तो आइए आज के इस सफर का आगाज करने जा रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के साथ। तो लीजिए भेज रहे हैं आप सभी के लिए आपके रेडियो सेट पर कार्यक्रम का ये पहला नगमा। तो लीजिए सुनिए लता मंगेशकर को धरती कहे पुकार के, गीत के बोल मजरूह के, और आनंद लीजिए इस गीत का हमारे संग।

0: की ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
1: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
0: अपने परिवार और गांव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: पुराना समय, जी हाँ, यूं तो लौट कर जिंदगी में नहीं आता है, लेकिन ये गीत संगीत उस समय को भूलने भी नहीं देता है। वो यादें आज भी वैसी ही ताज़ा तरीन पाएंगे आप जब इन गीतों को सुनेंगे। तो लीजिए सुजाता फिल्म से गीता दत्त और आशा भोसले की आवाज़ों में पेश है कार्यक्रम का ये अगला गीत।
3: पल के दिन भी

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: तो जनाब, आपको किसी की याद आई कि नहीं? जी बिल्कुल, ये गीत संगीत उस समय का है जिसे सुनकर आज भी हम शायद उस समय में खो जाएं और किसी अपने की याद हमें भी आ जाए। सुन रहे हैं आप भूले बिसरे गीत हमारे संग 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी FM शिमला पर। लता मंगेशकर को अभी आपने सुना दो बदन फिल्म में।
1: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
2: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ

0: हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प ले। पेड़ लगाए, पानी बचाए और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दे। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
1: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
2: आपका गांव है आपका गर्व। इसको विकसित बनाने के लिए आइए मिलके मनाएं लोकतंत्र का पर्व।
3: हो चुकी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव की घोषणा। ये मतदान 3 चरणों में 26, 28 और 30 मई को होगा। ऐसे में आए एक सच्चा नागरिक बनकर मिलकर निभाएं जिम्मेदारी और भारी संख्या में मतदान देकर दिखाएं अपनी भागीदारी।
2: आपका हर एक कीमती वोट आपके गांव की दशा और दिशा तय करेगा, तो अपने मताधिकार का प्रयोग करना ना भूलें। राज्य निर्वाचन आयोग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: देखा बदन सोने की नजर उस पर ये नजाकत।
5: एक और खूबसूरत नगमा आप सभी के नाम आशा भोसले, मन्ना डे, मोहम्मद रफी की आवाजों में ताजमहल फिल्म से।

0: हमारा गांव है हमारी पहचान, हमारा गांव है हमारा अभिमान। आइए मिलकर दें इसके विकास में अपना योगदान।
1: हम सब ने ठाना है कि 100% मतदान के लक्ष्य को पाना है।
0: पंचायत चुनाव आ रहे हैं, जहां आपका हर ईमानदारी से दिया गया वोट तय करता है गांव की दशा और दिशा, साथ ही बनता है गांव के विकास का आधार।
1: तो 26, 28 और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने परिवार और आस पास के हर वोटर को मतदान के लिए प्रेरित करे।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।
2: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं हमारे संग। तो आइए, हरियाली और रास्ता फिल्म का अगला गीत पेश करने जा रहे हैं आप सभी के लिए। लता मंगेशकर की आवाज़ में आइए सुनते हैं। गीत के बोल शैलेंद्र के और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: हिमाचल प्रदेश सरकार पर्यावरण संरक्षण हेतु वचनबद्ध है। आइए सुनते हैं माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का संदेश।
1: नमस्कार। विश्व पर्यावरण दिवस हमें प्रकृति के संरक्षण के प्रति अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवाने का महत्वपूर्ण अवसर है। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति ने सुंदर पहाड़, साफ पानी और शुद्ध हवा का अनमोल उपहार दिया है। आइए हम सब मिलकर अपने पर्यावरण को स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित बनाने का संकल्प लें। पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और प्रकृति की रक्षा में अपना योगदान दें। स्वस्थ पर्यावरण ही आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है। आइए प्रकृति से प्रेम करें और हिमाचल को हरियाली और स्वच्छता का आदर्श बनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।
2: हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जनहित में जारी।
3: हिमाचल के युवाओं, अब सिर्फ सोशल मीडिया पर ओपिनियन देने का नहीं, वोट देने का भी वक्त आ गया है।
4: इस पंचायत इलेक्शन में 50 लाख से ज्यादा वोटर्स अपने मत का अधिकार इस्तेमाल करेंगे और हजारों फर्स्ट टाइम वोटर्स भी बनेंगे इस बदलाव का हिस्सा। 26 मई, 28 मई और 30 मई, याद रखिए ये तारीखें।
3: आपकी एक वोट आपके गाँव की सोच, विकास और लीडरशिप को तय करेगी। तो निकलिए घर से और बनिए जिम्मेदार नागरिक। पंचायत चुनाव 2026, वोट जरूर करें।

0: मुकेश की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ दिल ही तो है फिल्म का ये नगमा। गीत बहुत प्यारा है, लेकिन दोस्तों क्या करें, समय हो चुका है और इसी के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आज बस इतना ही। सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला। फिल्म संगीत लेकर जल्द ही हाजिर हो रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।
1: हिमाचल में फिर से सज गया है लोकतंत्र का महापर्व, पंचायत चुनाव 2026।
2: 26, 28 और 30 मई को तीन चरणों में होने जा रहे हैं पंचायत इलेक्शंस, जहां आपकी एक वोट तय करेगी आपके गांव का कल।
1: सड़क, पानी, सफाई, रोजगार और गांव के विकास से जुड़े फैसलों में आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और चुनिएगा ईमानदार, योग्य और जिम्मेदार प्रतिनिधि। हिमाचल पंचायत इलेक्शंस 2026, मजबूत पंचायत, मजबूत हिमाचल।
3: सुनो एक तराना, नया एक फसाना के आंगन में मेरे।
0: सुरमई इस शाम में चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और प्यारा सा गीत सुनवाते हैं आप सभी को, मोहम्मद रफी की आवाज में, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, जीने की राह फिल्म से ये नगमा।

0: गांव की पहचान होती है उसकी मजबूत पंचायत से, और पंचायत मजबूत बनती है आपके एक वोट से।
1: क्योंकि ईमानदारी और बिना किसी के प्रभाव में आए दिए गए आपके वोट ही तय होते हैं गांव और बनती है सड़क, पानी, स्वच्छता और रोजगार संबंधी नीतियाँ।
0: इसीलिए 26 मई, 28 मई और 30 मई को होने वाले पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर अपनी भागीदारी निभाएं।
1: अपने परिवार और गाँव वालों को भी जागरूक बनाएं और 100% मतदान के संकल्प को हासिल करने का लक्ष्य बनाएं।
0: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी।

लीजिए सुनिए एक ऐसा गीत जो हर किसी के मन को भा जाए, जो आज भी सदाबहार गीतों में शामिल है और ना जाने कितनी सदियों तक रहेगा, शायद जब तक ये दुनिया रहे, जब तक ये संगीत रहे, क्योंकि संगीत होता ही अमर है। कुमार सानू साधना सरगम को सुनिए दीवाना फिल्म में।

0: गीत संगीत की इस धारा में मन तो कहता है कि हम भी यूं ही बहे चले, लेकिन क्या करें, घड़ी की सुइयां फिर से इशारा कर चुकी है और अब इस गीत के साथ फिल्म संगीत में बस इतना ही। सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला, समाचार संध्या आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से न्यूज़ एट 9 बजे। बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकी परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित कर दी जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य में ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अगले महीने अहमदाबाद में होगी और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मोहित कुमार और चंद्र मोहन ने पुरुषों की फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकी बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। जनगणना आयुक्त के साथ साथ पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गा शंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री डॉ. शमिका रवि को इस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये उच्च स्तरीय समिति अवैध अप्रवासन और अन्य अप्राकृतिक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकीय परिवर्तनों का व्यापक आकलन करेगी। ये धार्मिक और सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या स्थानांतरण का भी विश्लेषण करेगी और इसके लिए एक योजनाबद्ध और समयबद्ध समाधान प्रस्तुत करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर उच्च स्तरीय समिति की घोषणा की थी।
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूं। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: समिति एक वर्ष के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। वहीं आवश्यकता पड़ने पर समिति का कार्यकाल 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में सांचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को

0: संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये घोषणा की।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा।
2: इकोनॉमिक रेजिलियंस शुड बी प्रमोटेड।
3: बैठक में आर्थिक मजबूती बनाए रखने, आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने, विश्वसनीय और सुरक्षित तकनीकों का प्रसार करने तथा उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने पर चर्चा हुई। हमारा लक्ष्य आपसी सहयोग को मजबूत करना तथा दूसरों की सहायता करना है। हम क्वाड देश आदान प्रदान से विकास और समृद्धि की खोज में नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं।
2: अंडरटेक मोर एक्सचेंजेस एज वी इंटेंड टू डू।
0: बाद में विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने संवाददाताओं को बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की।
4: काउंटर टेररिज्म इज अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ।
5: आतंकवाद से सख्ती से निपटना क्वाड सहयोग का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। विदेश मंत्रियों ने सीमा पार आतंकवाद और आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा की। संयुक्त बयान में विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई और आतंकवादी गुटों, उनके वित्त पोषण और प्रायोजकों के खिलाफ निर्णायक अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया गया।
4: टेररिस्ट एंटिटीज, फाइनेंसेस एंड स्पॉन्सर्स।
0: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पिछले कुछ वर्षों में ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी ने नई गति पकड़ी है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ बैठक के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए यूरेनियम की आपूर्ति सहित ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ रहा है। इस बीच ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस दौरान रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करने जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर चर्चा हुई। जापान की विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने में भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की। भारत ने चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अवांछित संदर्भों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत का रुख स्वयं सुसंगत है और संबंधित पक्षों को इसकी जानकारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न तथा अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। प्रवक्ता ने कहा कि किसी अन्य देश को इस टिप्पणी पर करने का अधिकार नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047

0: की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपए से बढ़ाकर 1,580 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक अध्यक्षता की। सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग 83 के नागपट्टनम तंजावुर खंड पर 14 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन वाले तिरुवरूर बाईपास के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 129 और राष्ट्रीय राजमार्ग 134A पर 2 अतिरिक्त ओवरब्रिज भी बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये मार्ग तिरुचिरापल्ली और कोयम्बतूर जैसे औद्योगिक केंद्रों को राईकाल और नागपट्टनम जैसे बंदरगाह शहरों से जोड़ेंगे। श्री गडकरी ने आज पंजाब में 4000 किलोमीटर से अधिक और दिल्ली तथा हरियाणा में 3000 किलोमीटर से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की गुणवत्ता और रखरखाव की प्रगति की समीक्षा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की पेमेंट गेटवे प्रणाली में सुधार के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के 4 प्रमुख बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की है। बैठक के दौरान श्री प्रधान ने विद्यार्थियों को असुविधा से बचाने के लिए निर्बाध और सुरक्षित भुगतान प्रणाली की आवश्यकता पर जोर दिया। CBSE ने स्पष्ट किया है कि उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाने वाली ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली में कोई सुरक्षा उल्लंघन नहीं हुआ है। CBSE ने कहा कि वास्तविक मूल्यांकन कार्य के लिए उपयोग किए जा रहे पोर्टल पर कोई सुरक्षा उल्लंघन सामने नहीं आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने पद पर 12 वर्ष पूरे कर लिए हैं। 2014 में आज ही के दिन श्री मोदी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर अनेक जन कल्याणकारी पहलें की है, जिनका उद्देश्य नागरिकों का उत्थान करना रहा है। गरीबों और मध्यम वर्ग के कल्याण से लेकर महिलाओं, किसानों और युवाओं के सशक्तिकरण तक मोदी सरकार ने समाज के सभी वर्गों का ध्यान रखा है। इसी तरह मोदी सरकार ने आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार और नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर भी विशेष ध्यान दिया है। मोदी सरकार ने वस्तु और सेवा कर GST और डिजिटल भुगतान जैसे संरचनात्मक सुधार भी लागू किए हैं। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने विरासत संरक्षण, संस्कृति पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्री स्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। मोहित कुमार ने 65 किलोग्राम और चंद्र मोहन ने 79 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।

0: IPL क्रिकेट का पहला क्वालिफायर मुकाबला गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16 ओवर में 3 विकेट पर 189 रन बना लिए हैं। इससे पहले गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी भीषण गर्मी की आशंका है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से उत्पन्न जनसांख्यिकीय परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी रोकने के लिए 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणालियां स्थापित की जाएंगी। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत समुद्री निगरानी सहयोग की शुरुआत की। आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा की। सरकार ने प्याज का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य प्रति क्विंटल 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये किया। और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने भविष्य के ओलंपिक खेलों के लिए योगासन का समर्थन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Center constitutes high-level committee to address challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. Home Minister Amit Shah says anti-drone systems will be installed within 6 months. Quad nations launch inter-Pacific maritime surveillance collaboration, condemn terrorism in all its forms and manifestations. Government revises minimum assured procurement price of onion stocks from 1,270 rupees to 1,580 rupees per quintal. Sports Minister Mansukh Mandviya backs Yogasan for future Olympic Games. Ahmedabad to host first World Yogasan Championship next month. And at Asian Under-23 Wrestling Championships, Indian grapplers Mohit Kumar and Chandar Mohan clinch gold medals in men's freestyle event in Vietnam. And now the news in detail. The Centre has constituted a high-level committee to address the challenges of demographic change caused by infiltration and other reasons. In a social media post, Union Home Minister Amit Shah today said that the committee will be chaired by former Supreme Court Judge Justice Prakash Prabhakar Navlekar, Census Commissioner along with former IAS Officer Durga Shankar Mishra, former IPS Officer Balaji Srivastav and economist Dr. Shamika Ravi have been appointed as members of the committee. The Joint Secretary Foreigners 1 in the Home Ministry will serve as the Member Secretary in the committee. Mr. Shah said infiltration and other reasons are causing unnatural demographic change, which poses a very significant challenge to the present and future of any nation. He said, demographic change is a serious issue linked not only to the sovereignty, but also to national security, law and order, profound changes in social structure, and the preservation of tribal society. A report.
2: The High-Level Committee will conduct a comprehensive assessment of demographic changes occurring across India due to illegal immigration and other unnatural causes. It will also analyze patterns of abnormal population shifts at the levels of religious and social communities and will present a planned and time-bound solution for the same. Prime Minister Narendra Modi, in his Independence Day speech from Redford last year, had announced about the High-Level Committee on Demographic Change.
3: मैं आज देश के सामने एक चिंता, एक चुनौती के संबंध में आगाह करना चाहता हूँ। षड्यंत्र के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है, एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं, एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है।
2: The committee will submit its report within 1 year. If necessary, the tenure of the committee may be extended by up to 6 months. With Anubhav Mishra, this is Vishnu PS, Akashwani News, Delhi.
1: Union Home Minister Amit Shah today said that the government is in the process

स्वागत आप सभी का 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। तो दोस्तों, हाजिर हो चुके हैं हम आप सभी के लिए लेकर कार्यक्रम एक फिल्म से। साल था सन 1985 यानी कि 1985। फिल्म रिलीज हुई सागर। जी हाँ, जैसी जैसा नाम वैसी फिल्म। फिल्म भी सुपरहिट हुई और इसके गीत भी सुपरहिट। यूं कह लीजिए, इसके गीत सुपर डुपर हिट। फिल्म के निर्देशक रमेश सिप्पी, लेखक जावेद अख्तर, निर्माता जेपी सिप्पी, अभिनेता कमल हासन, ऋषि कपूर और साथ में थी डिंपल कपाड़िया। संगीतकार थे आरडी वर्मन और रिलीज हुई थी 9 अगस्त 1985 को। बेहद ही दिलचस्प फिल्म की कहानी, भाई कलाकारों का तो कहना ही क्या। जी हाँ, कमल हासन, ऋषि कपूर और डिंपल कपाड़िया, इन तीनों की जोड़ी ने सबके दिलों में जैसे घर कर लिया हो। गोवा के समुद्र किनारे बसे एक छोटे से मछुआरों के गांव में मोना अपने पिता के साथ रहती थी। उसी गांव में राजा नाम का एक सीधा साधा मेहनती मछुआरा भी रहता था। राजा बचपन से ही मोना से बेइंतहा मोहब्बत करता था, लेकिन अपनी गरीबी और शर्मीले स्वभाव की वजह से कभी अपने दिल की बात नहीं कह पाया। उसका सपना है कि एक दिन अपनी नाव खरीद कर सफल आदमी बनेगा और फिर मोना का हाथ मांगेगा। लेकिन यहाँ आता है कहानी में ट्विस्ट और उनके बीच आता है एक और इंसान। कौन, बताएंगे ज़रूर, लेकिन आइए सुनिए इस फिल्म का सबसे खूबसूरत, बेहद ही प्यारा गीत।

0: चुनाव सिर्फ एक शब्द नहीं, ये है सच्चे लोकतंत्र की नींव, और मतदान है एक जागरूक नागरिक की पहचान, जिसे इस्तेमाल कर वो तय करते हैं अपने क्षेत्र, राज्य और देश की दशा व दिशा।
1: तो आइए अपनी जिम्मेदारी निभाएं, आगामी पंचायत चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लें और गांव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें।
0: आपका एक एक वोट तय करेगा पंचायत का भविष्य। तो निर्धारित तिथि को अपने नजदीकी मतदान केंद्र पर जाकर सोच समझ कर और बिना किसी प्रभाव के मतदान जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ आपकी जिम्मेदारी ही नहीं अधिकार है।
1: राज्य निर्वाचन आयोग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जन

जी हाँ, समुद्र के साथ बसा एक गांव जहां पर राजा और मोना रहते हैं। राजा मोना से दिल ही दिल में प्यार करता है, लेकिन इसी बीच शहर से अमीर घराने का युवक रवि अपनी दादी कमला देवी के पास आता है। समुद्र किनारे पहली बार मोना को देखते ही अपना दिल हार बैठता है। यहाँ अब मुलाकातें बढ़ती हैं और दोस्ती धीरे धीरे हो जाती है। फिर क्या होता है, वही जो दोस्ती है वो प्यार में बदल जाती है और मोना भी रवि से प्रेम कर बैठती है। दूसरी तरफ रवि और राजा की भी अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन एक दिन राजा रवि को बताता है कि वो मोना से प्यार करता है और उससे ही शादी करना चाहता है। ये सुनकर रवि दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि वो भी मोना से ही प्यार करता है। अब दोस्ती और प्यार के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे दोस्त दुश्मन नहीं बनता है, यहाँ कहानी में कुछ और ही होता है। जी हाँ, जब राजा को पता चलता है कि मोना भी रवि से प्यार करती है और सिर्फ उसे एक अच्छा दोस्त मानती है, तो उसका दिल टूट जाता है। फिर भी वो अपने प्यार को कुर्बान कर देता है और दोनों प्रेमियों को मिलाने का फैसला करता है। यही राजा के किरदार की सबसे बड़ी खूबसूरती नज़र आती है।

जी हाँ, यहाँ पे राजा पीछे हट जाता है और रवि और मोना को मिलवाने का फैसला करता है। कहानी में नया मोड़ तब आता है जब रवि की अमीर और जो दादी है वो कमला देवी इस रिश्ते का विरोध करती है और उन्हें गरीब मछुआरे की बेटी अपनी बहू के रूप में मंजूर नहीं होती। वो पूरे गांव के मछुआरों की रोजी रोटी पर दबाव डालकर मोना को रवि से दूर होने के लिए मजबूर करती है। मोना को अपने प्यार और पूरे गांव की भलाई के बीच चुनाव करना पड़ता है।

अब फिल्म में हीरो है हीरोइन है तो एक विलन का होना तो बनता ही है। जी हाँ, फिल्म के क्लाइमैक्स में विक्रम आता है, रवि और मोना के खिलाफ साजिश भी रचता है। राजा अपनी जान की परवाह किए बिना दोनों को बचाने पहुंचता है और गोली रवि के लिए चलती है, लेकिन राजा बीच में आकर उसे अपने सीने पर

अपने दोस्त, अपने अधूरे प्यार की खातिर वो अंतिम बलिदान दे देता है। राजा की कुर्बानी देखकर कमला देवी का दिल भी बदल जाता है और आखिरकार रवि और मोना का मिलन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस फिल्म का असली हीरो कौन था, क्या जान पाए हैं आप? या आपने फिल्म देखी है तब आप सोच पाए हैं। फिल्म का असली हीरो इसमें राजा ही है, जो प्यार करता है उसे खो भी देता है, लेकिन दोस्ती और त्याग की मिसाल बन जाता है। और यही वजह है कि आज भी सागर को हिंदी सिनेमा की सबसे भावुक प्रेम कहानियों में गिना जाता है।

जी बिल्कुल दोस्तों, सागर फिल्म के जो गीत है वो बेहद ही मशहूर है आज भी। जो अभी आपने सुने हैं वो भी हमने कुछ चुनकर मशहूर ही गीत आप सभी को सुनवाए हैं। सागर किनारे या सागर जैसी आंखों वाली और ओ मारिया। और आपको याद होना हो भाई, हमें भी याद है कि स्कूल कॉलेज की बसों में भी हमने इस फिल्म के गीतों को बहुत गुनगुनाया है। फिल्म फेयर पुरस्कारों के इतिहास में ये दूसरा उदाहरण था जहां एक अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के साथ साथ सहायक भूमिका में भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए नामांकित किया गया था। दोनों पुरस्कारों के लिए पिछला नाम अशोक कुमार का था, लेकिन अब कमल हासन का। कमल हासन ने अंततः सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता था। एक हिंदी फिल्म के लिए इस श्रेणी में उनका पहला और एकमात्र पुरस्कार था। और फिल्म के अंत में यही कहेंगे कि कुछ प्रेम कहानियां मिलन से नहीं दोस्तों, त्याग से अमर होती है। राजा ने अपना प्यार खोकर भी दोस्ती और इंसानियत की ऐसी मिसाल कायम की जो हमेशा याद रखी जाएगी। ये वो फिल्म है जिसमें खूबसूरत संदेश भी दिया गया है। सागर की कहानी जहां प्यार, दोस्ती, कुर्बानी की लहरें दिल को छू जाती है और हमेशा के लिए यादों में बस जाती है। फिलहाल इसी के साथ एक फिल्म से कार्यक्रम में बस इतना ही। आज की बेहद ही खूबसूरत फिल्म सागर और उसके बेहद ही प्यारे नगमे थे जिसे अभी आपने सुना भी और हमारे संग गुनगुनाया भी। तो आइए अब सफ़र में आगे बढ़ते हैं और हाजिर हो रहे हैं आप सभी के लिए लेकर दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम। तो जनाब, दिल की आवाज़ आपके दिल की आवाज़ को दूसरों तक पहुंचाने का या किसी के भी दिल की आवाज़ को किसी के दिल तक पहुंचाने का सबसे अच्छा जो है वो माध्यम ये गीत संगीत ही तो है जो बिना कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। तो आइए कुछ ऐसे ही गीत हम भी आप सभी को सुनवा रहे हैं जो शायद किसी ना किसी के दिल की बात किसी ना किसी के अपनों तक ज़रूर पहुँचाएगा। दिल तेरा आशिक फिल्म का नगमा सुनवाने जा रहे हैं हम आप सभी को SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। आइए मिलकर सुनते हैं इस गीत को।

बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकते हैं, बिना मिले तेरा हाल भी बता सकते हैं। अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरी आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल सकते हैं। सुन रहे हैं आप 103.7 MHz आकाशवाणी FM शिमला।

दिल खो गया। जी हाँ, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना कुमार सानू और साधना सरगम की आवाज़ों में। दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं हमारे संग 103.7 मेगाहर्ट्स आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। तो चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक और प्यारा सा नगमा पेश कर रहे हैं हम आप सभी के लिए लता मंगेशकर सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। गीत के बोल आनंद बख्शी के संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सौदागर फिल्म का ये गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, तो आइए मिलकर सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

बहाने बहाने से हम तेरी बातें किया करते हैं, हर पल ख्यालों में आपसे मुलाकातें किया करते हैं। इतनी बार तो आप सांस भी नहीं लेती होंगी मोहतरमा, जितनी बार हम आपको याद किया करते हैं।

इसी प्यारे से गीत के साथ दिल की आवाज़ भी सुन करके मैं बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि गीतों के माध्यम से आपके दिल की आवाज़ भी किसी अपने तक ज़रूर पहुंची होगी। आप हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला के साथ। हम और आप मिलकर तय कर रहे हैं ये सुहाना सा सफ़र गर्मियों की इस ठंडी सी रात में। जी हाँ, रात को तुम ठंडी ही कहेंगे क्योंकि दिन में बहुत तपती गर्मी रहती है और हो सकता है कुछ शहरों में कुछ जगह पर रात में भी बहुत गर्मी पड़ती हो, लेकिन हमारे शिमला की जनाब बात ही कुछ और है। यहाँ पे दिन में भी सहने लायक गर्मी है और रात को तो भाई कहना ही क्या। गज़लों का समय हो चला है तो आइए इस शाम को और भी खूबसूरत बनाते हैं। भूपेंद्र सिंह की आवाज़ में सुनवा रहे हैं कार्यक्रम की ये पहली गज़ल।

गजलों का आनंद आप ले रहे हैं एफएम शिमला के साथ मिताली सिंह और भूपेंद्र सिंह की आवाज़ों में गज़ल अभी आपने सुना। चलिए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और गुलाम अली साहब की आवाज़ में पेश कर रहे हैं कार्यक्रम की ये अगली गज़ल आप सभी के लिए 103.7 MHz आकाशवाणी एफएम शिमला पर।

0: गुलाम अली साहब को आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंकज उदास की आवाज में पेश है कार्यक्रम की अगली गजल।
1: जब नाम तेरा लीजे तब चश्म

इसी गजल के साथ गजलों में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। दोस्तों, हम और आप मिलकर सफ़र तय कर रहे हैं। रेडियो हम सफ़र रेखा ठाकुर लगातार है आपके साथ। अब लेकर आए हैं आपके लिए कुछ बेहतरीन और प्यारे गीत जो छू जाए किसी के भी दिल को। तो आइए आगाज़ कर रहे हैं हम कार्यक्रम का इस नगमे के साथ। तो लीजिए, आइए सुनते हैं एक फूल दो माली फिल्म के इस गीत को मन्ना डे की आवाज़ में।

0: तुझे सूरज कहूं या चंदा।
1: जी बिल्कुल, बच्चे बच्चे जिंदगी में रौनक लेके आते हैं और बच्चे होते हैं उभरते हुए सितारे। रखो उनका खूब ख्याल, एक बार जो निखर जाते हैं तो दुनिया के लिए बन जाते हैं मिसाल।

दोस्ती फिल्म का बेहद ही प्यारा गीत आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सदाबहार नगमा। जी हाँ, गीत के बोल मजहू के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में एक और प्यारा सा गीत।

0: दोस्ती फिल्म का बेहद ही प्यारा गीत आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सदाबहार नगमा। जी हाँ, गीत के बोल मजहू के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सुन रहे हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में एक और प्यारा सा गीत, गीत के बोल SH बिहारी के और संगीत OP नैयर का, कश्मीर की कली फिल्म से।
1: ये चांद सा रोशन

सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं हमारे साथ एफएम शिमला पर। तो आइए एक और प्यारा सा गीत आप सभी के नाम, किशोर कुमार की आवाज़ में, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत आर डी बर्मन का, कटी पतंग फिल्म से।

सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं हमारे साथ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला पर। जी हाँ, गीत संगीत की दुनिया है ही ऐसी, जब भी इन्हें सुनो इसमें खो ही जाते हैं। आशा भोसले महेंद्र कपूर की आवाज़ों में अभी आपने गीत सुना काजल फिल्म से। गीत के बोल थे साहिर के और संगीत दिया था रवि ने। तो आइए कार्यक्रम अब आगे बढ़ते हुए सुनवा रहे हैं आप सभी को कार्यक्रम का आखिरी गीत, मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का एक और प्यारा सा नगमा आप सभी के नाम। आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में आइए सुनते हैं

0: प्यारे से गीत के साथ सदाबहार नगमे कार्यक्रम में बस इतना ही, और आज के इस सुहाने से सफ़र में भी बस इतना ही, जिसे आपने और हमने मिलकर तय किया 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। चलते चलते बस यही कहेंगे, खुश रहा कीजिए, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एफएम शिमला पर। रात्रि के 11 बजने को हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। बने रहिए एफएम शिमला के साथ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी।

0: केंद्र सरकार ने घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलाव की चुनौतियों से निपटने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर करेंगे। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव इस समिति में सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये समिति अवैध प्रवासन और अन्य अस्वाभाविक कारणों से पूरे देश में हो रहे जनसांख्यिकी बदलावों का व्यापक मूल्यांकन करेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए अगले 6 महीने के भीतर ड्रोन रोधी प्रणाली लगाने की प्रक्रिया में है। राजस्थान के बीकानेर जिले में साचू सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने ये बात कही।
1: ड्रोन और अन्य उपकरणों के लिए भारत सरकार ड्रोन रोधी संयंत्र लगाने की शुरुआत अगले 6 माह में ही कर लेगी, परंतु ड्रोन उतरता तो भारत की भूमि में है, कौन इसके अंदर के मटेरियल को देश विरोधी कार्यों के लिए उपयोग करता है, इस पर हमारी पैनी नजर होनी चाहिए और इसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए सिविल अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से हमारा जीवंत संपर्क होना चाहिए और परिणाम लक्षी कार्यवाही भी हमने करनी पड़ेगी।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की अध्यक्षता में आज क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री ने बैठक में हिस्सा लिया। सदस्य देश वैश्विक ऊर्जा बाजारों में व्यवधान के समय एक दूसरे की ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। क्वाड देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में निगरानी से जुड़ी पहल तथा दृश्यों के माध्यम से समुद्री गतिविधियों की साझा जानकारी उपलब्ध कराने पर भी सहमति व्यक्त की। बैठक के बाद संयुक्त प्रेस वार्ता में डॉ. जयशंकर ने कहा कि क्वाड देशों के बीच सहयोग को और मजबूत किया जाएगा। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव के नागराज नायडू ने बताया कि क्वाड देशों ने पहलगाम आतंकवादी हमले की भी निंदा की। पश्चिम बंगाल में एक विशेष अदालत ने मालदा के मोथाबाड़ी में न्यायिक अधिकारियों पर हमले के सिलसिले में 15 और लोगों को 5 जून तक राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण की हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों को सोमवार देर रात मोथाबाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में केंद्रीय एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया गया था। NIA के सूत्रों के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल विभिन्न वीडियो क्लिप के साथ घटना के दिन के CCTV फुटेज का विश्लेषण करके संदिग्धों की पहचान की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार में 1983 में 5 लोगों की हत्या के मामले में कई दोषियों की सजा को बरकरार रखते हुए कहा है कि अपराध की क्रूरता झकझोर देने वाली है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि निचली अदालत और पटना उच्च न्यायालय ने इस मामले में अनुचित सहानुभूति या नरमी बरते जाने की किसी भी गुंजाइश से इनकार करके सटीक फैसले दिए। शीर्ष न्यायालय ने पटना उच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के फैसले को चुनौती देने वाली दोषियों की अपील पर आज अपना फैसला सुनाया। सरकार ने प्याज के भंडार का न्यूनतम सुनिश्चित खरीद मूल्य 1,270 रुपये से बढ़ाकर 1,580 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। ये बढ़ोतरी राज्य सरकारों के अनुरोध पर की गई है। नई दरें आज से लागू हो गई। इस संबंध में उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज नई दिल्ली में उपभोक्ता मामलों के विभाग, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के भारत के दावे को ध्यान में रखते हुए योगासन को भविष्य के ओलंपिक खेलों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने आज नई दिल्ली में कहा कि अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप आयोजित होगी। भारतीय पहलवानों ने वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भी शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए पुरुषों की फ्रीस्टाइल वर्ग में 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा।